0: चुन्नी लाल इराकी पुलिस में काम करते थे।
1: मदन मोहन का जन्म जब जा करके और 25 जून 1924 ना,
0: हाँ जी
1: 1924 में हुआ सुनने वालों, और जो जा करके और इराक में हुआ था, और अभी 1924 में तो इंडिया अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, यानी कि आज़ादी नहीं हुआ था।
0: जब मदन मोहन जी का जन्म हुआ तब ना भारत आज़ाद हुआ था अभी और ना इराक आज़ाद हुआ था,
1: और उसके बाद में जो जा करके आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद में उन्होंने और जा करके भारत में आए कि उससे पहले?
0: ना आज़ादी के बाद, जब इराक आज़ाद हुआ ब्रिटिश से तब उनके पिता भारत आए।
1: और भारत में गए भी तो एक म्यूजिक स्टूडियो में, यानी कि एक हकदार बन गया म्यूजिक स्टूडियो का ना?
0: ना म्यूजिक स्टूडियो चलाते थे उनके पिता मदन मोहन जी के।
1: उनके पिता मदन मोहन जी का पिता एक म्यूजिक स्टूडियो चलाए करते थे। पर शांता जी, उस समय कहा जाता है कि एक फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर का मतलब क्या है?
2: वही तो फिल्म के प्रोड्यूसर, तो उसके बारे में मैं डच भाषा में कहना चाहती हूँ, चलेगा?
1: एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल हाँ। चलेगा,
2: कारण कि हम सुनते हैं हिंदी में कि प्रोड्यूसर एंग्लिश में भी है, पर उसका महत्व हम नहीं जानते हैं, एक हम में
1: उसका खासियत नहीं जानते
2: जी, तो हम डच भाषा में कहेंगे कि म्यूजिक प्रोड्यूसेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसेंट दिक्वल्स प्रोड्यूसर खनूम ईमान दी द फरांतोर्दलकहित है फनत म्यूजिक। और हम देखें आगे में तब है कि प्रोड्यूसर आज प्रोड्यूसर ओक वेल प्रोडक्सी लेदर खनूम,
1: तो उसका लेदर है, यानी कि पर ये बात हो जाता है, यानी कि खर्चा जो होता है ना
2: सभी बागदौर उसके हाथ में
1: हाँ हो जाता है।
2: जैसे कि हाँ, जैसे हमने कहा कि ओक वेल प्रोडक्सी लेदर खनूम बे यो हो साकलक बेसक मेथड और खानी सेरन फन ऑडियो विजुअल प्रोडक्सी die persoon zorg voor voor de benodigde faciliteiten, materialen en mensen. Je, die persoon is dan ook daarbij zowel organisator als budget en tijdbewaker.
1: Tijdbewaker. Dus sare, ye itne, haan, itne sare
2: zimmedariën
1: ho jata hai ek, ek producer.
2: Jee. और हम देखें और आगे में तो हैगा द रोल फन अ प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसेंटन सें द मेंशन दी द क्वालिटेट फन द फिल्म हो हाउडन, बहुत बड़ा जिम्मेदारी, एंड एरफोर सोरगन दैट द प्रोडक्शन ऑफ टाइट एंड बिनन द बिनन हेड बजट फरलोप,
1: यानी कि उस पे भी ध्यान देना पड़ता है कि बजट के अंदर अंदर जो हो सके, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए शांता जी बहुत खर्चा होता है ना।
2: हाँ, इसलिए
1: और एक म्यूजिक गीत उसमें डालने के लिए भी खर्चा होता होंगे,
2: इसलिए सब एक टाइम में या कैसे यहाँ कहते हैं डेडलाइन हाँ, उसके उसके उससे पहले ये सब हो जाना चाहिए, नहीं तो खर्चा और बढ़ जाएगा,
1: खर्चा और बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो विषय है, जो आज हम सब रखने वाले हैं, कि मदन मोहन जी जो एक ऐसा कलाकार जो हम सब के लिए इतने ढेर सारे और गीत जो बना करके रख चुके, रखे कितने तादाद में, और उसके जो उनका जन्म हुआ 1924 में ना,
2: 1924
1: फिल्मी दुनिया में उन्होंने बहुत सा काम कमाया अपना और जो गीत के और रखे, पर क्यों ना हम एक
2: वही मैं सोच रही हूँ कि ना कि गीत चला दे,
1: एक गीत मदन मोहन का कंपोज किया गया
2: जी,
1: तो हम रख देते हैं हमारे सभी सुनने वाले को लिए, और अभी उसके बारे में और भी संदेश हम सब रखने वाले हैं।

0: सुनने वालों, मदन मोहन जी का जन्म 25 जून 1924 बगदाद में हुआ और मृत्यु हुई 14 जुलाई 1975 मुंबई महाराष्ट्र में।
1: जी, जैसे कि आप अभी सुनाए बायोग्राफी जो मदन मोहन का, जो 1924 में जन्म हुआ और 1975 में उनकी स्वर्गवास हो गया, वो इतना अल्प आयु में उसका और यानी कि मृत्यु को प्राप्त किए, कितने साल के थे उस समय?
0: वो 51 साल के थे।
1: तो सुनने वालों, 85 तक यार के आयु में और मदन मोहन जी ने और कितने साल उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना सहयोग दिए, यानी कि जो गीत आदि से वो उन्होंने, क्योंकि ना कि सिर्फ शुरू शुरू में उन्होंने अपना गीत को गाए, फिर उसे वो पसंद नहीं था उसके आवाज़, और फिर उन्होंने फिर जा कर के कलाकारों के माध्यम से, यानी कि जैसे लता जी, मुकेश जी और किशोर कुमार जी, अलग अलग लोगों के साथ, और उन्होंने गीत को गवाए ना।
0: हाँ जी, उनका काम करने का समय रहा है 1950 से लेकर 1975 तक।
1: 1950 से लेकर 1975 तक उन्होंने काम किया।
0: वह एक महान गायक और संगीतकार थे।
1: सुनने वालों, तो इस प्रकार से मदन मोहन सहित उनके बारे में हम सब बहुत कम सुने होंगे, बस यही है कि रेडियो द्वारा शायद हम सब और उनका जो गीत चलाते हैं तो उनका नाम बस अर्ज कर लेते हैं ना शांता जी।
0: 1971 में उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला।
1: कौन सा फिल्म पे उन्होंने और फिल्म अवार्ड को, यानी कि अवार्ड को प्राप्त किए बबली जी?
0: फिल्म दस्तक बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन,
1: बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का और अवार्ड को प्राप्त किए। शांता जी, आप कुछ सुनाने वाले थे।
2: मैं ये कहना चाहती थी, बबली जी ने कहा कि 1950 यानी 1975 तक से, तो 1975 तक ये कलाकार जो हैं मदन मोहन जी, यानी कि हम भी सोच के बारे इतने देर में मैं थोड़ा सा अकाउंट कर ली है कि उनका आयु जो 85 तक यार के था ना, तो लगभग 25 साल वो अपने ये काम की है।
1: जैसे मैंने सुना है शांता जी कि जब वो फिल्मी में आए, क्योंकि पहले जो वो लोग भारत में एंट्री लिए ना, क्योंकि इराक में जन्म हुआ उनकी।
2: हाँ।
1: और भारत में आए तो उनका पिता जो जा कर के फिल्मी दुनिया में और अपना उसमें जा कर के मिल गए, जिसका नाम, उनका पिता का नाम जो राय बहादुर चुन्नी लाल से लोग जानते थे, फिर मदन मोहन को और उन्होंने आदेश दिए कि तुझे मिलिट्री में जाना है, और मिलिट्री में उन्होंने जा कर के अपना काम भी किए, फिर उसके बाद में जो जा कर के वो, उसे गाना का शौक बहुत था और कहा जाता है कि वो कितने घंटों और ग्रामाफोन के पीछे बैठते थे। तो ये ग्रामाफोन है क्या चीज़ शांता जी?
2: ग्रामाफोन तो मैं अपने दिमाग के अनुसार तो मैं बता सकती हूँ, अगर आपने ये जो आपने तो मैं देख रही हूँ, जैसे प्लेटर पेलर आई साइड पे ना, और ऊपर में एक बड़ा सा
1: पिकअप के तरह,
2: पिकअप के हाँ
1: होते थे
2: हाँ, तो उसमें से आवाज निकलते थे, और मेरे ख्याल से उसको भी
1: अपवेंद कर किया जाता था पहले के समय।
0: उसमें एक चाबी होती थी शांता जी, चाबी को वैसे घुमा के तो फिर रिकॉर्ड चलता था।
1: तो इस प्रकार से होते थे, सुनने वालों ऐसा भी होते थे, और उन्होंने कितने घंटों पहले, यानी कि ये गायक बनने से पहले और राइटर बनने से पहले कितने समय तक उन्होंने उसके पीछे बैठे रहते थे। तो बबली जी, आप कुछ और सुनाने वाले हम सबको।
0: मदन मोहन जी हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध इस संगीतकार का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपनी युवावस्था में वह एक सैनिक थे। बाद में संगीत के प्रति अपने झुकाव के कारण ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए। तलत महमूद तथा लता मंगेशकर से इन्होंने कई यादगार गजलें गवाई, जिनमें आपकी नज़रों ने समझा, फिल्म अनपढ़ 1962 में गीत शामिल हुआ। इनके मनपसंद गायक मोहम्मद रफ़ी थे। जब ऋषि कपूर और अंजीता की फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो गायक के रूप में किशोर कुमार का नाम आया, परंतु मदन मोहन जी ने साफ कह दिया कि पर्दे पर मजनू की आवाज़ तो रफ़ी साहब की ही होगी, और अपने मनपसंद गायक मोहम्मद रफ़ी से ही गवाया और लैला मजनू एक बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट साबित हुई।
1: बबली जी, लैला मजनू एक दुनिया का और जो बॉलीवुड का एक ऐसा फिल्म हुआ जिनका याद आज तलक और अभी तलक किया जाता है।
0: हाँ जी, और उसमें गाने बहुत मशहूर हुए, संगीत भी बहुत हिट हुआ, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
1: तो एक गीत वो कोई पत्थर सा, कैसे आपने कहा?
0: कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को।
1: तो हम चला देते हैं।

0: सुनने वालों, ये आपने गीत सुना फिल्म लैला मजनू से, और ये फिल्म इतनी हिट साबित हुई कि रंजीता और ऋषि कपूर की जोड़ी भी हिट हो गई इस फिल्म से।
1: सुनने वालों, यहाँ तक था जो सुंदर सा गीत निकाला गया लैला मजनू से। और शांता जी भी मैं देख रहा हूँ अपना तैयारी कर चुके हैं। शांता जी, आप क्या सुनाने वाले हैं हम सबको?
2: या मदन मोहन के बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हे बखोन इन बॉलीवुड वर्कन आस असिस्टेंट फॉर म्यूजिक रिजिस्टर से रामचंद्र एंड क्रेस एंड एस्ट ख्रूत फिल्म मित आँखें एंड दैट वेल ऑफ 1950 एंड लिव द द्रीहुक। आँखें फिल्म जो जिसे बस्क्राइब करें लिव द द्रीहुक। द फिल्म वॉज अनसक्सेस, फिल्म आँखें वॉज अनसक्सेस।
1: जैसे कि आप सुन रहे हैं कि पहला फिल्म मदन मोहन का फिल्म आँखें जो 1950 में और बनाया गया
2: जी 1950
1: में बनाया गया।
2: और ये फिल्म जैसे मैंने कहा वॉज अन सक्सेस। Vervolgens kwam er behoorlijk wat werk bij Mohan ji. Onder zijn eerdere films was de trilogie van films met zijn jeugdvriend Raj Kapoor. Ashiana, film Ashiana in 1952. En Dhoon ook in 1952 en Papi in 1953. Helaas voor Madan Mohan hadden de films waarvoor hij componeerde niet veel impact. En alleen met Bye Bye 1956, waarin de legendarische gebroeders Kumar, Janik Ashok Kumar, Kishore Kumar in de hoofdrol speelden, kreeg hij enige succes. जी हाँ, इतने फिल्म है, तो फिल्म भाई भाई में जाकर फिर से उनको एक सक्सेस मिला है।
1: और शांता जी, जैसे कि मैंने सुना है कि अवार्ड आदि शुरुआत में उन्होंने नहीं पाया ना कोई फिल्म में, वो जाकर के जैसे अभी बबली जी कह रहे थे कि 1951 में पास जाकर के और अवार्ड का हकदार बने, तो हर एक कलाकार का ये इच्छा भी होते हैं कि मेरा कैसे मेरा कार्यक्रम हुआ, कैसा मेरा और जो मैंने अपना प्रोग्राम रखा कितना बढ़िया था, और उन पे जा करके कोई एक पुरस्कार मिल जाता है तो कितना अच्छा भी लगता है ना।
2: वो बात सही है,
1: पर उनको इस बात का था कि वो पुरस्कार नहीं पा रहे थे,
2: फिर भी वो अपना काम जारी रखा।
1: काम भी जारी रखा,
2: हाँ, पुरस्कार के वो इंतजार नहीं की, पर भी अपन काम जारी रखा।
1: इस प्रकार से मैंने एक जो संदेश सुने हैं लता जी का, और उन्होंने अपने ओर से संदेश रखे थे, क्यों ना हम अपने सुनने वालों को उसके अंतर्गत सुनाते हैं।
3: बड़े खुददार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले, वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और ना मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ।

0: सुनने वालों, लता मंगेशकर जी को अपनी बहन बनाया था मदन मोहन जी ने। लता और मदन मोहन के रिश्ते के जुड़ने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उस दिन रक्षाबंधन था। मदन मोहन जी इस बात से बेहद दुखी थे कि उनकी पहली फिल्म में लता मंगेशकर जी ने कोई गाना नहीं गाया। मदन मोहन लता मंगेशकर जी को अपने घर ले आए और एक राखी देते हुए कहा, आज राखी है, इसे मेरी कलाई पर बांध दो। इसके बाद मदन मोहन जी ने लता जी को याद दिलाते हुए कहा, जब हम पहली बार मिले थे तब हमने भाई बहन का एक ही गीत गाया था, आज से तुम मेरी छोटी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। मैं वचन देता हूँ आज से तुम अपने भाई की हर फिल्म में गाना गाओगी। सुनने वालों, मदन मोहन जी के मरने के बाद लता जी ने वो वादा निभाया। यतीन्द्र नाथ मिश्र ने अपनी लिखी किताब लता सुर गाथा में इस वाक्य का जिक्र किया है कि लता ने भाई मदन मोहन की मौत के बाद भी उनसे किया हुआ वादा पूरा किया था। दरअसल साल 2004 में फिल्म वीर ज़ारा में मदन मोहन के कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल किया गया। तब फिल्म के सारे गाने लता मंगेशकर ने गाए थे और हर बार की तरह भाई बहन की इस जोड़ी ने कल्याण जी गीतों की रचना कर दी।
1: फिल्म जो वीर ज़ारा में और जाकर के और उन्होंने ये गीत को गाए, तो बबली जी ये बात हो जाता है कि वीर ज़ारा बना नेहती फैन सेवन तक में जब मदन मोहन का मृत्यु हो गया तो वीर ज़ारा तो त्वे दोयसंत फिर में बनाया गया, यानी कि कुछ 30 साल बाद।
0: क्योंकि मदन मोहन जी ने कुछ ऐसी धुनें तैयार करके रखी थी जो 30 साल बाद उनके बेटे ने फिल्म वीर ज़ारा में इस्तेमाल की।
1: तो सुनने वालों, एक कार्यक्रम में जो हमारे फनकारों की दुनिया में आज रखा जाता है कि 30 साल बाद, यानी कि इस प्रकार से हमारा भाई महेंद्र गुदर भी यहाँ होते थे स्टूडियो में और वो भी कितने गीत को चलाए जो यहाँ से चलाया जाता था कि जो कोई फिल्म में नहीं प्रयोग हुआ था। और इसी प्रकार से आज जैसे आप कह रहे हैं कि 30 साल बाद वीर ज़ारा में उनका कंपोज किया गया गीतों को और जाके उसी का धुन में और जा करके रखा गया, और ख़ास करके उस समय जबकि लता मंगेशकर का और देहांत त्वे दोयसंत त्वेन त्वेंतक में हो गई है ना, त्वे दोयसंत त्वेन त्वेंतक में वो और मृत्यु को प्राप्त कर लिए और फिर भी त्वे दोयसंत फिर में वो जा करके और जो 30 साल पुराना बनाया गया यानी कि लिखा रहा उसे प्रयोग नहीं किया गया था और वीर ज़ारा फिल्म में जा कर के प्रयोग किया गया उसी धुन पे, और उसमें ना सिर्फ लता जी ने अपना आवाज़ दिए पर सोनू निगम और भी कलाकारों ने अपना आवाज़ दिए ना।
0: हाँ जी, उदित नारायण,
1: उदित नारायण के सिवा और भी कुछ रूप कुमार राठौर जी भी अपना आवाज़ दिए, पर सभी का धुन, क्योंकि एक बात होता है ना,
0: गुरदास मान जी भी
1: अपना और संदेश उसमें अपना और कला से प्रदर्शन दिए, पर ये बात हो जाता कि कलाकारों जो राइटर होते हैं ना जो गीत को लिखते हैं तो वो धुन भी उसी का होता है। हमारे जो गायक होते हैं जो अपना आलाप देते हैं उसमें तो वो तो सिर्फ गीत गाते हैं। और शांता जी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
2: उनके बारे में कहना भी मुश्किल, क्योंकि गला होना चाहिए और उसमें गाना गाने में भी एक कला है।
1: गाना गाने में भी एक कला है, हाँ। जरूर उसका आवाज़ सुनाई दिया जाता है, पर उसके पीछे में जो काम होते जो राइटर होते जो गीत को लिखते हैं गीत में गीत को धुन देते हैं उसके बारे में हम सब बहुत कम जानते हैं, ऐसा है कि ना?
2: ये बात तो सही कहा आपने, हाँ बिल्कुल सच है ये।
1: जो बिल्कुल उतना काम होने पे और बस गायक जिसे जिसके पास वो कला होता है उसके पास आवाज़ होते हैं और वो उसी धुन पे चला देते हो, कितना रंगीला हो जाता है, कितना सुरीला हो जाता है, हमारे कानों को इतना अच्छा लगता है सुनने में ना।
2: बिल्कुल जी हाँ, आप सुनते हैं फनकार की दुनिया। तो यहाँ हम प्रोग्राम बनाते हैं मदन मोहन जी के बारे में और यहाँ पे भी कुछ लाइन मदन मोहन जी अपने आवाज़ में कुछ गाकर भी सुनाएंगे, साथ में लता जी भी रहेगा, तो यहाँ से ज़रूर से आप उस पर गौर करें और ज़रूर से आनंद उठाएं।
3: मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद आज फिर आपसे मुलाकात हो रही है। जो गीत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो सब सुनीले हैं, हिंदुस्तानी हैं और जज्बाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर फनकार का जज्बाती होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो सही फनकार नहीं हो सकता।
4: एक याद दिलो दिमाग पर यूं छाई हुई है जैसे कल की बात है। 1948 में मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया। मेरे साथ जो साहब गाने वाले थे उनका नाम था मदन मोहन। ये भी पता चला कि वो फिल्मिस्तान के मालिक राय बहादुर चुनीलाल जी के बेटे थे। भाई और बहन का गीत था। रिकॉर्डिंग के बाद मैंने खुश होकर मदन मोहन से कहा, आप बहुत अच्छा गए। बोले, हाँ ठीक रहा, वैसे मैं म्यूजिक डायरेक्शन शुरू कर रहा हूँ, आप इस फिल्म में जरूर गाइएगा। म्यूजिक डायरेक्टर की हैसियत से उनकी पहली फिल्म थी।

0: उस समय किसी कारणवश मैं उस फिल्म में नहीं गा सकी। मदन मोहन इस बात पर बहुत दुखी हो गए, मुझे घर ले गए। बोले, पहली बार जब हम मिले थे तो हमने भाई बहन का गीत मिलकर गाया था, आज से तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा मदन भैया। उस दिन से आखिरी दिन तक मदन भैया ने राखी के बंधन को यूं निभाया जैसे वो सगे भाई थे।
1: मदन भैया के लिए मैंने कई फिल्मों में गाया। इब्तिदा आशियाना

0: jaren 50 mee, 60 of 70 mee, je moeder Mohanji apne saaj aur sangeet ke saath hamari khatir bahut se gaane banaye hain, film banaye hain. Aur yaar 50 to 60 utna nahi chala, balki 60 se tot 75 tak jab tak ye raha bahut chala inka geet. Par 1975 mein 1975 mein inka dhyan bhi ho gaye hain. In 50 yaar khaleef date stirf Mohanji an lever सिरोस इरोनिस या लेफर सिरोस यानी कि लेफर की बीमारी से इनका ध्यान हो गया.
1: शांता जी, जैसे कि सुना है मैंने कि उसे उस समय पे बड़े बड़े फिल्मों में, उस समय क्योंकि वे फिल्में बन रहा था तो राज कपूर का समय था, देवानंद का समय था, तो सबका अपना अपना और ग्रुप बन गया था. पर इन सभी में क्या ऐसा नहीं लिखा गया कि मदन मोहन जी ने खास इस सब से जुड़े हुए थे, ये अपना अपार्थ रहे पर सभी फिल्मों में ये अपना सहयोग दिए गए, ऐसा?
0: हाँ, जैसे कहते हैं ना, बैकग्राउंड में रहा पर भी जैसे फंडेरिंग था फिल्म का, और ये कलाकार लोग के एक फंडेरिंग था, तो ऐसे ही आगे बढ़ा. और सिर्फ राजकुमार जी जुड़े नहीं थे, हम भी जुड़े थे उन दिनों में. मुझे भी बहुत अच्छा लगता, आज भी अच्छा लगता है वो सब फिल्म देखने के लिए, राज कपूर के और देवानंद जी का, और उनका गाना जो है तो रोंगटे खड़ा हो जाता है.
1: बिल्कुल सच कह रहे हो, क्योंकि शुरू शुरू में जब मदन मोहन जी का और जो एंट्री लिए ना फिल्मी दुनिया में, तो एस डी बर्मन के साथ और श्याम सुंदर के साथ उन्होंने असिस्टेंट काम किए. फिर उसके बाद में अपना काम जब प्रारंभ किया तो कितने ढेर सारे और गीतों को बनाए, गीतों को कंपोज किए और जाकर के फिल्मों में रखे. पहले हम सब जब एलपी मिलते थे ना हर एक फिल्म में, उसमें एक फोटो रखे जाते थे कि ये लता का और मदन मोहन का, तो हमें अभी वो ख्याल आता है कि मुझे ये नहीं पता था ये किसका है ये फिल्म में कभी. मुझे तो लगता था कि जैसे कि अभी आपने हम सबको शुरुआत में बताए सुनाए,
0: जिम्मेदारियां
1: होता है प्रोड्यूसर का, और इस प्रकार से सॉन्ग डायरेक्टर का फोटो भी रखा जाता था जो एलपी के हुस पे, क्योंकि हर एक फिल्म में कितने ढेर सारे गाने होते थे.
0: पर कितने अच्छे से तुमने कहा ना कि ये लता जी के और ये फिल्म, जो फिल्म जिस फिल्म का ये गीत चलता था, तो जो खिलाड़ी उसमें था उनका पिक्चर तो यानी फोटो के तो बहुत बड़ा बड़ा दिखते थे, और जो हाल के बहुत सा बहुत ज्यादा उसमें काम किया तो उनका फोटो बहुत छोटे थे,
1: एक छोटा सा फोटो. बिल्कुल. सुनने वालों, इस बात को शायद आपको सुन को भी ख्याल आता होगा, और जरूर अगर आपके पास जो अभी प्लाट क्या कहते थे उसे, एलपी और सिंगल हो, तो जरा उस पे और कोशिश करके देख लेना, क्योंकि ये बस चंद दिनों तक देख सकते हैं आप.
0: और एलपी और
1: सिंगल होते थे,
0: सिंगल उससे पहले भी एक था,
1: एक हाँ जो ये था, एक था 45 तक, एक था 78 तक, और उससे पहले एक और था पर उसका नाम नहीं पता मुझे,
0: मेरे को पता नहीं, पर
1: हमारे सुनने वालों को शायद पता होगा जो उस समय अपने घर से जो पुराना कुछ, क्योंकि वो दीप लात वाला इट्स देकर है
0: क्लॉथ, या और हम लोग के पास भी था घर पे,
1: तो सो मात्रा. हाँ, तो वो कौन सा साइज रहा ये भी नहीं पता मुझे, एई पे ही था ना,
0: इसने कुछ है पता ना उतना ठीक से.
1: मुझे भी नहीं पता. शांता जी, जो क्योंकि आप एक ही नाराजी और
0: हाँ, तो उसके बाद तक कैसेट आए, तो फिर सीडी आए, अब तो यहाँ यूट्यूब पर ये जो चाहते हैं देख लेते हैं. पर यूट्यूब पे ऐसे भी है कि अगर वो सब गीत जो है वो डाउनलोड करके नहीं रखेगा तो आप भी नहीं सुन पाओगे, तो हमको भी शुक्रगुजार करना चाहिए कि वो सब जो डाउनलोड करके और रख देते हैं हमारे खात आसान कर देते हैं,
1: तो हम लोग के भी आसान हो जाता है कि हम लोग कंप्यूटर पे और नाम रखते हैं और उसका गीत हम सबको सुनने को प्राप्त हो जाता है. सुनने वालों, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हूँ, और बबली जी कुछ कहने वाले नहीं. शांता जी, आप जो आपका संदेश पूरा हो गया,
0: पूरा तो नहीं हुआ है, पर मैं कहना चाहती थी कि जब आपको पता है कि कोई के जन्म भी होता तो मृत्यु भी हो जाता है, पर ऐसा भी होता है कि अच्छे अच्छे लोग और दिन भी रहते तो कितना अच्छा होता, पर क्या करें,
1: समय का खेल निराला है।
0: वही तो मैं यह कहना चाहती कि कैसे बता रही थी कि मदन मोहन जी की मृत्यु कैसे हुआ और कहां पर कैसे हुआ। तो जैसे हमने कहा इन नेखन तीन फैफ से तक ऑप इन फैफ तक यार लेफ तेत स्थिर मोहन आन लेफन सीरोस।
1: तो ये लेफर का कुछ है, क्योंकि उसके बारे में बताया गया है कि वो शराब का भी शिकार हो गए थे ना, तो शराब पीने से लोग कहते हैं कि लेफर खराब हो जाता है। और एक फिल्म भी बनाया गया था जिसमें अमिताभ बच्चन बार बार ये जिक्र करते हैं, कौन सा फिल्म में था?
0: मेरे ख्याल से सत्य पे सत्ता।
1: हाँ, सत्य पे सत्ता में, तो उसमें ये संदेश रखता है अमिताभ बच्चन की दारू पीने से लेवर खराब हो जाता है,
0: बहुत ज्यादा दारू पीने से लेवर खराब हो जाता है।
1: सही बात, आपने पूरा डायलॉग सुना दिए और सुनने वालों यही बात हुआ कि शायद मदन मोहन जो एक सोनखरौत आर्टिस्ट जो जा करके और उसका मृत्यु जो एन फाइव तक यार पे हो गई है, पर फिर भी आज तक दुनिया के हर एक देशों में उनका गीतों को सुना जाता है। बबली जी भी कुछ रखने वाले हैं।
2: मदन मोहन जी संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह रहे। गायिका बेगम अख्तर जी कहती हैं, बेगम अख्तर जी की गज़ल गायन का प्रभाव भी मदन मोहन जी की बंदिशों में सुनने को मिलता है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मदन मोहन जैसी गज़लों की रचना करने में कोई फिल्म संगीतकार सफल नहीं हुआ है। मदन मोहन की कुछ लाजवाब गज़लें हैं, उनको यह शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। आज सोचा तो आंसू भर आए, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, इसी में प्यार की आरजू और हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ प्रमुख हैं।

जिंदगी जीना एक कला है, जिसने ये कला सीख लिया वो जिंदगी जीत लिया। सुनने वालों, आपने सुन रहे थे फंकारों की दुनिया। स्वीकार कीजिए शांता की। नमस्कार।

नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत सबको चौंका देती है। सुनने वालों, यहाँ तलक जो कार्यक्रम फनकारों की दुनिया हम सब आपके लिए रखे, हमारे साथ दिए बबली आसरा जी और शांता खेमाई जी, मैं हूँ आपका सेवक संजय और आशा ये रखता हूँ कि जरूर इस कार्यक्रम को सुनकर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: कार्यक्रम जो यहाँ फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से प्रस्तुत किया जा रहा है, फनकारों की दुनिया। दोस्तों सुनने वालों, यहाँ से कार्यक्रम जो प्रारंभ हो रहा है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबली आसरा जी, शांता खेमाई जी, और ख़ास करके आज हमारे साथ अनुराधा जी जो ये कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। तो अनुराधा जी, आपको हम जरूर ये कहना चाहूँगा कि अच्छे कार्य करने वाला कभी सम्मान का भूखा नहीं होता है, क्योंकि उसका कार्य खुद उसे सम्मान का पात्र बना देता है। और ऐसा सोच लेकर आपने हम सब के साथ सहयोग दिए हैं। तो पहला आवाज जो आपके और हम सब रेडियो फाहोन द्वारा आपका और सुनेंगे, तो आप अपना इंट्रो दीजिए।
1: धन्यवाद संजय जी, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया, और मैं कुछ थोड़ा सा आप लोग के साथ कुछ सुना सकूँ, कुछ बात कर सकूँ।
0: तो हमारे साथ आप जुड़ गए हैं, और आप हम सब के लिए भी जरूर कुछ न कुछ सुनाएंगे। पर आज का कार्यक्रम में जो हम सब फनकारों की दुनिया लेकर आ रहे हैं, और उसमें ख़ास करके यश चोपड़ा के बारे में बातचीत होगा। यश चोपड़ा एक ऐसा और फनकार, ऐसा फिल्म डायरेक्टर जो हुए, बड़े बड़े पिक्चर, बड़े फिल्म बनाए। पर उस ओर बढ़ने से पहले बबली जी, आप अपना इंट्रो दीजिए, और शांता जो पैनल के पीछे बैठे हुए वो भी अपना पहले सहयोग देते हैं।
2: हाँ जी, जरूर। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

0: तो सुनने वालों, बबली जी भी अपना एंट्री दे चुके हैं और बबली जी के बाद में तो शांता खेमाई जी जो हमारे साथ बैठे हुए। तो शांता जी, आज फनकारों की दुनिया के ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं, हमारे सुनने वालों क्या इसके बारे में क्या एक्सपेक्ट करेंगे?
1: तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे क्या मुझे को न पता, बस आप सुनते ही रहना हमारे साथ। जैसे सुने आपने खास व्यक्ति आई है अनुराधा जी, तो उनको भी हम साथ में मिलकर यहाँ प्रोग्राम बनाएंगे। पर उससे आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बताता है, मगर हंस के किया हुआ कार्य आपकी पहचान बताता है। इसी वाणी के साथ आपको हम यहाँ बहुत प्यार के साथ स्वागत कर रही हूँ, और स्वीकार कीजिए सेविका शांता की भी प्यार भरी राम राम प्रणाम।
0: सुनने वालों, आप सुनते रहना यश छोपड़ा, जो जिनका जन्म पंजाब से हुए और उन्होंने जा कर के ऐसा बड़े बड़े पिक्चर हम सब के लिए बनाए, बड़े बड़े और फिल्मों जो जाने की आ फिल्म्स उन्होंने और बनाए, उसके बारे में हम सब अभी काफ़ी जानकारी सुनने वाले हैं। पर क्यों ना शांता जी, उसकी एक फिल्म का एक झलक हम सुनते हैं। फिल्म का जो वीर सारा से निकाला गया ना,
1: उनकी आवाज में, यश चोपड़ा जी की आवाज में,
0: जरूर यश चोपड़ा जी की आवाज में हमें और उसका आवाज पहले सुनते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनते रहना सुनने वालों।

सुरमई से अंधेरे की चादर हटा के एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया तो देखा दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी हैं। अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलते हुए देखती है लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी जैसे हर पल नई और फिर भी वही हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में कोई मोहब्बत भी है कोई हसरत भी है पास आना भी है दूर जाना भी है और ये एहसास है वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है ये कहता हुआ दिल की वादी में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर

0: वीर सारा से निकाला गया है ये फिल्म जो यश चोपड़ा जी ने बनाए, और उन्होंने जो नई खंतीन त्वेन दर्तक में जन्म हुआ और जाकर के त्वे दर्शन त्वालफ में उनका और देहांत हो गया, उन्होंने कितने बड़े बड़े फिल्मों बनाए और जाकर के, और हमारे साथ जो आज के कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, तो बबली जी यश चोपड़ा जी के क्या आप लेकर आए हैं हमारे सुनने वालों के लिए?
1: हाँ जी, यश चोपड़ा जी की जीवनी। यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर 1932 को हुआ। हिंदी फिल्मों के वे प्रसिद्ध निर्देशक थे। बाद में उन्होंने कुछ अच्छी फिल्मों का निर्माण भी किया। उन्होंने अपने भाई बी आर चोपड़ा और आई एस जौहर के साथ बतौर सहायक निर्देशक फिल्म जगत में प्रवेश किया था। 1959 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म धूल का फूल बनाई थी। उसके बाद 1961 में धर्मपुत्र आई। 1965 में बनी फिल्म वक्त से उन्हें अपार शोहरत हासिल हुई। उन्हें फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कई पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। बॉलीवुड जगत से फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अतिरिक्त भारत सरकार ने उन्हें 2005 में भारतीय सिनेमा के उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। यश चोपड़ा जी का जन्म 27 सितंबर 1932 लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ और उनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 2012 मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। उनका पेशा था फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता व पटकथा लेखक, और उनका कार्यकाल था 1959 से 2012 तक।

यश चोपड़ा जी की शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम था पामिला चोपड़ा और उनके दो बच्चे हैं आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा और उनके बड़े भाई का नाम है बी आर चोपड़ा। सुनने वालों, मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ यश चोपड़ा जी की जीवनी के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया और कौन कौन सी फिल्में बनाई और उनके परिवार में कितने लोग थे और सारी बहुत सारी जानकारी। यश चोपड़ा ने हिंदी सिनेमा का रुख ही बदल दिया। शशि कपूर, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शाहरुख खान को यश चोपड़ा अपनी ज़्यादातर फिल्मों में लेते थे। ये फिल्म स्टार उनके बहुत फेवरेट थे, उनकी हर फिल्म में ये लोग होते थे। सुनने वालों, यश चोपड़ा के फेवरेट दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान रहे और इनको लेकर यश चोपड़ा ने कई फिल्में बनाई। यश चोपड़ा की फिल्मों में रोमांटिक सीन बहुत दिलचस्प होते थे और वे अपनी हीरोइनों को शिफॉन की साड़ी के साथ बारिश में भिगवाते जरूर थे। उनके लिए खूबसूरत लड़की का मतलब तभी होता था जब वो शिफॉन के लिबास हो और इसी लिबास में वो अपने प्रेमी के करीब आए। यश चोपड़ा के बारे में कई किस्से हैं, चलिए मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। यश चोपड़ा जी की पत्नी का नाम था पामिला चोपड़ा और वह अपनी पत्नी का गाना फिल्म में ज़रूर रखते थे क्योंकि उनकी पत्नी को गाने का बहुत शौक था। और चांदनी फिल्म में आपने उसका गाना ज़रूर सुना होगा। और उनके बेटे थे आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा और उनके बड़े भाई थे बी आर चोपड़ा। यश चोपड़ा के पिता लाल विलायती राज चोपड़ा ब्रिटिश पंजाब एडमिशनरी में पीवीडी अकाउंट थे और पूरे परिवार के साथ जलंधर में रहते थे। यश चोपड़ा 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनके सबसे बड़े भाई बी आर चोपड़ा इनसे 18 साल बड़े थे और वह हिंदी सिनेमा के पॉपुलर फिल्म मेकर थे। सुनने वालों, आपको पता होगा कि बी आर चोपड़ा जी ने बहुत सारी हिट फिल्में दी। वो ज़्यादातर समाज के ऊपर फिल्में बनाते थे। उन्होंने वक्त फिल्म बनाई और माँ भारत सीरियल बनाया है और निकाह फिल्म जो कि एक मुस्लिम फिल्म थी और उसमें दिखाया कि औरत को कैसे आदमी लोग तलाक दे देते हैं, वो उसके ऊपर थे। और एक उन्होंने फिल्म बनाई थी इंसाफ का तराजू, जीनत अमान और राज बब्बर को लेकर, और पद्मिनी कोल्हापुरी, वो भी उन्होंने औरत के ऊपर बनाई थी। यश चोपड़ा की शुरुआती पढ़ाई से ग्रेजुएशन जब जलंधर से हुआ लेकिन इंजीनियर की पढ़ाई इन्होंने लुधियाना से की थी। चोपड़ा और जौहर का रिश्ता इनके बी आर चोपड़ा और करण जौहर के दादा आई एस जौहर से चला आ रहा है। यश चोपड़ा के घर वाले उन्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब करते देखना चाहते थे लेकिन उनका मन भाई के साथ फिल्मों में लगता था। इनके पिता इनके लिए तैयार नहीं थे तो माँ ने इन्हें मुंबई इनके भाई बी आर चोपड़ा के पास भेज दिया जिससे यश चोपड़ा का सपना पूरा हो सके। हर किसी की तरह इनका सपना भी हीरो बनने का था लेकिन बात नहीं बन पाई और इन्होंने अपने भाई को असिस्ट करना शुरू कर दिया। मगर साल 1959 में इन्होंने अपनी फिल्म धूल का फूल से निर्देशन की शुरुआत की। हालांकि इस फिल्म को उनके भाई बी आर चोपड़ा ने निर्मित किया था। यश चोपड़ा ने अपने भाई के प्रोडक्शन में धर्मपुत्र, इत्तेफाक, वक्त, आदमी और इंसान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। इस दौरान उन्हें एक सफल निर्देशक का खिताब मिल चुका था लेकिन यश जी को कुछ अपना चाहिए था।

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुनी और नेहती नेहना 50 से, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े फिल्मों को रखे, ये बड़े फिल्मों बनाए, पर उसमें से जब देखा जाए कौन सा फिल्म जो बनाई उन्होंने और हम सब, क्या उसका नाम आपको पता है कि कुछ मशहूर फिल्में?
1: सुनने वालों, यश राज जी की मशहूर फिल्में हैं दीवार, त्रिशूल, कभी कभी, सिलसिला, मशाल, फासले, फिर दोहराया 90 का, और यश चोपड़ा कई अनुभव पाना चाहते थे। सुनने वालों, यश राज जी जब फिल्मों में आए तो वो हीरो बनना चाहते थे, और जो हीरो न बन सके तो फिर उन्होंने सोचा कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई और काम किया जाए। तो उन्होंने अपने भाई के साथ काम किया, फिर वहाँ भी उनका कुछ और पाने की तमन्ना थी। तो साल 1971 में उन्होंने अपना बैनर बनाया और अपने बैनर की शुरुआत की, और जिसका नाम रखा यश राज फिल्म्स, और अपना प्रोडक्शन उन्होंने खोला। तो फिर उन्होंने फिल्म बनानी शुरू की, जिसमें उनकी सबसे पहली फिल्म थी दाग, और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई, और इसमें राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी ये मुख्य भूमिकाओं में थे, और इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यश चोपड़ा हमेशा अपने दौर से 5 साल आगे का सिनेमा देखते थे, तभी उनकी फिल्मों में चीज़ें नज़र आती थी। खासकर उनके निर्देशक में बनी फिल्म जिसमें वे दो चीज़ें महत्वपूर्ण समझते थे, एक फिल्म का लोकेशन और दूसरा फिल्म की हीरोइन। बाकी कहानी थोड़ी कम भी हो तो चल जाता था। स्विट्ज़रलैंड को यश चोपड़ा ने इतने अच्छे से अपनी फिल्मों में दिखाया कि वहाँ का पर्यटन काफ़ी अच्छा हो गया। बाद में वहाँ की सरकार ने 25 अक्टूबर 2010 में यश जी को एम्बेसडर ऑफ इंटरलिकन अवार्ड से नवाजा था। सुनने वालों, स्विट्ज़रलैंड की सरकार ने उनको अवार्ड भी दिया। इतना ही नहीं, उनके नाम से एक सड़क भी वहाँ है और एक ट्रेन भी चलाई गई है गई थी। सुनने वालों, मेरे को भी आज पता चला देखो कि उनके नाम से स्विट्ज़रलैंड में एक सड़क भी है और एक ट्रेन भी चलती है।
0: क्यों समय जब ये फिल्म निकलते थे ना, तो पहला चीज की फिल्म थिएटर के आगे बड़ा पोस्टर बनाया जाता था, बड़े पोस्टर बनाया जाता था। अभी तक तो इंडिया में ऐसा होता है
2: जी, अभी भी होता है, पोस्टर बहुत बनता है। और अमिताभ बच्चन के घर के सामने तो लोगों की भीड़ हर रविवार को, हर संडे की दिन उनके चाहने वालों की तो भीड़ लगी जाती है।
0: तो अभी तो आप कह रहे हैं कि संडे को हमारा फ्लाइट तो मंगलवार को जाना है और बृहस्पतिवार को वापसी है, तो मैं देख नहीं पाऊंगा। पर दोस्तों, ये बात है कि ऐसे बॉलीवुड स्टार्स के और जा करके जो मिलना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि अभी अनुराधा जी ने ये संदेश में रख भी दिया कि अमिताभ बच्चन जैसे कि हर रविवार को और अपने फैंस को लिए और निकलते हैं, खास करके फैंस के लिए ना
2: जी।

0: जो सुनते नहीं हो दिलों के दुहाई, शांता जी जो सुनते नहीं हो दिलों के दुआई, और दुआई के अंतर्गत जो हम आज का विषय कलाकारों जो हमारे लिए अपने ओर से अपने कला से इतना बड़े बड़े फिल्म बना करके और छोड़ करके चले गए हैं आज, तो बबली जी और क्या संदेश है?
1: सुनने वालों, यश चोपड़ा जी चांदनी फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उनको कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी, तो वो सोच रहे थे मैं किसको फिल्म में लूँ, क्योंकि उनकी दो फिल्में पहले फ्लॉप हो चुकी थी, कभी कभी और सिलसिला, और इसी कारण उनके साथ कोई काम नहीं करना चाहता था। और इसी दौर में यश चोपड़ा जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि उस समय श्रीदेवी जी ने उनका साथ दिया और बिना फीस मांगे फिल्म में काम करने को तैयार हुई। फिल्म रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद श्रीदेवी जी ने उनकी फिल्म लम्हे में भी काम किया और वह यश चोपड़ा जी की फेवरेट एक्ट्रेस बन गई। यश चोपड़ा के दिल के करीब शाहरुख खान थे और वह शाहरुख खान को अपना बेटा मानते थे। शाहरुख खान को रोमांस करना यश जी ने ही सिखाया। इनके निर्देशन में शाहरुख खान ने डर, दिल तो पागल है, वीर ज़ारा और जब तक है जान की। साल 2012 में यश चोपड़ा ने अपनी मौत से ठीक एक महीने पहले शाहरुख खान को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने बताया कि फिल्म जब तक है जान के रिलीज़ के बाद वे रिटायरमेंट ले लेंगे और अपना सारा समय परिवार को देंगे, जिस बात पर शाहरुख खान इमोशनल हो गए थे। यश चोपड़ा को अक्टूबर में डेंगू बीमारी हो गई और 21 अक्टूबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और 13 नवंबर को बेहद शांति के साथ उनकी फिल्म जब तक है जान रिलीज़ की गई थी। यश चोपड़ा जी के निधन पर पूरा बॉलीवुड गमगीन हो गया था और रोमांस का किंग कहे जाने वाले यश चोपड़ा के निधन पर हर कोई रोया था, खासकर शाहरुख खान को इसका बहुत बड़ा धक्का लगा था और उन्होंने मीडिया में यह कहा था कि उन्होंने एक बार फिर अपने पिता को खो दिया। साल 2001 में यश चोपड़ा को भारत के सर्वोच्च सिनेमा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद 2005 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। सुनने वालों, ये दोनों जो अवार्ड हैं ये भारत के सबसे ऊंचे अवार्ड माने गए हैं, दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण। जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है, सुनने वालों, ये जब सिनेमा की शुरुआत हुई, बॉलीवुड में फिल्म बनने शुरू हुई, तो दादा साहब फाल्के जी ने सिनेमा की शुरुआत की फिल्में बनाने की और उन्हीं के नाम से दादा साहब फाल्के अवार्ड की भी शुरुआत हुई। उन्हीं के नाम से

0: दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

0: और इसी प्रकार से वीर सारा को बनाया गया। उसमें खास करके सभी और लता जी भी अपना आवाज़ दिए और सभी कुछ यंग सिंगर्स ने सोनू निगम आदि और जाकर के अपने आवाज़ दिए ना
1: जी। वीर ज़ारा जो कि 2004 में बनी और देखिए ये अभी 2023 वर्ष चल रहा है तो 20 साल होने को आए 19 साल अभी तक। वीर ज़ारा का नाम लेते ही हमें शाहरुख खान और प्रीति जिंटा रानी मुखर्जी का जो किरदार उन्होंने लॉयर का किरदार निभाया आज तक उस पिक्चर के संगीत को याद करके और एक यादगार फिल्म उन्होंने बनाई।
0: आप कह रहे हो मेरा सामने वो भी और चित्र आ रहे हैं कि बिल्कुल एक विशुंदर फिल्म जिन्होंने बनाया। तो शांता जी मैं देख रहा हूँ पिटारा से कुछ और निकलने वाले हैं।

तो ये फिल्म लम्हे से हम सब निकालने वाले हैं, ये गीत जो हमारे और शांता जी जो पिटारा से भर के लाए हैं,

मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों, आप तो सुन रहे हैं कि हम यशराज चोपड़ा के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ सोचती हूँ कि आपको भी थोड़ा दच में यशराज चोपड़ा जी के बारे में आपको भी बता दें। यशराज चोपड़ा जी, जो इनके जन्म हुआ है 7 सितंबर 1932 एंड है ओवरलेट ऑफ 21 अक्टूबर 2012, वॉज एन इंडियाज फिल्म रेजिसर एंड फिल्म प्रोड्यूसेंट दी इन द हिंदी सिनेमा वर्क द ऑपरेक्टिंग द फोर्सेटर फॉर द फिल्म प्रोडक्शन एंड distributiebedrijf Yes Chopra Films. Ja toch? Chopra ontving verschillende prijzen, waaronder 6 Nationaal Film Awards en 8 Filmfare Awards. Hij wordt beschouwd als een van de beste Indiase filmmakers voor zijn bijdrage aan film, eerder de Indiase regering hem in 2001 met een Dada Saheb Phalke Awards, wat bijzonder, en in 2005 met de Padma Bhushan, wauw, en Brits Academy of Film and Television Arts BAFTA 2006 schonk hem een levenslang lidmaatschap, waarmee hij de eerste Indiër was die een eer ontving. तो यहां से आपको छोटा ही रूप में श्री यशराज चोपड़ा जी के बारे में हमने यहां से आपको बताए।

सुनने वालों, यहाँ तक था कार्यक्रम फनकारों की दुनिया, जिसमें संदेश रखा गया। आज का संदेश में हमारे मशहूर, हमारे जो बड़े प्रोडक्शन वाला यशराज जी, उसके अंतर्गत में कुछ संदेश रखा गया। आशा यह रखता हूँ कि ज़रूर कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। हमारे साथ सहयोग दिए अनुराधा जी, बबली आसरा जी और शांता खेमाई जी। मैं हूँ आपका सेवक संजय, और फिर मिलेंगे।

दोस्तों, जब कोई सोचता है कि वह बहुत अमीर, ताकतवर, शक्तिशाली व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति पागल और अहंकारी है। चाहे वो किसी भी धर्म, संस्कृति और रंग का क्यों ना हो। मित्रों, इसका मतलब अक्सर ये भी होता है कि वह व्यक्ति सही रास्ते से भटक गया है और अज्ञानता में चला गया है, और इसका परिणाम हमेशा आज या कल एक बड़ी हार है। और ये इस दुनिया में हर किसी के लिए है, हर किसी के लिए है मित्रों, चाहे वो किसी भी पद या क्षमता में क्यों ना हो। ये आप मत भूलें, क्योंकि जो कुछ भी है आपके पास वो क्षण भंगुर है, थोड़ी समय के लिए है। जब तू मरेगा तो सब चीज छोड़ कर जाएगा। आप तो देखते हैं रोज ना, तो आप ही बचेंगे, आप ही लेकर जाएंगे, नहीं तो सोच विचार बदलो। जो कुछ है आपके पास उसका आनंद उठाओ, हो सके तो दूसरों को भी आनंद लेने दो, दूसरों को भी खुश करो। इसी का नाम जीवन है। जीवन का नाम है परिवर्तन। अपने जीवन में परिवर्तन लाया करो मित्रों।

मित्रों, ये घटना हजारों वर्षों से चली आ रही है और हमेशा ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इस झूठी शक्ति और लालच ने मनुष्य को अपना वश में कर लिया है। वो अपनी प्रकृति, आदतों और गुणों को भूल गया है, जिससे कि राक्षसी ने उस पर कब्जा कर लिया है। लोग केवल अपना और अपने लोगों का हित देखते हैं, जबकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत से निर्दोष लोग उनके ये अहंकार के कारण बर्बाद हो गए हैं और वे उन तथा कथित शक्तियों से प्रभावित है। मित्रों, इसीलिए अपने पद का, अपने पावर का, अपने धन पे या कुछ भी हो उस पे घमंड मत करना। लोगों से मिल के रहो, यही अच्छा कर्म है, यही आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। अन्यथा आप वहीं रह जाएंगे जहां आप, समझ लीजिए।

दोस्तों, इसी तरह से बहुत से बुरे लोग इस दुनिया में सत्ता में रहे हैं और उनकी मृत्यु हो गई है और उन्होंने अपना कोई सामान नहीं ले गया है, कुछ भी नहीं ले गया है। फिर मूर्ख व्यक्ति, आपके मरने के बाद क्या तुम अपने साथ कुछ ले जाओगे? तुम मूर्ख विचारक स्वार्थी हो, इसीलिए अच्छे बनो, अच्छे बनो और अपने वादे निभाओ। जो वादा किया है ना, उसे निभाओ। वादा आपने भगवान को, भगवान के नाम लेकर किया है, हैं? तो वादा निभाओ, क्योंकि कुछ समय के बाद तुम्हें आम तौर पर मौत के घाट उतार दिया जाता है, आप मर जाओगे। मित्रों, इसके बारे में जरा सोचो, सोचो है? ना जितना न कुनवा लंबे हुई तक सोचो, और दूर सोच, भविष्य आगे में सोच, का हुई सोचना नहीं है। देखो दुनिया में, आपने रोज देखा है, रोज देखते हैं कि कितने लोग आए और कितने लोग गए। बहुत महान लोग, बहुत बुरे लोग सब अइले गइले। तो आप रह जाओगे अपने सामान पर कुंडली मार के बैठोगे? नहीं नहीं मित्रों, नहीं, तू भी जाएगा।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम

सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय, जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाहोन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को लेकर खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए। और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है। और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुन वालों, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी की कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफ़र करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि डेन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवा धाम मंदिर जो डेन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन के ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज़ में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

0: Wow.
1: सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्तपन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

अ ग्रेट सॉन्ग हल्ला लो, जिसमें काम किए राम चरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राश्मिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

कुछ अच्छे अच्छे नगमे, प्यार भरे नगमे चुन कर रखी हूँ, तो ज़रूर से हम यहाँ से शुरुआत करने को जा रही हूँ उदित नारायण जी की आवाज़ में। अच्छा लगता है तेरा नाम मेरा नाम के साथ, अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई खूबसूरत सुबह जुड़ी हो किसी हसीन शाम के साथ।

Modit Narain aur Shriya Ghoshal film ka naam Khaki, music director isme hai Ram Sampat ji. प्यार वो एहसास है जो मिटाने से मिटा नहीं, प्यार वो एहसास है जो मिटाने से मिटा नहीं, प्यार वो पर्वत है जो झुकाने से झुकता नहीं, प्यार की कीमत क्या पूछते हो यारो, प्यार की कीमत क्या पूछते हो यारो, प्यार तो वो अनमोल हीरा है जो बाजारों में बिकता नहीं. Liefde is jezelf durven zijn, samen lachen en huilen en voor elkaar zijn, geven en nemen, luisteren naar elkaar, knuffel. Tumse Milna film naam.

बड़ा अच्छा लगता है फिल्म नाम से ये सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल गया है। आज जो वैलेंटाइन के दिन है, इस वैलेंटाइन के उपलक्ष पर आपके लिए रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी, रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना। रिश्ता बनाना इतना आसान है लेकिन रिश्ता निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे, सुनिए, पानी पर पानी से पानी लिखना।

इतना प्यार करते हैं सनम, वाह रे इश्क क्या कहना तेरा, वाह रे इश्क क्या कहना तेरा, जो तुझे जान ले तू उसी का जान ले।

तुझको भी प्यार हो जाए मुझसे शादी करोगे। जी फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगे। अलका याग्निक और उदित नारायण जी हमको सुना दी।

Dil mange mor, dil mange mor, श्रिया घोषाल उदित नारायण की, उदित नारायण जी की आवाज में सुंदर सा तैन गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। अनमोल थे वो पल जो बिताए थे तेरे साथ, अनमोल थे वो पल जो बिताए थे तेरे साथ, महसूस आज भी करता हूँ, महसूस आज भी करता हूँ सहला कर अपने हाथ। वक्त नित तत मोरखन मैथ खनितन, वक्त नित तत मोरखन मैथ खनितन, ने दू हैत फंदाख आसत कान स्टेल हैत नित ऐत, मार दू हैत नु हैत मक एख नित ऐत वारफान। Het leven is onvoorspelbaar, dus geniet van elk klein moment waarvan je hartje lacht en waarop je gelukkig bent. En wacht er niet tot morgen mee, maar doe het gewoon op deze, dag, want je weet nooit of je morgen opnieuw weer genieten mag.

सुना है कि बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, सुना है बहुत बारिश है तुम्हारे शहर में, ज्यादा भीगो मत, ज्यादा भीगो मत, अगर धूल जाएगी सारी गलत फैमिलियां तो बहुत याद आएंगे हम।

याग्निक, उदित नारायण जी सुना दिस, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना, किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं तुम्हें देने के लिए, बस ये सोचकर उसका साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं तुम्हारे सिवा खोने के लिए।

एक बार फिर यहाँ से हमको सुना दे उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी ने। झूठे रिश्ते मैंने किसी के साथ बनाए नहीं, सच्चे बहुत ढूंढे मगर कहीं पाए नहीं। जो मिला उसी में ही खुश रहता हूँ। मेरी उंगलियाँ ही मुझे सिखाती है, दुनिया में बराबर कोई नहीं है।

सुनने वालों, फा हॉन हिंदुस्तानी रेडियो के बस बाहे ठामे चलना, बदले दुनिया सारे पर आप नहीं बदलना। क्योंकि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, और कल कभी आता नहीं भैया, और आज कभी जाता नहीं। आकाशवाणी के प्यारे प्यारे सुनने वालों, जान पहचान दोस्तों, भाई बहनों, आप सबको हार्दिक से स्वागत है। आपको सादर से मेरी राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, सलाम, आदाब हो आप सभी को, नमस्कार हो जी। आप सब कैसे हो इस खूबसूरत मौसम में, इस खूबसूरत दिन में भी?

आप सभी को फन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से बहुत सारे प्यार मिले और बहुत सारे शुभकामनाएं भी पेश किया जाता है। आप ये इंस्ट्रूमेंटल सुन रहे हैं और ये सैक्सोफोन की आवाज आप सुनते हैं। एकदम मस्त

0: अरे ये का हो
1: रहुआ तो बोली मत हमरा से तो
0: अरे त मुंह का हालत का लगाड़ू
1: रहुआ बात मत करी हमरा से कोनो मतलब हमरा से रहुआ तो अपने धुन में रहे के बा
0: अरे बतिया का भल में बताइबे कि बेलमुंड बिगड़बे हमार ना मनबे बताओ का बोल।

बस कोका कोला के ही मांग है। U luistert de beste muziek op uw favoriete Faunistani Radio. मिलना बिछड़ना बस किस्मत का खेल है। हाँ, मिलना बिछड़ना बस किस्मत का खेल है। कभी नफरत तो कभी प्यार, दिलों का मेल है। बिक जाता है रिश्ता इस दुनिया में, बिक जाता है रिश्ता इस दुनिया में। बस एक दोस्ती है, हाँ जी, बस एक दोस्ती है जो नॉट फॉर सेल है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहना को, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहना को मिले। कई बार, हाँ, कई बार हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकाना पड़ता है। हाँ जी, वो तो बात सही है। बहुत ज़्यादा आप जो अच्छे होगे तो आपको, ऐसे भी लोग हैं जो आपको उतना से इज्जत भी नहीं करेगा। तो उसके साथ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं है। हाँ, टूटने का मतलब ख़त्म होना नहीं है, बल्कि टूटने से ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। जिसे सरल भाषा में कहते हैं कि अगर दरवाज़ा एक बंद हो तो भगवान 10 या 100 दरवाज़ा खोल देते हैं। बात यह है कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आकाशवाणी के सुनने वालों, आपने सुने अभी और यहाँ से आपको सुनाएंगे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से कुछ भोजपुरी गीत।

अंकुश राजा और शिल्पी राज से आपने सुने ये सुंदर सा भोजपुरी गीत। सुनिए जी, एक मतलबी बात सुनिए जी। चम्मच, आप चम्मच जानते होते हैं, लेपल, चिम्मच। कहते कि जिस बर्तन में रहता है चिम्मच, जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर जाता है। हाँ, चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि चमचों से सावधान रहना। और ये भी एक खास बात सुनने वालों, द बलोनिंग फॉर ओन्स लेफन इज, हाँ आप सोचेंगे कि आपके बलोनिंग क्या है ये लेफ में, द बलोनिंग फॉर ओन्स लेफन इज हैथ लेफन सेल्फ। क्योंकि जब आप ना रहिए तो आप बलोनिंग और क्या ले पाओगे। तो ये जिंदगी भी जो हमें मिले है, जो जिंदगी है, ये भी एक बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा गिफ्ट है। द बलोनिंग फॉर ओन्स लेफन इज हैथ लेफन सेल्फ, हाउ फाइन योर लेफन, हाउ फाइन योर सेल्फ एंड द रेस्ट साल माई फॉल्कन।

सभी के लिए ये सुंदर सुंदर गीत जो यहाँ से आप सुनते हैं, आप ही के लिए यहाँ से प्रस्तुत किया जाता है। बड़े ही बेबस होते हैं वो लोग, बड़े ही बेबस होते हैं वो लोग जो झूठे नहीं होते, हाँ, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए सच नहीं कहते।

और यहाँ से ये ज़रूर भी कहूँगी ये खूबसूरत मौसम में कि मेरे मंगल होए, मेरा मंगल होए, तेरा भी मंगल होए। और यहाँ से जो जो सुनते हैं, जो भी नहीं सुनते, बस आप संदेशा देते रहे ना कि सबके मंगल होवे। एक शुभ दिन आप सभी को प्रकट हुए, वैसे लिव द दिस बार है आप सभी को। बहुत प्यार के साथ आपको हम लेकर चलते हैं खूबसूरत गीत जो हम आपने सुने, और यहाँ से फिर से

हाँ के पागल बने हुए का सुने वालों आपने सुने केसरिया लाल यादव और प्रियंका सिंह की आवाज में। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है, इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा वो उन चीज़ों से बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है। तो जो आपको आप ऐसे हो, जो आपके ऐसे कोई है, कुछ है जो आपके अंदर ही अंदर खाते हैं, तो आप उसका इलाज करो। क्योंकि अंदर ही अंदर खाने वाला चीज आपका एक दिन आपको एक दिन खा जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। इलाज करो, निकाल के बाहर करो, स्वस्थ हो और तंदुरुस्त ही जीवन जियो।

हाँ सुनने वालों, आपको बताई कि बगल वाली बस जान मार दी। खूबसूरत ये भोजपुरी गीत आपके लिए आपको सुनाए मनोज तिवारी जी ने। यहां से हम आपको एक छोटा वाला जोक बताएंगे। आदमी अपना दूसरा शादी करके घर पे आई तो पत्नी दूसरा पत्नी ये कहती है, ये पूछती है कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप शादीशुदा हो। तो पत्नी पूछ रहे हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप शादीशुदा हो। तो पति कहता है, बताया तो था, हाँ बताया तो था कि आपको रानी की तरह रखूंगी। और इसमें आप दो मतलब निकाल सकते हो कि आपको रानी की तरह रखूंगी कि पहले बीवी की तरह, या आपको खुद रानी की तरह रखोगे। हाँ तो ऐसे था कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके कि आप शादीशुदा हो। तो पति कहता है, बताया तो था कि आपको रानी की तरह रखूंगी। एक और है, माता जी यानी कि एक सासू माँ, एक माँ जी अपने बहू से पूछ रहे हैं, अपने बेटी से पूछ रहे हैं, तू मुझे ये बता मेरी वजन कम कैसे होगा। हाँ वो थोड़ा सा अफसलांक होना चाहती थी, तो पूछ रहे हैं बेटी से, तू मुझे ये बता कि मेरी वजन कम कैसे होगा। तो बहू या बेटी कहती है, माँ जी आप घास भूस और सैलत खाओ। हाँ आपको पता हो गए ना कि घास भूस और सैलेड खा। तो माँ जी और कहते कि उससे ना वजन कम हो जाती है, घास भूस सैलेड खाने से, फिकतारिस ईत से कहते हैं बहू कि उससे वजन कम हो जाती है। तो माँ जी कहते कि अच्छा ऐसे बात है, तो हाथी बैल गाय इनका वजन क्यों कम नहीं हुआ। आप जरा सोचो तो। हाँ सुनने वालों, सुबह और शाम बस मोहब्बत का अंदाज रहे और आपको लेकर चलते हैं।

भाई बहुत देर भर ये स्पेल चेक खेले छे चोरवा सिपहिया के स्पेल चेक अब बताओ कि कब मुलाकतवा हो गया। मुलाकतवा ऐसे होते ही तो आगे ही बात बढ़ेगा। दिल में आपकी हर बात रहेगी। हाँ सुनने वालों, दिल में आपकी हर बात रहेगी, आपकी हर अच्छे अच्छे बात दिल में रहेगी। जगह छोटी है मगर आबाद ही रहेगी। चाहे हम भुला दो जमाने को, चाहे हम भुला दे जमाने को, आपकी प्यारा मुस्कान हमेशा याद रहेगी। आप सुन रहे सुनने वालों फान हिंदुस्तानी रेडियो जो देन हाँ न्यू तोंस्त्रात नंबर 25 पे है। ये आपका हर एक का रेडियो है, फान हिंदुस्तानी रेडियो, जनता की आवाज़।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। राजेंद्र जी, आज का जो हमारा विषय है कि चरण अमृत, चरण अमृत क्या है और उसके बारे में काफ़ी जानकारी हम सब लेकर यहाँ हमारे विशेषज्ञ जो हम सब के लिए खोज खोज करके रखे हुए हैं, तो हम अभी सुनाने वाले हैं। और ये कार्यक्रम में काफ़ी जानकारी है चरण अमृत के बारे में, पर राजेंद्र जी आज के जो विषय है उसमें उद्धव, उद्धव जो कृष्ण भगवान के मित्र थे, और ऐसा क्यों कि कृष्ण भगवान मनुष्य के शरीर धारण किए, और यानी कि कैसे, उसके बारे में कुछ जानकारी हम सबको आज सुनाने वाले हैं आप। फिर उसके बाद हम सब चरण अमृत जो आज का विषय है उस ओर बढ़ेंगे।
1: आपने कहा चरणामृत और उद्धव ना?
0: उद्धव जो कृष्ण भगवान जी का मित्र थे।
1: हाँ, जब आपने ये नाम ली उद्धव, तो मुझे याद हो गए कि हमारे बुजुर्गों जी ने पहले कहा थे कि ना उद्धव के लेना ना माधव के देना।
0: ना उद्धव को लेना ना माधव को लेना,
1: मतलब इसका क्या था?
0: अब आप ही सुना दो।
1: मेरे ख्याल से ये है कि ना कोई से उधार लेना और कोई से कर्जा नहीं लेना, ताकि आपको कुछ देना ना पड़े। हमने ऐसे यही सुनती थी उस
0: पहले पुरखों की बात, आजा दादा दादी
1: ये सब ऐसे हम लोग के ज्ञान देता था, तो ऐसे। और आपने कहा चरणामृत,
0: चरणामृत, अभी ये गलत फैमिली में ना रहे कि पंचामृत।
1: जी हाँ, वही
0: चरणामृत, यानी कि चरण का धुया हुआ और अमृत जैसे बनता है, तो अभी उसके बारे में हम सब छलांग लगाने वाले हैं।
1: दो हैगा,
0: दो प्रकार के।
1: हाँ, अच्छा,
0: हम सब अभी उस ओर बढ़ेंगे। पर राजेंद्र जी के हाथ में सारा बैकडोर है, और राजेंद्र जी पहले हम सब के कुछ और सुनाने वाले हैं।
2: हाँ, उद्धव जी के बारे में जैसे कि सब लोगों ने सुना भी होगा, और कृष्ण के मित्र में से एक अच्छे मित्र उद्धव थे। तो उद्धव सोचते थे कि मैं इतना अच्छा मित्र हूँ भगवान कृष्ण का, कि मैं सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ
1: जी।
2: तो उनको ये नहीं पता था कि गोपी जो हैं वो ज़्यादा प्रेम करती है प्रभु भगवान को, भगवान कृष्ण को ज़्यादा प्रेम गोपियाँ करती थी, लेकिन उद्धव को थोड़ा कन्फ्यूजन था कि वो ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उद्धव तो भगवान कृष्ण के साथ द्वारिका में थे ही, तो उन्होंने बोला कि उद्धव एक काम करो, जाओ एक बार वृंदावन होके आओ, देखो वहाँ का क्या हालचाल है, क्योंकि जब से मैं इधर आया उधर गया नहीं, तो थोड़ा वहाँ की खबर लेके आओ। तो उद्धव को कृष्ण भेजते हैं द्वारिका, द्वारिका से वृंदावन। और जब उद्धव वृंदावन पहुँचते हैं, तो वो देखते हैं वहाँ पे उनका प्रेम, गोपियों का प्रेम जो है भगवान कृष्ण से, तो वो सब वो अपना ज्ञान भूल जाते हैं उस प्रेम के आगे। वो फिर कहते हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, वंदगी तेरी बस में नहीं है। गोपियाँ कहती है बात प्रेम की है तो क्या जाने उद्धव, तो अपना ज्ञान नहीं जाने, प्रेम क्या होता है वो तुम्हें क्या पता। इसमें बहुत सुंदर ही एक गीत भी है उसके, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, और वो जो प्रेम था कृष्ण के प्रति गोपियों का, वो बहुत ही आगे था ज्ञान के आगे, प्रेम के आगे ज्ञान फीका पड़ गया। और आए थे उद्धव उनको समझाने, लेकिन वो वहाँ झुक गए और समझ नहीं पाए, और बहुत दिनों तक वहाँ रहे, और फिर माना उन्होंने कि हाँ प्रेम ज्ञान से ज़्यादा है, क्या ज़्यादा पलड़ा प्रेम का भारी है। फिर जब वो वापस गए वहाँ से, तो फिर कृष्ण भगवान को बोले कि अब मैं समझ गया हूँ, मैं थोड़ा अपना ज्ञान पे घमंड हो गया था, और अब पता चला कि हाँ प्रेम ज़्यादा, प्रेम का पलड़ा ज़्यादा भारी है, और ज्ञान उसके सामने कुछ भी नहीं। तो इस प्रकार से उद्धव के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमने बताया। आज का जो विषय है उसकी ओर बढ़ते हैं विषय के आगे की तरफ। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज, ये भी बिरहा गीत है, गोपी गाती है, और बिरहा गीत सबसे बढ़िया वाला, सबसे अच्छा बिरहा गीत है। वो कहती है कि इंदिरा शाश्वत ही दक्षित दृक्षम दृश्यता स्वकति, हे श्याम सुंदर आपके जन्म के कारण संभवता मही महिम ब्रजधाम पूर्वाक्षेप के सर्वापेक्षा अधिकाधिक उत्कर्षित को हो रहा है। वो यही कहती हैं कि जो ये धाम है वृंदावन धाम, ब्रजधाम, ब्रज धाम, ये ब्रज कोश की 84 कोश का एक धाम है, उसको बोलते हैं ब्रज धाम। गोपी यही कह रही है कृष्ण को कि आपकी वजह से इस जगह का इतना मान बड़ा है और बैकुंठवासी भगवती इंदिरा भी आपकी सेवा में उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में सतत आश्रय कर रही है। और जो बैकुंठवासी इंदिरा है वो भी आपकी प्रतीक्षा करी, आपकी सेवा करी इस जगह पे, तो ये धाम इतना, इसकी इतनी मान्यता हुई है। इसके बाद वो फिर कहती हैं, ब्रज बनिताएं आपके प्रयोग जन्य संताप से संतप तो अत्यंत क्षीण हो, इस तथा भटकती हुई भी आपकी निमित्त ही प्राण धारण की हुई ही दैत अभिभूत होकर हमें देखो। वो कह रहे हैं कि आप हमें देखो, केवल हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमको देखो, बस उसी में हम लोगों की सब कुछ उसी में आ जाता है। जैसे उक्ति से गीत प्रारंभ होता है कि जयति तीधिकम जन्मना ब्रज सुरुति नास्तिकाम श्री हरि प्रभु। जयति शब्द दोबारा इसलिए आया यहाँ पे कि अभिष्ट प्राप्ति एवं विघ्न निवृत्ति है तो मंगलाचरण करती है, जयति भगवान के लिए कहते हैं मंगलाचरण के लिए। इसके बाद अधिक शब्द संक्षेप में अर्थ दयोत तक कहे, यानी कि उसके बाद है, और फिर इसी का तात्पर्य कि भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के कारण ब्रजधाम अर्थात ब्रजधाम जो 84 कोट का है, बैकुंठ धाम के अधिक उत्कर्ष हो रहा है। जो ब्रजधाम है बैकुंठ, यानी कि जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं, वो धाम से ब्रजधाम ज़्यादा उत्कृष्ट, ज़्यादा अच्छा इसलिए हो रहा है कि कृष्ण वहाँ स्वयं आए और वो उस जगह पे रहे और उन्होंने ग्वाल बाले, ब्रज के माखन चुराना, गाय चराना, बंसरी बजाना, जंगल में गाय चराने के लिए चले जाना, और बहुत सारे दैत्यों का भी, कंस मामा जैसे, उन लोगों का संहार भी किया, उद्धार भी किया, तो इसलिए वहाँ सब सुख सुविधा और गोवर्धन पर्वत उठा लिया। तो वो धाम भगवान कृष्ण स्वयं रहे, आज भी लोग वहाँ पे जाते हैं, उस जगह पे परिक्रमा करते हैं और वहाँ के जो धूल है अपने माथे पे लगाते हैं, चरण धूलि बोलते हैं उसको, कि या इस कैसी ये जगह है जहाँ कृष्ण भगवान रहे। आज भी आते हैं, सुख कहते हैं कि निधि वन में, संजय जी आपको पता होगा वहाँ निधि वन में आप गए होंगे।
0: नहीं मैं नहीं गया, पर मेरा एक मित्र है।
2: हाँ।
0: मेरा एक मित्र है, वो हर साल जाता है, वो पूरा ब्रिज भूमि का एक मेरे ख्याल से गोवर्धन पहाड़ का और पूरा परिक्रमा लगा के आते हैं।
2: परिक्रमा लगाते हैं लोग।
0: वो कितने किलोमीटर का है राजेंद्र जी?
2: एक छोटी परिक्रमा है और एक बड़ी परिक्रमा है वहाँ।
0: क्योंकि वे मेरा मित्र कहते हैं वो लग जाता है, उन्हें बड़ा समय लग जाता है, क्योंकि कितना किलोमीटर के है वो?
2: 16 किलोमीटर के।
0: 16 किलोमीटर का
2: बड़ा वाला।
0: तो ये
2: छोटी केवल पर्वत की है, थोड़ा घूम के आती है।
0: हाँ, तो
2: कुछ लोग तो परिक्रमा जो दूध की धार के साथ करते हैं, रिक्शा में दूध रख देते हैं और उसके साथ साथ चलते हैं, कुछ लोग पैदल चलते हैं, प्रणाम होके परिक्रमा लगाते हैं, और अलग अलग प्रकार की परिक्रमा लगती है वहाँ पे। परिक्रमा हर महीने करने जाते हैं और कुछ साल भर में एक बार जाते हैं, लेकिन परिक्रमा जरूर करते हैं, उसी स्थान से भगवान कृष्ण भी जाया करते थे
0: इसी प्रकार।
2: तो इस प्रकार गोपियों का जो गीत है उसको ऊंचे से नीचे उतारना, लोक धाम में अथवा संस्कृत स्वरूप परमानंद सिदा सिंधु में विराजमान स्वप्रकाश पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु श्रीमद नारायण जीवानुग्रहण संसार में अवतरित होते हैं। जैसे लीला हेतु तो भगवान श्रीमन नारायण विष्णु का अवतार होता है, वैसे ही बैकुंठ धाम का भी अवतरण होता है। उपासना के अंतर्गत नाम रूप लीला एवं धाम चारों ही विशिष्ट महत्व रखते हैं। जैसे कोई राजाधिराज सहसाम चक्रवर्ती सम्राट, राजाधिराज सहसा चक्रवर्ती सम्राट मतलब समझिया
0: ना, बोले तो
2: राजा मतलब जैसे चक्रवर्ती सम्राट मतलब जैसे कोई एक बड़ा राजा है और उस देश में छोटे छोटे राजा है, अलग अलग राज्य है,
0: तनी सरनामी में बोल।
2: हाँ, जैसे सम्राट उसको बोलते हैं जो सब राजा उसको मानेगा, बड़का राजा,
0: राजा को
2: राजा का भी राजा,
0: जैसे कि वो बोले है राजाओं में
2: श्रेष्ठ। हाँ, तो जो राजाओं में श्रेष्ठ रहे उसको सम्राट बोले,
0: सम्राट।
2: वो जो अपने अपने राज्य में राजा करे उसको राजा बोलते हैं।
0: अच्छा,
2: तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कोई राजाधिराज सहसाम चक्रवर्ती सम्राट नरेंद्र बंदियों के कल्याण यदा कदा कारागार में भी अवतीर्ण होते हैं। कारागार में भी कोई सम्राट अवतरित हो जाते हैं।
0: कारागार बोलते हैं जेलखाना।
2: जेलखाना, भगवान कृष्ण का जन्म ही जेलखाना में हुआ।
0: कृष्ण जन्माष्टमी को
2: नहीं तो एक बार एक ने पूछा भगवान कृष्ण से, एक बार इसने कहा कि मेरी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, मेरा तो ये काम खराब हो गया, वो खराब हो गया, मेरे ऐसा कर दिया उसे। तो कृष्ण भगवान ने उसको बोला तो तेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा देख ना, मेरा तो जन्म ही जेल में हुआ है। उसके बाद मेरा मामा वो मेरे पीछे पड़ गया मारने के लिए। फिर बहुत सारे लोग वो मेरे को तो कोई जन्म से ही मेरे को सब मारने के पीछे पड़े थे और फिर भी मैं आज ठीक हूँ। तो तेरा दुख तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने बोला कि हाँ ये तो बात ठीक है। तो फिर उसने अपने सोचा कि हाँ मेरा दुख तो कम है। तो जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो कुछ ही ज़्यादा दुखी वाले के पास जाना चाहिए और वो देखो कि कितना सुखी है, तो दुख अपना आप कम हो जाते हैं। इससे ये सीख मिलती है।
0: सही बात।
2: क्यों ना एक सुंदर सा नगमाल
0: चला देते हैं।
2: चला देते हैं
0: शांता का पिटारा सा निकाला हुआ।

0: श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बढ़ते हैं आगे की ओर प्रोग्राम में। जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा। मानव शरीर ही वज्र है।
1: राजेंद्र जी,
0: ब्रिज
1: ब्रिज और वज्र में अंतर है ना?
0: हाँ, ब्रिज मतलब है जो भगवान कृष्ण की जन्म भूमि मथुरा हो गई, द्वारिका हो गई और गोकुल और वहाँ सारे पांच गांव जो है वो ब्रिज धाम है।
1: हाँ जी।
0: और वज्र है जो इंद्र के पास हथियार है, दधीचि ऋषि का बनाया हुआ,
1: दधीचि
0: ऋषि की हड्डियों का, और इंद्र के पास उसी वज्र से वो वार करते हैं और वो उनका हथियार है। तो वज्र वो है, वो बहुत मजबूत है। और जो ब्रिज है वो ब्रिज कृष्ण भगवान की जन्मभूमि ब्रिज बोलते हैं।
1: राजेंद्र जी, इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: जी जरूर।
1: ऐसा हुआ, एक बार मैं सूरीनाम देश में एक इवेंट में थे, अनूप जलोता का शो हो रहा था।

0: तो वो ये गीत कुछ था कि ब्रिज भूमि के, पर उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में गया था और किसी के घर पे ठहरे हुए थे, तो जो ब्रिज भूमि वाला गीत सुन सुनकर तो बच्चों को ये लगा कि फ्रिज, ब्रिज भूमि का फ्रिज समझ गया। ऐसा हुआ तो ये बात सुनकर के मुझे भी आज ख्याल आया कि हाँ, ये जो ब्रिज भूमि है, ब्रिज जो भूमि कहते हैं, फ्रिज कहते हैं, फ्रिज किसको कहते हैं?
1: फ्रिज तो जो
0: जिसमें
1: कूलकास,
0: हाँ कूलकास कहते हैं, और
1: ब्रिज
0: नहीं, जो तगड़ा शरीर क्या कहते हैं, वज्र, वज्र कहते हैं, यानी कि तगड़ा शरीर का ना
2: पहलवान
0: को ना, शांता जी,
2: तो
0: दारा सिंह। हाँ
2: जी।
0: तो राजेंद्र जी, आगे का कार्यक्रम में क्या सुनाने वाले आप?
1: हाँ, आगे का कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। यदि इस शरीर ब्रिज में प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जय जयकार होगी। ब्रज शब्द का अर्थ है वज्रति भगवत समीपम सा ब्रज ते जन्मना ब्रज अधिक जयति, यानी भगवान के समीप ले जाने में जो सहायक होता है वैसा यह शरीर भी वज्र ही है। मतलब
0: तो थोड़ा मुश्किल हो गया राजेंद्र जी, थोड़ा समझ के समझना है।
1: जैसे वज्र होता है
0: वापन, हाँ हाँ,
1: इंद्र के पास जो वज्र है वापन
0: जी,
1: वो बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकत है, ताकतवर है, जैसे मिसाइल है बहुत तकड़ी है और
0: हाँ
1: बंदूक हल्की है,
0: हाँ हाँ,
1: तो वैसे जो वज्र है तो वो ये शरीर भी कह रहे हैं कि वज्र के समान ही है। अगर भगवान समीप ले जाने में सहायक है, तो अगर भगवान के समीप मतलब भगवान के नज़दीक अगर ये शरीर चले गया तो ये भी वज्र के समान ही उतना मजबूती उतनी ताकत इसमें भी है। ऐसा हाँ, इस शरीर की शोभा वस्त्र भूषणों से नहीं बल्कि भगवत भक्ति से बढ़ती है। ये शरीर की जो शोभा है, लोग चाहे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, शीशा पे देखेंगे, फिर लिपस्टिक लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, उससे इस शरीर की शोभा नहीं बढ़ने वाली। वो तो अभी लगाए और थोड़ी देर में उतारा, खत्म होएगा वही। लेकिन अगर इस शरीर को भगवान के सामने ले जाए तो इसकी शोभा बढ़ जाएगी, सदैव के लिए बढ़ जाएगी। तो नाथ, आपके ही कारण मेरी ब्रज शरीर की शोभा बढ़ी है, और आपका प्रकट्य होने के पर ही हमारी शोभा बढ़ पाएगी। कहते हैं कि आपके कारण ही इस शरीर की शोभा भी बढ़ी है, और अगर आपका प्रकट्य मतलब आप अगर दिख जाए सामने तो इस शरीर की शोभा वैसे ही बढ़ जाएगी। शरीर सिंहासन जब काम क्रोध मद लोभ मत्सर से मुक्त होगा, ये शरीर का जो सिंहासन है, शरीर सिंहासन है, लेकिन ये जब काम से क्रोध से, काम यानी काम जाने ला
0: ना,
1: काम क्रोध,
0: क्रोध जाने ला,
1: काम न जाने, काम क्रोध लोभ, लोभ जाने लालच,
0: लालच
1: मोह जाने
0: माया,
1: मोह जैसे मेरा मोह है, आपका मोह बच्चों पे है,
0: हाँ हाँ,
1: पत्नी पे, ऐसे मोह होता है, और मत्सर,
0: मत्सर नहीं जाने।
1: ये काम क्रोध लोभ, काम का अर्थ है कि आप स्त्री पे ज्यादा आकर्षित रहे।
0: अच्छा,
1: हाँ
2: फरलांगंस,
1: हाँ फरलांगंस, तो उसको बोलते हैं। तो इस सब से मुक्त हो गए तभी परमात्मा दौड़ते हुए आएंगे। जब ये सब चीज से आप मुक्त हो जाए, इनकी तरफ ध्यान न दे, ऊपर उठ जाए, तभी परमात्मा आपकी तरफ दौड़ते आएंगे। तुकाराम और मेरा भाई की आज भी जय जयकार होती है, क्योंकि उन्होंने ये सब चीज छोड़ दिया था। तुकाराम को, मेरे भाई को जानते हैं आप?
0: मेरा भाई हाँ।
1: तुकाराम भी ऐसे संत हुए, बहुत बड़े संत हुए, उनको सब जानते हैं। उनके शरीर ब्रज में विकारों न पाऊं तक नहीं रखा था, उन्होंने अपने जो विकार, शरीर के जो विकार होते, दोष होते, उनमें कभी उन्होंने पाँव नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर और हृदय में ही ब्रज बना लिया था। वो कभी ब्रज में उन्होंने पाँव नहीं रखा, उन्होंने ब्रज में नहीं गए वो, लेकिन उन्होंने स्वयं अपना शरीर ही ब्रज बना लिया था।
3: क्योंकि आपने, अरे अभी हमने यहाँ पे पढ़े आगे में कि हमको भगवान के पास जाना है, और जबकि भगवान खुद हमारे में ही है। तो जैसे आपने यहाँ पढ़ा ना कि आप अपने अपने आप को बना ले ऐसे कि यही ब्रज धाम है, तो उतना दूर नहीं जाना पड़ेगा।
0: हाँ,
1: ब्रज धाम को यहीं बसा दिया जाए, अपने शरीर में ही ब्रज धाम बनाया जाए, तो उतने दूर जाने की जरूरत नहीं, जो जा सकते जाएं, लेकिन जो न जा सकते वो अपने शरीर को ही ब्रज धाम बना लें। तो क्यों ना एक सुंदर सा, जो कि उद्धव के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी और उनका एक जो बहुत सुंदर भजन है उसको चला दिया जाए।
0: ऐसा मेरा तो दिल कहता कि संजय तू भी कुछ बोल।
1: तो बोलो।
0: राजेंद्र जी, ऐसा हुआ कि एक गोपी के घर लल्ला माखन खा रहे हैं और उसी समय गोपी ने लल्ला को पकड़ लिया,
1: रंगया।
0: हाँ, तब कन्हैया बोले, तेरे धनी की सौगंध खाकर कहता हूं कि अब फिर कभी भी तेरे घर में नहीं आऊंगा। ऐसे बोले कन्हैया ने और गोपी के। और तो गोपी ने कहा, मेरे धनी की सौगंध क्यों खाता हूं कन्हैया? तो कन्हैया ने कहा कि अरे तेरे बाप की सौगंध पर गोपी और ज्यादा खींच जाती है और लल्ला को धमकाती है। धमकाती समझे?
1: हाँ, डांटती।
0: डांटती है, परंतु तू मेरे घर आया क्यों, गोपी कहते हैं। तो कन्हैया ने कहा, अरे सखी तू रोज कथा में जाती है फिर भी तू मेरे तेरे छोड़ती नहीं। इस घर में का मैं धनी हूं, धनी का मतलब ना कि इस घर का मैं धनी हूं, ये मेरा घर है, ऐसे कन्हैया जी कहते। तो गोपी को आनंद हुआ और मेरे घर का और कन्हैया अपना घर मानते हैं। कन्हैया तो सबका और मालिक है, सभी का घर उसी के है और उसको किसी की आज्ञा लेने के जरूरत भी नहीं ना। जो भगवान को अपने घर में बस बांध लो तब भगवान के सब है ना।
1: हाँ।
0: तो गोपी कहते, तुमने माखन क्यों खाया? बोले ऐसा क्यों? तो लल्ला ने कहा कि माखन किसने खाया है, इस माखन में तो चींटी चढ़ गया था, तो उस निकालने के हाथ डाला और इतने में ही तू टपक पड़ी, ऐसा। तो गोपी कहते हैं, परंतु लल्ला तेरे होठों के ऊपर भी तो माखन चिपका हुआ है। कन्हैया कहते, चींटी निकालते थे तभी होठों के ऊपर भी और मक्खी बैठ गई, उसको उड़ाने लगी तो माखन होठों पर लग गया होगा। कन्हैया जैसे बोलते हैं ऐसा बोलना किसी को आता नहीं, ऐसा है कि ना? कन्हैया जैसे चलते हैं वैसे चलना किसी को आता भी नहीं, क्योंकि उसका चलाई भी कुछ खास है ना। तो गोपी ने पूछा लल्ला को घर में खंभे के साथ डोरी से बांध दिया।
3: अच्छा, हाँ।
0: डोरी से, रस्सी से बांध दिया उसे। गोपी ने जब उसे डोरी से बांध दिया तो आगे के वृतांत अभी बाद में सुनाया जाएगा, पहले गीत की ओर क्यों ना चलते हैं।
1: जरूर।

0: ये तो प्रेम की बात है उधो, वंदगी तेरे बस में नहीं है। ये उधो के लिए संदेश है गोपियों का कि ये तो प्रेम की बात है, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है, तुम तो ज्ञान की बात जानते हो। तुम हमारा समय होता है न्यूज़ की ओर, और बढ़ते हैं आगे, फिर आगे कार्यक्रम करेंगे।
1: अधिकारियों का तौर आनंद राम सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
5: Digitale radio, Fahonfm.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollowerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terecht kwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
8: हाँ सुनने वालों, हम आपको यहाँ से एक बार फिर स्वागत करती हूँ ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में। ये तो इधर खदेल तफान फानत उस प्रोग्राम, और साथ ही साथ जरूर मैं कहूँगी राधा के सच्चा प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम। हमको याद आ गए क्योंकि संजय जी अभी प्रेम के बात कहते थे, तो यहाँ से मैं ख्याल करती हूँ कि संजय जी आप उसको जरूर से जारी करना।
9: जरूर से जारी करना राजेंद्र जी, जरूर से जरूर
8: जारी करोगे?
9: जरूर कोशिश करेंगे शांता जी, क्योंकि गोपी ने तो पीछे लल्ला को घर में और खंभे से साथ डोरी से बांध दिया था। कन्हैया का जो शरीर है बहुत कोमल है, और गोपी ने जब डोरी से कसकर बांधी तो लल्ला के आंखी में पानी आ गया। राजेंद्र जी पानी आ गया। गोपी को दया आया, उसने लल्ला से पूछा कि लल्ला तुझे कोई तकलीफ है क्या? ऐसे उसने पूछा, तब लल्ला ने गर्दन हिलाकर कहा कि मुझे बहुत दुख रहा है, डोरी जड़ा से और ढीली करो। डोरी कहते हैं रस्सी के ना
8: जी।
9: गोपी ने विचार किया कि लल्ला को डोरी से कस कर और बांधना ठीक नहीं है, मेरे लल्ला को दुख होगा, इसीलिए गोपी ने डोरी थोड़ी से ढीली रखी और सखियों को खबर देने गई कि मैंने किसको बांधा है, लल्ला को बांध दिया है, तुम और लल्ला बांधो, परंतु किसी से कहो नहीं ना। बोले लल्ला के बहानों पर किसी से कहो नहीं, तुम खूब और भक्ति करो परंतु उसे प्रकाशित मत करो। हाँ, भक्ति करो पर प्रकाशित मत करो।
8: अच्छा।
9: हाँ, डंका ना बजावे लगे ना कि हमने ये किया हमने वो किया है, और भक्ति का प्रकाशित हो जाएगा तो भगवान चले जाएगा शांता जी। इसी कारण हमारे संतों मुनियों ने कहा कि भक्ति का प्रकाश होने से भक्ति अब बढ़ती नहीं है, भक्ति में आनंद आता ही नहीं। ऐसा क्यों
8: हा?
9: तो ऐसा कहावत है कि बाल कृष्ण और सूक्ष्म शरीर डोरी जो था ना, डोरी जो रस्सी थे, और बाहर निकल गए और गोपी को अंगूठा दिखाकर कहा तुझे बांधना ही
8: नहीं आता है।
9: अब गोपी कहते हैं कि तू मुझे बता किस तरह से बांधना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना गोपी। तो गोपी को लल्ला के साथ खेलना था, इसी कारण उन्होंने लल्ला को बांधे थे। लल्ला गोपी को बांध और दिखाया कि कैसे बांधना चाहिए। योगी जन मन से श्री कृष्ण का अवस्पर्श करते हैं तो समाधि लग जाते हैं। योगी जन ना
8: जी,
9: जो वो लोग बैठ जाते हैं तो, और चाहे जितना ठंडा रहे चाहे जितना गर्मी रहे, पर वहाँ उसी रूप में उलोवन बैठते रहते हैं। यह तो गोपी का अप्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ है, यानी कि गोपी के जो प्रेम है श्री कृष्ण भगवान में ना
8: जी,
9: और गोपी लल्ला के दर्शन में तलीन हो जाते हैं, यानी कि उन्हें देखने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए वो लवलीन जो हम कहते हैं ना उसमें रहते हैं, गोपी के ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार से लल्ला ने गोपी को बांध दिया ना राजेंद्र जी।
0: जी,
9: लल्ला ने गोपी को जब बांधा तो गोपी कहते हैं कि लल्ला छोड़ा दो छोड़ा वो, तो लल्ला ने कहा कि मुझे बांधना आता है लेकिन छोड़ाना तो आता ही नहीं।
8: वो तो सही है।
9: बात ये हो जाता है कि ये जीव जो मानव हम है एक ऐसा प्राणी है जिसको छोड़ना आता है, हम मनुष्य के ना, हम बांधने नहीं आते, हमें छोड़ना आता है, चाहे जितना संबंध क्यों ना हो, परंतु स्वार्थ सिद्ध होने पर यानी कि छोटा छोटा बात के लिए उसको एक ही क्षण में हम छोड़ सकता है। ये है हम सबका जो मनुष्य का और स्वभाव, पर परमात्मा एक बार बांधते हैं, एक बार बांधने के बाद छोड़ता कभी नहीं है। तो ये एक वृतांत जो कि श्री कृष्ण भगवान बाल योनि में हम सबको सिखाए हैं और हम सबको किस प्रकार से अपने आप को, क्योंकि हम लोगों राजेंद्र जी हम लोग चाहते हैं भी अपने आप का शादी कराने का ना, तो पंडित को बुलाते हैं, पंडित से कहते हैं पंडित जी भानो भानो भानो जल्दी, शादी बड़ा धूमधाम से होता है यहाँ, और धूमधाम से होता है और एक दूसरे को पंडित द्वारा साकोचार मंत्र द्वारा बढ़वाते हैं, पर इसमें ये बात हो जाता है कि हम अपना सारी शादी विवाह का कार्यक्रम खूब तैयारी करते हैं, पर सबसे मूल्य उसमें होता है कि हम तीन पीढ़ी का नाम लेते हैं उसमें। आजा का नाम नहीं, शुरू होता पिता का नाम से ना
8: जी।
9: पिता का नाम, आजा का नाम और वृद्ध पिता यानी पर आजा का नाम। तो हम सब ये जो कार्य साकुचार मंत्र द्वारा जो वहाँ पर पढ़ा जाता है, तो कार्यक्रम विवाह संस्कार के बड़े बड़े साल हम ले लेते हैं, बड़े बड़े प्रकार से और सब सुविधा सब चीज किया जाता है। पर इसमें मूल्य ये है, कहने के तात्पर्य यह है कि वहाँ हम अपने विवाह संस्कार करवा रहे हैं, पिता के नाम जानते हैं, वहाँ तलक जानते हैं, पिता वहाँ बैठते हुए माढ़ों में तो पूछते भैया से कि भैया बप्पा के नमो कैसे रहा, ऐसा होता है।
8: अच्छा।
9: और बप्पा के जो नाम नहीं जानते तो पंडित समझ जाता कि वो पर आजा का नाम कैसे जानेंगे।
8: वही तो।
9: और जबकि तीन पीढ़ी का कम से कम नाम जानना चाहिए। अब देखिए राजेंद्र जी, एक कार्यक्रम जो बनाया है, बनाया गया नई दलान से टेलीविजन पे चलाया गया है, और वो अपना परिवार को गए खोजने को भारत, और भारत में अभी दो कार्यक्रम भी और चलाना है। तो उन्होंने अपना परिवार को खोजने के लिए भारत गए, हमें तो वहां तलक जाना नहीं, हमें तो ये जान लेना चाहिए कि जो बीच आज से 150 साल पहले जो छोड़ करके सूरीनाम गए थे उनका वृतांत, उनके बारे में सब लिखा हुआ है हमारे इमिग्रेसी और आर्कीव में। तो हम कम से कम खोज तो ले कि हम किसके बीच है। तो दोस्तों ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, और हम सब अब छलांग लगाने वाले हैं कि आज का विषय जो है, पर उस विषय के ओर बढ़ने से पहले चरण अमृत। शांता जी ने हाथ उठा दिया राजेंद्र जी, तो हमें तो उस ओर बढ़ नहीं सकते हैं अभी। तो शांता जी पहले आप सुनाएं, फिर राजेंद्र जी, फिर हम सब एक गीत की ओर बढ़ेंगे।
8: जी जी, अभी आपने कथा कहे और कथा कहे
9: वृतांत।
8: हाँ, अभी गोपिया और कान्हा के बारे में,
9: कन्हैया जी का।
8: हाँ, तो उसमें से मैं ये निकाली हूँ कि हम बच्चे इधर बच्चे और बाप के इसका प्रसंग हम लाए ना, कि जब हम बाप के हाथ पकड़े, जैसे सड़क पार करना है, सड़क को बहुत भीड़ जो है, तो अगर हम बाप के हाथ पकड़े तो ऐसा हो सकता है कि हम बाप के हाथ छोड़ दे, और अगर बाप हमारे हाथ पकड़े, बच्चे का हाथ पकड़े, तो वो नहीं छूटेगा कि तू सड़क में तुम्हें चोट खाई मिल जाएगा या आ रहे देंगे या कुछ भी। ऐसे ही हम सोचते हैं कि हम भगवान को पकड़ ले तो वही होगा, भगवान खुल कर चल जाएगा,
9: भगवान चल जाएगा।
8: भगवान या हमको खुद पकड़ ले तो हम छोड़ाने से भी नहीं छूटेंगे।
9: बस यही बात समझने के बहुत सरलता में आपने समझा दिया है। शांता जी तो काफी सयानी हो गए राजेंद्र जी।
8: उसका महत्व हमने ये निकाली,
9: बहुत सुंदर, बहुत हेल मकलक मनीर है पिता तो शांता जी। तो हम क्यों ना एक गीत के ओर, शांता का पिटारा के ओर पढ़ते, नगमा चला देते राजेंद्र जी।
0: जरूर,
8: एक प्यार का नगमा।

0: गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तो क्यों ना गोविंद और गोपाल बोला जाए। बढ़ते आगे की तरफ, आज का जो विषय है उसकी तरफ।
1: चला दो, छलांग लगा दो।
0: अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमारे भगवान का चरणामृत देते हैं। पंडित जी हमें क्या देते हैं? भगवान का चरणामृत देते हैं
1: जी।
0: और क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत का महत्व क्या है? तो शास्त्रों में कहा गया है,

0: विद्यते, अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप दयाधियों को व्याधियों को यानी दुखों को समन करने वाला है, पापों को भी और दुखों को भी समन करने वाला है। जब पाप और दुख का समन हो जाता है तब औषधि के समान वो चरणामृत हो जाता है। जो चरणामृत पीता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। जल जब तक जल ही रहता है, जब तक जल तब तक रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों में लगा तो अमृत रूप हो गया और चरणामृत बन जाता है। तो चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा काफ़ी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेस असर साबित हो रही थी। तब श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गई।
1: उपाय क्या था राजेंद्र जी?
0: आप ये समझ गए जो हमने बताया?
1: मैंने ये समझ गया कि वो बीमार था।
0: कौन बीमार था?
1: नंदलाल।
0: नंदलाल काफी बीमार पड़ गए थे।
1: बीमार हो गए।
0: हाँ, तो उन्होंने कोई दवा जड़ी बूटी उनमें कोई काम नहीं कर रही थी। तब श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों को बोला कि एक ऐसा उपाय करो। तो गोपी उस उपाय के बारे में सुनने बहुत दुविधा में पड़ गई। तो बोली, कृष्ण बोली, दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसकी पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुई जल को वे ग्रहण कर ले तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ और भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी।
1: तो ये उपाय होने की चिंता सता रही थी कि कैसे चरण अमृत, जैसे चरणों को धो करके देवे ना?
0: नहीं, वो कह रहे थे, भगवान कृष्ण ने बोला कि चरणामृत से ठीक हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि गोपी बोले कि शायद ये तो बड़ा हल्का सा हमको लग रहा है, शायद ना हो ठीक। दुविधा में पड़ रही थी। तो उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल के चरणामृत बना लिया और कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कहना ठीक न हुई तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। वो कह रहे थे कि मानो कि किसी एक गोपी ने अपने चरण धो लिए और वो पानी कृष्ण जी को पिला दिया। चरणामृत उसी को बोलते हैं ना, कि चरणों का जल,
1: चरणों का जल,
0: चरणों का जल। और अगर ठीक नहीं हुए उस जल से तो नरक जाना पड़ेगा, नरक भोगना पड़ेगा।
1: ऐसे ये गोपी लोग सोचते हैं।
0: ऐसे गोपी लोग सोचते हैं। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी, मतलब देख रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच रही थी कि कोई और उपाय हो जाए कि वहाँ कृष्ण की प्रिया राधा आ गई। जो कृष्ण की सबसे प्रिया है वो राधा जी वहाँ।
1: हाँ, वो
0: अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा तो जैसे प्राण ही निकल गई। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित न समझा और जल्दी ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। तो जैसे उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसी बात है, वो कैसे कह रहे हैं, तो उसने वही सोचा बेचारा नहीं, तुरंत ऐसे करके और चरणामृत तैयार करके और कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ गए। राधा जी जानती थी कि वे क्या कर रही हैं, तो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी।
1: पर राधा जी का ये भय नहीं हुआ कि ऐसे कैसे कर सकता हूँ भगवान के चरण?
0: नहीं, राधा जी तो भगवान की सबसे प्रेमिकाओं में से एक थी,
1: पटरानी।
0: हाँ, पटरानी। तो उनको जो उन्होंने बोला वो सब मान लेती थी। ठीक वही भाई राधा को भी मन में था, थोड़ा सा था, लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वे नरक में जाने को भी तैयार थी।
1: नरक में जाने के लिए भी तैयार हो गई,
0: लेकिन कृष्ण स्वस्थ होने चाहिए। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वह ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देख कर वही देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं की भविष्य की चिंता न की और वही किया जो उन्होंने धर्म, वही उनका जो धर्म था।
1: तो क्यों ना एक सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ जाते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि शांता का पिटारा फुल है।
0: हाँ।
1: और उसमें से अभी तो हम सब कितने चलाए, 2-3 चला पाए हैं।
0: बहुत

0: तू प्यार का सागर है, तेरी भी एक बूंद की प्यासे है। प्यार का सागर है यानी जैसे समुद्र में पानी जितना है उसको सागर बोलते हैं, और एक बूंद अगर उस पानी में से मिल जाए तो उसी का प्यासे हैं कोई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं प्यार के सागर वालों, प्यार एक बूंद के प्यासे वालों?
1: एक बूंद के प्यासे राजेंद्र जी मैं क्या कहूँ क्या कहूँ, क्योंकि हौसला को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो ये हुआ ना बात कि हम जो आज बात हो रहा है कि चरण अमृत के, चरण अमृत का महत्व क्या है, और उसके बारे में आपने काफ़ी जानकारी दे ही चुके हैं, पर अभी तो और भी बाकी है, कार्यक्रम अभी बाकी है राजेंद्र जी, तो आगे बढ़िए।
0: इतिहास गवाह है इस बात का।
1: इतिहास यानी कि शांता जी,
2: खस के दिनेश,
1: खस पूरा कोष तो यहाँ।
0: राधा कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन उनका प्यार इतना पवित्र एवं सच्चा था कि आज भी दोनों का नाम एक साथ लेने में भक्त एक क्षण भी संदेह महसूस नहीं करते।
2: हाँ, इसलिए कहते हैं राधा के सच्चे प्रेम का ये इनाम है, कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधा का नाम।
1: कान्हा से पहले लोग लेते हैं राधा
0: का नाम बोलते हैं ना
1: राजेंद्र जी। ऐसा एक बार ऐसा हुआ, मैं भारत में था, भारत में था, तो वो पहाड़गंज होता ना एक दिल्ली में,
0: पहाड़गंज होता नहीं, पहाड़गंज है अभी भी,
1: गलत हो ही जाता हमसे कुछ कह देते हूँ, तो रामनगर होता है वहाँ है अभी
0: है।
1: तो रामनगर में जहाँ खाली ढेर सारी भगवान की मूर्ति बनाया जाता है, तो मेरा भी इच्छा था कि चलो मैं अपने घर से घर के लिए और एक कृष्ण जी का और मूर्ति लेकर आए भगवान का, तो बहुत इच्छा था। तो वहाँ जा कर के लिए, तो वो जो कलाकार और कारागार में बड़का अंतर है।
0: हाँ, कलाकार तो जेल है और
1: कलाकार है जो हाँ आर्टिस्ट जो बनाते हैं मूर्ति। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप कृष्ण जी के ले रहे हो पर राधा क्यों क्यों नहीं लेता। तो मेरा तो बस यही दिल था कि भाई कृष्ण जी के ले लेते हैं, तो ठीक बस वही लिया और उन्होंने बेच दिया। तो मैं गया अपना सब सूट के सब तैयार कर रहे थे, तो मन में ये आया कि जैसे कि कृष्ण भगवान ने कहा कि कृष्ण जा रहा है आधा रात में, मैंने ये निर्णय ले लिया कि चलो कल फिन वहाँ रामनगर जाना पड़ेगा।
0: और रामनगर वहीं बगल में पहाड़गंज के, वहाँ मूर्ति मिलती,
1: बड़ी ढेर सारी मूर्ति बनती है। तो फिर दोबारा वही दुकान से गया, तो उन्होंने गया तो दुकान के पास गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कल कह रहा था पर आपने मेरा नहीं माने, तो फिर भी आज आ गए, यानी कि राधा बिना कृष्ण है आधा। तो उन्होंने हमें वो फिर राधा माता का और मूर्ति दिए, तो हम लेकर आए। पर आगे का वृतांत क्या है राजेंद्र जी?
0: जी आगे का वृतांत बताइए।
1: ओ मैंने तो सोचा कि आप बताने वाले हैं,
0: आगे का वृतांत हम बताएंगे,
1: चलो आप ही सुना दो।
0: दोनों का नाम एक साथ लेने में भक्त एक क्षण भी संदेह महसूस नहीं करते। राधा कृष्ण का उनके भक्तों के लिए कृष्ण केवल राधा के हैं तथा राधा भी कृष्ण के ही हैं, इसलिए राधा कृष्ण की इन कहानी ने चरणामृत को एक ऐतिहासिक पहलू तो दिया ही, लेकिन आज भी चरणामृत को प्रभु का प्रसाद मानकर भक्तों में बांटा जाता है। पीतल के बर्तन में पीतल के ही चम्मच से थोड़ा मीठा सा या अमृत भक्तों के कंठ को पवित्र बनाता है।
1: पीतल बोले तो
0: कॉपर, पीतल, पीतल कॉपर नहीं, पीतल
1: कॉपर,
0: कॉपर तामा।
1: हाँ,
0: पीतल दूसरा रहे ना जैसे वो थाली रहे।
1: हाँ,
0: उसको पीतल बोले,
1: पीतल बोले। हाँ, कोपर,
0: कोपर नहीं, कोपर दूसरा, पीतल दूसरा।
1: अच्छा,
0: सोना सब एक धातु है, पीतल
1: धातु है।
0: हाँ, अष्ट धातु में से एक धातु है। तो जब भगवान का वामन अवतार हुआ तो इस प्रकार अमृत का जो चरणामृत का विषय था, इस प्रकार से था चरणामृत के बारे में, तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े। जबन नोटियाल कृष्ण गोविंद।

0: बढ़ते हैं विषय की ओर आगे। जब भगवान का वामन अवतार हुआ और वह राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने गए, तो जब वो दान लेने गए तब उन्होंने तीन पग में तीन लोक नाप लिए। जब उन्होंने पहले पग के नीचे के लोक नाप लिए और दूसरे में ऊपर के लोक नापने लगे, तो जैसे ही ब्रह्म लोक में उनका चरण गया
1: जी।
0: तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल लेकर भगवान के चरण धोए।
1: हाँ।
0: और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया।
1: अच्छा,
0: वह चरणामृत गंगा जी से बन गई, वही चरणामृत गंगा जी बन गई थी जो आज भी सारी दुनिया के पापों को धोती है। ये शक्ति उनके पास कहाँ से पात्र शक्ति है, भगवान के चरणों की, जिस पर ब्रह्मा जी ने साधारण जल चढ़ाया था पर चरणों का स्पर्श होते ही बन गई गंगा जी।
2: तो राजेंद्र जी, ये तो गंगा जल पे आ गया हम लोग, पर
0: नहीं गंगा जल पे नहीं,
2: नहीं चरण अमृत,
0: चरणामृत उसी जब भगवान वामन अवतार लिया था छोटे से हुए और उन्होंने बोला कि राजा बलि को कि मुझे तीन पग जमीन दे दो, बस ज्यादा नहीं,
2: तीन पग
0: तीनों लोक नाप लिए, तो जैसे सब पैर गया ब्रह्म लोक को।
2: हाँ जी,
0: तो ब्रह्म लोक को जैसे पैर गया तब ब्रह्मा ने उनका चरण धो दिया पानी से और अपने कमंडल में रख दिया, उसी कमंडल से गंगा जी का अवतरण हुआ, वही कमंडल से, वही गंगा जी से,
2: ऐसा
0: जो कि आज गौमुख से और जाके गंगा सागर तक बहती और करोड़ों लोगों का पाप धोते हुए और जल से उनको करती है, वही गंगा जल है। तो इसका मतलब भी यहाँ पे यही है कि चरणामृत की शक्ति
1: महत्वपूर्ण
2: सही बात शांता जी।
0: और जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाती हैं तो कहते हैं चरणों से निकली गंगा प्यारी,
2: चरणों से निकली गंगा प्यारी,
0: जिसने सारी दुनिया तारी,
2: जिसने सारी दुनिया तारी, सही बात है राजेंद्र जी।
0: तो उसने चरणों से निकली है गंगा प्यारी, धर्म में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है तथा मस्तक से लगाने के बाद इसका सेवन किया जाता है, चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है।
2: तो चरण अमृत जैसे कि आप कह रहे हैं पहले मस्तक पे लगाना है कि पहले सेवन करें तब मस्तक पे?
0: हाँ, पहले मस्तक पे फिर सेवन करने,
2: ऐसा।
0: हाँ, मस्तक पे लगाने के बाद सेवन करना है।
2: अच्छा,
0: कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट ने केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया बल्कि अपने पूर्वजों को भी उतार दिया। आपने सुना होगा रामायण में कथा कि जब वो नदी पार कर रहे थे केवट ने बोला कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल आपका चरणामृत चरण धोने दीजिए, बस। उन्होंने चरण धोए और वही और अपने परिवार को बुला लिया और सबको चरणामृत पिला दिया और पूरा खानदान ही पार कर दिया। चरणामृत का महत्व तो सिर्फ धार्मिक ही नहीं चिकित्सक भी है।
1: चिकित्सक
0: यानी मेडिकल,
2: मेडिकल
0: मेडिकेटेड पानी,
2: ऐसा
0: मेडिसन के रूप में भी।
2: हाँ,
0: चिकित्सकीय भी है। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है, चरणामृत का जल।
2: हाँ, पर तांबे और पीतल में अंतर है ना?
0: हाँ, पीतल और तांबे में अंतर है। पीतल दूसरा उजड़ जैसे सोना जैसे हुए और

0: नहीं लग रहा है तांबा पर, तांबा नहीं, कुछ दिन बाद वो काला हो जाता है।
1: हाँ हो सकता है, तांबा तो काला पड़ता ही है, लेकिन हो सकता है कि तांबे की केवल उसमें पॉलिश हो और तांबा
0: बस पॉलिश हो, क्योंकि तांबा में ये महत्वपूर्ण बात हो जाता है कि तांबा को चुम्बक मखनीज जो कहते हैं ना वो नहीं पकड़ते,
1: नहीं पकड़ता।
0: और तांबा असली तांबा वही है जो जिसे चुंबक से वो हरिद्वार में आप पूछ सकते हैं कि हमें दिखाओ कि ये असली है या नहीं, तो सबके पास होते हैं चुंबक।
1: हाँ तो तांबा का शाम को जल रख के सुबह वो जल पीना चाहिए तो आपका शरीर शुद्धि, मन शुद्धि, और अगर आपका कोई घुटनों में दर्द भी है तो भी ठीक होने लगता है और पेट संबंधी रोग तो दूर होते ही होते हैं,
0: ऐसा होता।
1: हाँ तो तांबा बहुत काम की चीज है। तो आयुर्वेद के मतानुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को कष्ट नष्ट करने की शक्ति होती है। आयुर्वेद कहता है कि अनेक रोग दूर हो जाते हैं तांबे के पानी पीने से, जो उसमें रखे जल में आ जाती है उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है तथा रोग नहीं होते।
0: रोग कहते बीमारी,
1: रोग कहते बीमारी को। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा भी है, अगर तांबे के जल में थोड़ा तुलसी का पत्ता डाल दिया तो और अच्छा, जिससे इस जल की रोगनाशक क्षमता और भी बढ़ जाती है। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। तुलसी के पत्ते पर जल इतने परिमाण में होना चाहिए कि सरसों का दाना उसमें डूब जाए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा बुद्धि स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। तो तांबे के पांच जल लोटे में थोड़ा एक पत्ते तुलसी भी डाल दिया जाए, और तुलसी का पत्ते इतना मात्रा में होना चाहिए कि उसमें केवल वो सरसों का दाना डूब जाए और उसको जल को पीना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बुद्धि बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थियों को ज़्यादा देना चाहिए क्योंकि वो पढ़ते लिखते हैं और सबको ही जरूरत है बुद्धि मेधा शक्ति की, इसलिए जरूर करना चाहिए।
0: तो राजेंद्र जी ऐसा हुआ कि ये कभी हम लोग अपना व्यक्तिगत बातें भी इसमें रख देते हैं, तो भारत में हर मंदिर में जाओ तो वहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ मंदिर में हम लोग पाते हैं चरण अमृत, नहीं पंचामृत, तो भारत में हमारे जो स्थान से हम सब वहाँ रहते हैं तो मंदिर में जाओ तो हर समय वहाँ पर चरण अमृत होते हैं, तो उसे देते हैं पंडित, तो उसमें मीठा सा भी होता है कुछ, तो उसमें कुछ और डालते हैं।
1: हाँ,
0: जल होता है पानी की तरह, पानी है चरण अमृत है, पर उसमें चीनी भी डालते हैं या कुछ और?
1: अलग अलग अलग सबको, सब लोगों का, कुछ लोग तो केवल जल ही देते हैं और कुछ लोग उसमें चीनी और दूध और मिश्री डाल के देते हैं। तो अलग अलग प्रकार, अलग अलग मंदिरों की अलग अलग परंपरा है, वो उनकी जो बना रखी है, लेकिन तुलसी और गंगा जल जरूर डालते हैं,
0: उसमें मिलाया जाता
1: जी।
0: है तो दोस्तों हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि सुख को ताला किसने लगाए है। शांता जी आप भी कुछ कहने वाले थे,
2: सुख के ताला किसने लगाए?
0: मुझे नहीं पता मीनू साबी। राजेंद्र जी सुख का ताला किसने लगा दिया?
1: हमने तो लगाया नहीं,
2: हम तो लगाए नहीं,
0: हमने भी नहीं लगाए। तो ये भी हो जाता कि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है, जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार एवं हमारे कर्म ही है हमारा अभाग्य लिखते है। तो राजेंद्र जी क्यों ना हम सब एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते, फिर उसके बाद में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: जरूर।

0: राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, बहुत ही सुंदर जो भजन था।
1: मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरे ब्याह। इसमें मैया कहते कि तेरा उम्र छोटी है, नज़र खोटी है, फिर भी कन्हैया से के ये बात समझ में नहीं आते हैं और कहते हैं माँ जो ब्याह नहीं कराएंगे तो तेरे पास नहीं आऊँगा। पर ये बात तो है राजेंद्र जी, चरण अमृत, इसके बारे में वृतांत हम लोग का आज पूरा करना है और समय
0: क्यों ना आगे बढ़ा जाए,
1: समय का कमताई और काम का दबाव।
0: हाँ, इसलिए यह मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है, यदि उसमें तुलसी पत्र भी मिला दिया जाए तो उसके औषधीय गुणों में और भी वृद्धि हो जाती है। कहते हैं सीधे हाथ में तुलसी चरणामृत ग्रहण करने से हर शुभ या अशुभ काम का जल्द प्रमाण मिलता है, इसलिए चरणामृत हमें सीधे हाथ से लेना चाहिए। लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत होती है कि वे अपना हाथ सिर पर फेरते हैं। चरणामृत लेने के बाद सिर पर हाथ रखना सही है या नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये हमें पता नहीं थे।
0: हाँ,
1: हम ज़्यादा तादाद में देखते हैं लोग करते हैं।
0: हाँ, कहते हैं कि इससे विचारों में सकारात्मकता नहीं बल्कि नकारात्मकता बढ़ती है, इसलिए चरणामृत लेकर कभी भी सिर पर हाथ नहीं फेरना चाहिए। तो इसलिए जो लोगों को ये जानकारी रेडियो के माध्यम से मिली वो दूसरे लोगों को बता सकते हैं। और यहाँ तो बहुत सारे लोग 40 मंदिर हैं और उनके जो मानने वाले वो एक दूसरे को बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।
2: हाँ, ऐसा है।
0: तो आज बहुत दिनों के बाद हमें जो समय मिला है, नाम हमारा प्यारा देश उसकी ओर बढ़ेंगे, उससे पहले शांता जी कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए।
2: हाँ जी राजेंद्र जी, जैसे हमने आपको समझा तो जो चरणामृत हाथ में मिले ना, रेखतर हाथ में, दाइन हाथ में, तो उसका लेकर माथे पे ऐसे लगा कर ग्रहण कर लेना। और जब ग्रहण करने के बाद हम देखे वाक्य में लोग अपने सिर पर पोंछ लेते हैं ना, ऐसे लगा लेते हैं।
1: सही बात, सही
2: पर बात। वो नहीं करना चाहिए,
1: वो नहीं करना चाहिए।
2: ग्रहण चरणामृत ग्रहण करने के बाद सिर पर नहीं पोंछना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ताकि जो पोंछने हैं जो लोग पोंछते हैं तो उसको नकारात्मक उस पे वास
0: नकारात्मक। हाँ, दो प्रकार की
1: कहने के तो ये है दोस्तों कि ईश्वर दुनिया का सबसे बड़े डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया का सबसे बड़ी दवा है। क्यों ना हम वो गीत की ओर बढ़ते राजेंद्र जी, जो हम अपने सूरीनाम वासी, हमारे सभी सूरीनाम के लिए जो इस समय सूरीनाम से भी कार्यक्रम को सुनते हैं और दुनिया के हर एक कोना में जो कार्यक्रम को सुना जा सकता है, तो सूरीनाम हमारा प्यारा देश, फिर उसके बाद में हम सब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेंगे।
0: जरूर।

सूर्य नाम हमारा प्यारा देश तुझ पे मरने को इनकार नहीं। सूर्य नाम का एक बड़ा हमें जो गाना अच्छा लगता है वो, क्योंकि मैंने चाहा कि बहुत दिनों से लोगों ने सूर्य नाम हमारा प्यारा देश दो शब्द ना सुने होंगे तो इसलिए हमने चला दिया। अब हमारा समय आगे की तरफ बढ़ता हुआ अपने पूर्ण विराम लेते हुए लागी छूटे ना सनम अब तो, जो कि हमारा लास्ट गाना रहता है और उसमें हम भी अपना रखते हैं, क्यों ना उस गाने की ओर बढ़ा जाए।

और जाते जाते ज़रूर कहूँगी कि मन तुलसी का दास है, मन तुलसी का दास है, वृंदावन है धाम, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में शाम। तो सुनने वालों, आपको जो यहाँ से प्रोग्राम जो पेश किया, ये आशा उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और हमारे प्रेम भरी प्यार भरी राम राम प्रणाम स्वीकार करें।

दूर हूँ फिर भी लेकिन रेडियो के माध्यम से नजदीक ही आ जाता हूँ। तो एक छोटा सा जो रेडियो फाहुन के श्रोता है, एक बार एक मायके से पत्नी ने फोन पर बोला कि अपनी वाइफ को, वाइफ बोलती है कि आपके बिना जी नहीं लगता। तो हस्बैंड कहते हैं कि अरे पगली, जी नहीं लगता तो स्टार और सोनी लगाकर देख लिया कर, वो भी अच्छे चैनल है। तो इसी प्रकार से हम कह रहे हैं कि आज के जो श्रोता हैं उनका भी अगर प्रोग्राम में जी नहीं लगता तो क्यों ना वो हर बार की भांति हर प्रोग्राम देखा करे तो जी लग जाया करेगा, सुना करें। तो उसी ओर बढ़ते हुए सब लोगों को, जो लोग हमारे श्रोता हैं उनको बहुत बहुत प्रेम भरा नमस्कार, और फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय श्री राम।

छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने की वक्त हो जाते हैं। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम यहाँ अपना समाप्ति पे आकर के पहुँच गए और आशा यही है कि कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए ज़रूर पहुँचे होंगे। और शांता जी जो हमारे कार्यक्रम में सहयोग दिए, भाई राजेंद्र जी जो पैनल के पे अच्छे और से हम सबको अपना सहयोग दिए, मैं हूँ सेवक संजय, सभी को एक शुभ रात्रि नमस्कार कहते हुए फिर अगले कार्यक्रम तक।

0: रुकोगे।
1: यहाँ से आप सुनेंगे सितारों का सफर। आज का प्रोग्राम है सितारों का सफर, में मैं गसल का गायक या गसल का फंकार पंकज उदास के बारे में कुछ बातचीत करूंगा। पंकज उदास पैदा हुआ सीफिंग में, इन फेज तक राजखत में, परिवार बॉम्बे से परिवार बॉम्बे चला आया और म्यूजिक अकादमी में तबला बजाने को सीखा पंकज ने। पंकज को बचपन से गाने का बहुत से शौक था। मास्टर नवरंग से ये संगीत सीखा। उषा खन्ना ने पंकज को फिल्म कामना में गाना गाने का एक मौका दिया, लेकिन ये फिल्म कामयाब नहीं हुआ तो पंकज ने फैसला किया कि वो फिल्मों में बहुत कम काम करेगा और पंकज शुरुआत किया गजल गाने में और उर्दू भी सीखा। बड़ा भाई ने कहा पंकज से कि अगर गजल में कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो तो मेहंदी साहेब और बेगम अख्तर को सुनो। पंकज साहेब ने बहुत से पंकज जी ने बहुत से गजल पेश किया है, दोस्तों बहुत से गजल गाया है और सभी गजल में से एक गजल जो मुझे बहुत पसंद है, तेरी निगाहों से, पंकज उदास की आवाज़ में।

गजल का फनकार पंकज उदास कनाडा को चली गई और वहाँ जाकर उन्हें महसूस हुई कि यहाँ के लोग को हिंदुस्तानी म्यूजिक कितना पसंद है। फिर पंकज ने मन बना लिया कि ये अपना देश में अपना नाम करेंगे और काफ़ी टाइम गजल सीखने के बाद ये वेंसन में काफ़ी गजल की कॉन्टेस्ट किए नीखंतिंग तख्तक और नीखंतिंग तख्तक में अपने पहला गजल के आलबम तैयार की जिसका नाम था आहट। फिर उसके बाद वो एक गाना तैयार की एक गजल और वो था चिट्ठी आई है। इस गाने से ये तुरंत पॉपुलर हो गया दोस्तों। एक बार पंकज उदास एक बेनेलांस फ्लिक था तो एक शो देकर घर जा रहा था और जो फ्लिक थे जब प्लेन में बैठा तो राज कपूर जी वहाँ प्लेन में बैठा था तो राज कपूर के जाकर उनका पाँव पकड़ लिया पंकज। तो राज कपूर ने कहा नहीं नहीं पंकज जी ऐसे मत करो आप एक बड़ा गायक हो। तब पंकज ने कहा नहीं नहीं मैं कोशिश करता। तो राज कपूर ने कहा आपका गीत जो है चिट्ठी आई है वो एक हिट एक बड़ा सॉन्ग हो गया है। तो वहाँ पर जाकर पंकज उदास को महसूस हुआ कि कितना तारीफ़ किया जा रहा है मेरा ये गीत पर। और ये गीत दोस्तों मैं सोचता हूँ ये गीत हमेशा पॉपुलर रहेगा, इसलिए गीत में जो बातें हैं मैं गीत को सेलेक्ट करके रखा लेकिन आज नहीं पेश करूँ इसलिए कि गीत बहुत लंबा चौड़ा है। एक दूसरा गजल मैं आपके लिए चुन के रखा हूँ और मैं भी पेश करूँगा। तो चिट्ठी आई एक पॉपुलर हिट हुआ। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ गजल गाया जाता था वहाँ वहाँ पंकज उदास हमेशा उपस्थित होते थे और उनका गाना भी हमेशा चलता था। पंकज उदास की आवाज़ में एक दूसरा गजल आप सुनेंगे। पंकज उदास दोस्तों आप जानते हैं वो सुनांदेश भी अपन शो दिया है और हॉलांदेश में भी आकर अपन शो कितने कई बार मैं सोचता हूँ दो बार वो सुनांदेश गया है।

क्या तारीफ है, एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। गसल का फंकार पंकज उदास को पद्मश्री का पद्मी मिला। यार तु जैसे शैस्त्र में पद्मश्री का ऑनर्स कह देंगे। और पंकज उदास का पिता का नाम, उसका पिता का नाम थे खुशीदास उदास और माँ का नाम थी झूठी झीती झीती बन। पंकज को दो भाई है जिन्हें जिनका नाम है मनहर उदास, वो भी एक गायक है। और दूसरा भाई का नाम है निर्मल उदास, एक गजल गायक। और बीबी का नाम है फरीदा उदास। इन दोनों को दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिनका नाम है नयाब उदास और रेवा उदास। दोस्तों दुख की बात यह है कि 26 फरवरी 2024 को 72 साल के उम्र में पंकज उदास की मृत्यु हो गया, दुनिया को छोड़ चल गए। और बहुत दुख की बात है दोस्तों, पंकज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम जब लिया जाएगा बड़ी गर्व से लिया जाएगा। उसका दाह संस्कार परिवार रिश्तेदार के अलावा फिल्म इंडस्ट्री के तमाम भी सितारे मशहूर थे वहाँ पर।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। महेंद्र कपूर का लाइव सॉन्ग आप सुनेंगे।

महेंद्र कपूर पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में बदल जाए अगर माली। दोस्तों जॉय मुखर्जी सायरा बानू के साथ फिल्म शागिर्द में काम किया। आप ये फिल्म देखे होंगे तो इस फिल्म एक बहुत जोक फिल्म था दोस्तों, इसमें बहुत हंसी था और जॉय मुखर्जी और सायरा बानू अच्छी तरह से इस फिल्म में काम किया। और इसी फिल्म का एक सॉन्ग है नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुनेंगे।

रॉय मुखर्जी और आशा पर सायरा बानू दोस्तों दिलीप कुमार का बीवी सायरा बानू के साथ फिल्म शागिर्द का ये सॉन्ग अभी आपने सुना। धर्मेंद्रा दोस्तों, धर्मेंद्रा और अपन दूसरा बीवी, जी हाँ लोग कहते हैं दूसरी बीवी, तो मैं कहा दूसरा बीवी, अपन दूसरा बीवी हेमा के साथ वो काम किया फिल्म चरस में। अभी गीत के बाद मैं कुछ धर्मेंद्र के बारे में आपसे बताऊंगा।

0: दोस्तों धर्मेंद्र, आप सभी जानते हैं कि धर्मेंद्र का तबीयत जो बिगड़ा, तो धर्मेंद्र अपना दयाद जो है, जितना धन दौलत है, वो अपन दो बीबियों के अंडर बांध दिया दोस्तों। तो एलक है, एलक मीन्स दोनों बीबियों का पूरा बांध दिया। और धर्मेंद्र का दौलत जो है 560 करोड़ रुपए। तो धर्मेंद्र अपना पहला पत्नी और हेमा मालिनी को दोनों को 200 करोड़ दिए। तो हेमा मालिनी को 200 और अपने पहले पत्नी को भी 200 करोड़। और अपनी चार बेटियां, धर्मेंद्र को चार बेटियां है, दो हेमा के साथ और दो बेटी है प्रकाश कौर के साथ। तो चारों बेटियों को 107 करोड़ दे दिए और 60 करोड़ रुपये। और अपना फार्म जो है, अपना फार्म हाउस जो है, वो दोनों अपने ये अपने दोनों पत्नियों में बात दिए ये लगा। और बच्चे सोनी दियोल और बॉबी दियोल दोनों को अपना प्रोडक्शन हाउस दे दिया। और धर्मेंद्र को कई शहरों में रेस्टोरेंट है, उसका कीमत लगभग 5 करोड़ है। और दोनों भाई के हिस्से में ये सभी रेस्टोरेंट जो है, ये दोनों भाई के हिस्से में आया। और धर्मेंद्र को चार बड़े बड़े बंगले हैं जो अपने दो बीबियों को बात दिए है दोस्तों। तो देखिए धर्मेंद्र अपन दो बीबियों को कितने प्यार करते हैं कि लड़कन को कम दिया है और अपन बीबी को ज़्यादा दिया है। इसलिए कि बीबी से तो लड़का होता है ना, जब बीबी नहीं है तो लड़का कैसे होगा। जॉनी, तू क्या सोचे है ना, सही बात है कि नहीं
1: भैया? जो मसीह ना है वो तो कैसे चले
0: वही बात है जॉनी, थैंक यू।

आपका हैप्पी सिशिल फा हुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकाटिंग। नकाटिंग नकासानी

मिस्टर तसीफ बख्स, और तसीफ बख्स आपके लिए पेश करेगा केसरिया एक्स कर्म डॉन।

की बार दोस्तों, ये मोक्सी वाले ऐसी नहीं, ये मिसिक मोक्सी है। और मिसिक मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फली में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।

फ्लोरी बिना चटनी कैसे बनी? मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

दिया और रूबिया। दोस्तों कार्टर कड़मा अनु ताकि मिनो लोबी यू, सुमा ताकि मिनो लोबी यू, मिलो बी यू थ्रू।

मेक्सी पोको चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों। जगना और जगाना, राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

टोन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

हर एक काम जो रेडियो के सिरे कराना, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, आप कॉन्टेक्ट कीजिए फाहौर हिंदुस्तानी रेडियो के डॉक्टर से न्यू सीफ तक 3 से 5 2 8 फी सीफ पर आपको तार करना है।

दिल के दिल की महफिल सजाने लगी, दिल के महफिल सजाने लगी के बाद जब भी तुम्हें देखूं तो चैन मिल जाता है। यकीन कीजिए, क्या बात है आप में कि जब तुम्हें देख लेता हूं तो दिल का चैन आ जाता है। वाह,

Nieuw song met Piskarunga Dosto, 2025 में ये गीत बना है और मेरे सनम आया है, गाना बोल है मेरे सनम आया है, हम सब मिलकर सुनेंगे.

न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम मैं पेश करता हूँ दोस्तों। एक दूसरा न्यू सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ, नया प्यार नया एहसास, क्या बात है, नया प्यार नया एहसास। यूबीन नौटियाल के आवाज़ में आप सुनेंगे।

प्यार है नया एहसास है, आप एक हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तान रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। मुझे सजना से मिला दे, सजना से मिलना है तो मिला दे मुझे सजना से। न्यू सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं।

जब तेरा प्रेम है अच्छा, जब प्रेम है अच्छा तो सजना जरूर मिलेगा सच्चा तेरे हवाले। अरिजीत सिंह एंड श्रिया घोषाल दोनों के आवाज़ों में मैनू मैनू चाहिए इश्क में रंग तेरा, एक हो गया अंग मेरा अंग तेरा।

इंडी लव सॉन्ग्स, बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स में अब की बार पुसी का संगीत आप सुनेंगे। इश्क इश्क दीवाना होता है और मस्ताना होता है, उसी से क्या क्या होता है दोस्तों।

हर खुशी से हर गम से, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है मून कॉलिंग, नेहा कक्कर एंड गुड़ सिद्धू।

0: जानदा नहीं मैनू, नेहा कक्कर हूं मैं।
1: कक्कर हूं मैं, क्या बात है। हार्ड स्टाइल रोमांटिक सॉन्ग थ्रू लव।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर नतीरलक उक्त बुलाइस्त्रफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। और नतीरलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंक नतीरलक और आप सभी को भी अल्फास्टन शुभ होली। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें हो, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक ऑर्गामन हो, ऑर्गावुमन हो, इवेंट और खनिसात और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बारे में ज़रूर कॉमर्शियल बनवा कर, या तो अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं द प्लस रेडियो के लहरों द्वारा एंड वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लहरों द्वारा। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बियॉन्ड ऑफ द एस्ट प्लाट्स। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेडेंस कंटोर यूरो ऑफ 07-365-98 या 07-365-22-47 पर आप तार करें। जो भी रेडियो का काम हो, देंक ऑन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और हमारे फुल टीम के तरफ से इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन प्रार्थना किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। इसके बारे में आप सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आप तार करें अप 07-365-98 या 07-365-22-47 पर। तो आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। तो वादा के मुताबिक हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, होली स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है। तो अब आप सुनेंगे हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के महान महान कलाकारों के आवाज़ों में कुछ होली सॉन्ग्स। तो एक अति सुंदर बयान मैं चुनकर रख चुका हूँ प्लेयर में आप सभी को कि रंग डालो फेंको गुलाल। इस जमाने का द किंग एंड क्वीन ऑफ मेलोडी सोनू निगम और श्रेया घोषाल के आवाज़ों में अति सुंदर बयान स्पेशल नामंस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम अल्फास्टन शुभ होली।

को गुलाल, इस जमाने का द किंग एंड द क्वीन ऑफ मेलोडी, द ग्रेट सोनू निगम, अंत मलकाए हुस्न मलकाए संगीत, द ग्रेट श्रेया घोषाल जी के मधुर आवाज में अति सुंदर होली सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया। नाम स्वाहन हिंदुस्तानी रेडियो के फुल टीम की तरफ से एक अति सुंदर सुंदर होली सॉन्ग्स चुना हूं आज के इस होली स्पेशल का प्रोग्राम में। और इस बार प्रीतम चक्रवर्ती के साथ सुनने को जा रहे हैं आप सभी को सुबोली सुबोली विशाल दादलानी और विशाल माली खोल गाधे, ब्यूटीफुल सॉन्ग बलम पिचकारी, क्या बात है। आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम सुभोली नाम स्वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।

Beautiful song, holy song, Balam Pichikari, from the movie Jawani Hai Diwani, प्रीतम चक्रवर्ती के साथ और संगीत पर सुना रही आप सभी को विशाल दल्लानी एंड शाल माली गोल खाटे कोरस के साथ। इसी तरह से कुछ सुपरहिट सॉन्ग्स होली सॉन्ग्स मैंने चॉइस किया हूँ आज के इस हसीन होली स्पेशल का प्रोग्राम, जो खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से पेश किया जा रहा है हमारे तमाम प्रिय प्रिय सुनने वालों के लिए। और फर्स्ट शुभ होली। अगला बयान एक दर्जन से ज्यादा गायक इस गाने में भाग लिए हैं। इट्स अ स्पेशल होली सॉन्ग आप सभी के खिदमत में। रंग बरसे और बरसे ही बस बस, द अल्टीमेट होली मैशअप। और ये अति सुंदर बयान को कंपोज किया है ढेर सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स मिलके, जैसे तानिक्स बाक्षी, राघव विशाल और शेखर, आदेश श्रीनिवास्त, प्रीतम चक्रवर्ती और सचिन जिगर गाने वाले हैं। 15 को हम गिन ले कोरस के साथ और होएगा सुनने। रोमी, तानिक्स बाक्षी, असीस कौर, राघव, अमिताभ बच्चन जी, सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक, उदित नारायण, सचिन संघवी, जिगर सरैया, विशाल ददलानी, शाल माली खोलगारे और ब्रिजेश श्रंधिया। क्या बात है, मेरा 15 सॉन्ग्स मेट कोरस। ब्यूटीफुल सॉन्ग, नाम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम अल्फस्ट। होलिका दहन तो आज है, लेकिन कल शुभ होली है, तो जरूर बहुत ही मजे के साथ परिवार हित प्रेमियों दोस्तों के साथ ये महान त्योहार मिलकर मनाना। और एक भेदभाव भी ना रहे, और अगर जो कुछ ऊंचा नीचा हुआ होगा ना परिवार में, तो वो लात अलमाल एफ बखराफ वर्द एन आलस फरखेत एन फरखेफ एन नतुलक लाइक अप न्यू बखेन। दैट इज ओक एन बोथ्सखाप फॉन्स होली फेस्ट नतुलक। कर मैं नोग हेल गुड हेरिनर अल्स वन बेच ट्रामलांत में द ब्यूर ऑफ फमिलीज हार दन वर्द इट दी दाग गोन फ्रेडे गेस्लोटे। दिस कम अप सब, जितने कड़वी बातें हो भूल के और गले मिलना। रंग बड़ से स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Ya, beautiful song Renggi Bersih Bus, the ultimate new holy bishop holy party song. Aap sultan ke seva mein pesh kiya gaya naam Isfahan Hindustani Radio. Aap sabhi priye priye shrotaon ke naam first and sub holy to every listeners. इसी तरह से कुछ होली सॉन्ग्स सेलेक्ट किया हूँ आप श्रोताओं के सेवा में इस स्पेशल प्रोग्राम जो मैं रचाया हूँ नाम इस्फाहान हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम. अगला बयान होली इट्स अ कलर जिंदगी ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं मशहूर गायक इस जमाने का हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द ग्रेट मीका सिंह और सुनचे जी सुनिधि चौहान मिलकर ये अति सुंदर बयान को सुनाने वाले हैं आप सभी को कंपोज बाय श्याम बलकर. मिलकर सुनते हैं स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम नाम इस्फाहान हिंदुस्तानी रेडियो सुभोली.

सखमी दिलों का बदला चुकाने आया हूँ। महान गायक कुमार सानू द टाइगर ऑफ इंडिया, उन्हीं के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। फ्रॉम द एल्बम होली गीत फ्रॉम फिल्म्स, म्यूजिक बाय बाप्पी लहरी। अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, और देखा जाए एक बार फिर फ्रॉम द मूवी वक्त 2005, अनु मलिक और सुनिधि चौहान के मधुर आवाजों में, म्यूजिक बाय अनु मलिक। डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। मजेदार सॉन्ग आप सभी प्रिय सुनने वालों के नाम, नाम फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, आप सभी को ऑल फर्स्ट एन शुभ होली एन हेल फेन एन प्रतिह होली का दहन ओक ईसाई तो जोर तोड़ से तक नहीं खन तक लगे जोर तोड़ से ईसाई तो होलिका दहन सब मना रहे हैं बड़े समारोह के साथ साज और संगीत में। थेल फील हैप्पीस एंड ड्रंक इज दरबाई दिस इक्विंट दारना तूफान तोत हाल्फ ट्वाल्फ फनाफंत। मिल के सुनते हैं, लेट्स प्ले होली।

ऑन रेडियो पर आप ट्यून है दोस्तों, गर्मी का मौसम है, पानी ऑफ्टेट पीना दोस्तों, हो सके तो एकदम ठंडा पानी नहीं, बर्फदार के नहीं, कूल वाटर तो वो और अच्छा रहेगा। काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारा जगत से नल सीफन तो दिल्ली साइज 5 2 8 2 8 फी सीफ हमारा तार का नंबर है।

यार आ गया मेहंदी लगा के और दिल धड़का के क्या क्या करके नहीं बैठा, फिर भी प्यार तो होना चाहिए। तो प्यार आ गया, पहले कभी ना मेरा हाल। उदित नारायण एंड अलका। मौसम है दोस्तों, अगर आपको बाहर जाना है तो सोच समझ के चले जाइए दोस्तों। रिस्तक से अपन काम करना, अगर बाहर नहीं निकलना तो घर में आराम से बैठ के टीवी देखिए या कुछ न कीजिए। गर्म है पाँव, रेडियो ऑन कीजिए और बैठ के आराम से मजा लूटिए।

होने लगा या हो गया है मैं पता नहीं। आप जानते हैं समय हमेशा निकलते जा रहा है और कुछ जब होने के रहे हैं तो इस समय के साथ सब हो जाता है। कभी कभी कुछ होना चाहिए नहीं होता है, फिर भी आराम से हो जाता है कभी कभी।

तुमसे अच्छा कौन है, तुमसे अच्छा तो कोई नहीं है। सबसे खूबसूरत दुनिया में आप ही तो हो, और बड़े प्यार और प्रेम से दोस्तों फाहन डिजाइनर के जरिए आप ये सभी गीत सुन रहे हैं, और हर एक काम जो आपको रिलीजरी कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 फिर से 5 तार का नंबर है।

कार्यक्रम होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज शाम के प्रोग्राम में बप्पी लहड़ी द ब्लिंग ब्लिंग सांगर म्यूजिक कंपोजर और साथ ही साथ म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म प्रोड्यूसेंट भारत का आलोक्स अपरेश लहड़ी, उसका असली नाम यही है दोस्तों, 20 नवंबर 1923 में पैदा हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लोग बपीता के नाम से जानते पहचानते हैं, पप्पी लहड़ी के नाम से लोग भी उन्हें पुकारते हैं। वो एक सांगर था, कंपोनिस्ट, प्रोड्यूसर, प्लाटन प्रोड्यूसर वगैरह वगैरह। पॉपुलर था यार तख्त नीख तक में बंगाल तेलुगु और कन्नाडा फिल्मों में। पिता अपेश लहड़ी और माँ बंसूरी लहड़ी, ये दोनों सांगर और म्यूजिकांत थे। बप्पी या मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग माता पिता का एक ही लड़का था, एक ही बेटा था, और 19 साल के उम्र में इन्हें उनका मामा जी या मामू श्रीमान किशोर कुमार, मशहूर गायक किशोर कुमार, बॉम्बे ले गया। पहला हिंदी फिल्म जहां पर वो म्यूजिक कंपोज किया वो था नन्हा शिकारी, जो नी खंटिंग ड्रियन सी फिल्म तक में बना, और पहला म्यूजिक कंपोजिशी उसका था तुम ही मेरा चंदा, ये गीत माइटी मुकेश ने गाया, और सुलोचना पंडित के साथ भी जाना कहा है ये सॉन्ग पेश किया। मैं आप सभी के सेवा में ये सॉन्ग पेश करता हूँ, बप्पी लहड़ी एंड सुलोचना पंडित।

of disco, disco की बपिता या बप्पी लहरी मिथुन को बहुत से मदद किया फिल्मों में दोस्तों. बात यह है कि मिथुन का बीबी जोगिता बाली वो चला गया, नहीं नहीं किशोर कुमार का बीबी जोगिता बाली वो चला गया मिथुन के साथ, तो किशोर कुमार ने बंद कर दिया मिथुन के लिए गीत गाने को. तो बबीता ने मिथुन को बहुत से मदद किया. जब मिथुन तब पे आया था ये बबीता का कारण हुआ. और फिल्म डिस्को सिंगर डांसर आपको मालूम होगा दोस्तों, ये फिल्म आपने जरूर देखे होंगे. उस समय डिस्को का समय रहा और हर एक गीत जो डिस्को से चलते थे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनते थे. मैं पेश करूँगा डिस्को डांसर का सॉन्ग आई एम अ डिस्को डांसर, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर पप्पी लहरी.

ब्लेंग ब्लेंग बप्पी लहड़ी का एक दूसरा गीत है, बम्बई से आया मेरे दोस्त आपकी खातिर फिल्म का नाम है, जिसमें विनोद खन्ना और रेखा ने काम किया। मिस्टर ब्लेंग ब्लेंग बप्पी लहड़ी के आवाज में आप सुन।

मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के घर पर इनकम टैक्स वाला छापा मारा दोस्तों, और उसका इतना सोना है सब इकट्ठा करके तौला तो लगभग 2 किलो का सोना उसके पास, लेकिन हकीकत में लोग कहता है कि बप्पी लहरी के पास और सोना है, लगभग 4 किलो का सोना उसके पास है। बप्पी लहरी मिस्टर बबीता फिल्म डिस्को डांसर का एक सॉन्ग है जिसमें बप्पी लहरी ने म्यूजिक डायरेक्ट किया। जिमी जिमी आजा आजा आजा।

फिल्म डिस्को डांसर का एक दूसरा सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ। गायक है पप्पी लहरी और म्यूजिक भी डायरेक्ट किया है पप्पी लहरी। याद आ रहा है तेरा प्यार कहा हम कहा, पप्पी लहरी की आवाज़ में आप सुनेंगे।

पपी लहरी पपीरा के नाम से भी लोग जानते पहचानते थे मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग। जब पप्पी जी कहीं लाइव शो पे जाते थे तो हमेशा सबसे बेस्ट सांगर या सांगरस को जेबी में अपन गटे में से एक माफ करिए मैंने कहा जेबी अपन गटे में से एक चेन एक केटी निकाल कर और तोहफा देता था। ये काम करता था मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग पपीता। पप्पी लहरी का एक दूसरा सॉन्ग है आशा के साथ यार बिना चैन कहारे।

हम शराबी में उसके बाद नहीं थी इन्हें नहीं खन तक, और तुए जैसे तुआरत में भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर हुआ पप्पी लहरी। अमित कुमार और एस जानकी के आवाज़ में आप गीत को सुनेंगे, जिसका कंपोजर है, इस गीत का कंपोजर है मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग।

सितारों का सफर आप सुन रहे बप्पी लहरी। बप्पी लहरी को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उसके बप्पी लहरी का एक रिकॉर्ड भी उसके पास है, 12 सुपर हिट फिल्मों में म्यूजिक दिया जितेंद्रा का फिल्म में। नहीं सेशन तक के बाद जब उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम आया, इसलिए कि 180 नंबर्स एक साल के बीच में 180 नंबर्स ये पेश किया। और दुख की बात यह है दोस्तों कि बप्पी लहरी का मृत्यु 15 फरवरी 2020 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। आप ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ।

सोनी मेरी सोनी सोनी, एक दूसरा सॉन्ग जो मैं चॉइस करके रखा हूँ फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सॉन्ग है दोस्तों। और ये गीत, ये फिल्म शूटिंग, इसका शूटिंग हुआ है हरियाणा, इंडिया का एक एक गांव है, एक शहर है हरियाणा। वहाँ पर शूटिंग के समय जब शाहरुख खान काजल शुरुआत किया इस गीत जो मैं पेश कर जा रहा हूँ, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ये गीत का शूटिंग के समय वहाँ गांव के लोग, वहाँ के जो बसिंदा थे सब आकर घेर लिया और हल्ला मचाए, शोर मचाने लगा। तो जो वहाँ का फिल्म डायरेक्टर था उसको प्रॉब्लम था, वो ये शूटिंग नहीं कर सकता था। तो आमने सामने बैठा था फिरोज खान, मशहूर एक्टर फिरोज खान वहाँ शूटिंग के जगह पर भी बैठा था। तो ये उठ के गया है और ये हरियाणी, ये हरियाणा का लोग जो है उस सभी से हरियाणी भाषा में बात किया, सभी को भाई बनाया। तो जाकर शाहरुख खान और काजल ने ये गीत को प्लेबैक किया, तुझे देखा तो जाना सनम।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हो तेरे वाला दरबड़ गीत ब्रोकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत जिन्हें हम भूलना चाहे, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं माइटी मुकेश की आवाज में।

खुशी, खुशी एक ऐसा एहसास है, खुशी एक ऐसा एहसास है जिसके हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है, गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, पर जिंदगी, जिंदगी तो वो जीता जिसको खुद पर विश्वास है।

जब तुम पास थे तो हरदम यही सोचता था कि तेरी कदर नहीं करता। और आज जब तुम मेरे पास नहीं तो एहसास होती है कदर हमेशा से थी, मगर तुझे ना खोने के यकीन ने अंधा किया था।

कोई नहीं मेरा इस दुनिया में, कोई नहीं मेरे इस दुनिया में के बाद अब की बार तेरे दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले माइटी मुकेश।

0: क्या हुआ तेरे और दर भर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है।
1: दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला
0: फाहन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो से कराना है कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 9 से 5 तक 3 से 5 2 2 फिर से 5 पर आप तार कर सकते हैं।

0: ही ना रहे हम महका करेंगे। आरंभ होता है सितारों का सफर, और सितारों का सफर में आज के प्रोग्राम में अमरीश पुरी के बारे में कुछ बातचीत होगा।
1: सिर्फ दिल की जमीन है याद हम।
0: अमरीश पुरी का जन्म 22 अक्टूबर 1922 लाहौर पंजाब में हुआ। इनका असली नाम है अमरीश लाल सिंह पुरी। अमरीश पुरी एक बेस्ट विलियन एक्टर के अलावा अच्छे रोल भी करते थे। वो शेखर कपूर की फिल्म हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में मोगाम्बो के नाम से बहुत मशहूर हुई। ये फिल्म जो नीलकंठ सिंह तख्तक में बनी थी, और इसमें अनिल कपूर का होफ रोल था। अमरीश पुरी यानी में इंडियन थिएटर्स में काम का शुरुआत किया। उस वक्त वो सचदेव और गिरीश कर्नत के साथ भी काम करते थे। अमरीश पुरी एक वेस्टर्न फिल्म जो निकली फिर तक में बनी थी।

अमरीश पुरी। अमरीश पुरी के भाइयों भी एक्टर थे, जैसे चमन सिंह पुरी और मदन पुरी, और एक छोटा भाई जिनका नाम हरीश पुरी, और एक बड़ी बहन जिनका नाम थी चंद्रा कंटा। अमरीश पुरी शिमला के बीएम कॉलेज, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ अपना पढ़ाई किया। अमरीश पुरी की शादी नहीं स्टीफन फेस्टिक में उर्मिला देवी के साथ हुई, और इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। बेटे के नाम राजीव और बेटी के नाम नम्रता। अमरीश पुरी बाद में मुंबई आया, जहाँ इनके भाइयों फिल्मों में काम करते थे, और ये भी उन्हीं के तरह भी फिल्म एक्टर बनना चाहता था। अमरीश पुरी एक स्क्रीन टेस्ट के बाद नौकरी किया स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में। उसी वक्त ये पृथ्वी थिएटर्स में एक नाटक में भाग लिया और संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। नीगनन सीफन तक के बात है। अमरीश पुरी ने फिल्म साधना सरगम का और अमित कुमार का सॉन्ग है, और फिल्म सपना का एक सॉन्ग, दोस्तों एक ओल्ड सॉन्ग है, और इसमें नया भी मिलाया गया है। खुद सुनिए आप।

अमरीश पुरी, अमरीश पुरी जब 40 साल के थे तो अमरीश पुरी ने अनेक फिल्मों में एक्ट किया, जैसे हिंदी फिल्में, कनाडा, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयामी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अमरीश पुरी काम किया। अमरीश पुरी बॉलीवुड सिनेमा में लगभग 400 फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी रोजाना दोस्तों उसका एक काम था, लगभग 2 या 3 घंटे तक अपन आवाज़ का प्रैक्टिस करता था। उसका आवाज़ जो है आप जानते हैं अमरीश पुरी का एक अहला, एक अलहदा, एक अपार्थ आवाज़ थे, और ये आवाज़ वो हमेशा रोकने के लिए 2 या 3 घंटे तक प्रैक्टिस उसमें उफन करते थे। अमरीश पुरी वैसे तो कई अवार्ड भी पाया, निजी अख्तन शास्त्रक में महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉरपोरेशन अवार्ड पाया, और भी और ज़्यादा अवार्ड अमरीश पुरी ने पाया। एक सॉन्ग के बाद मैं आपसे और अवार्ड का नाम लूँगा। फिल्म करण अर्जुन का सॉन्ग है जिसमें अमरीश पुरी जोर तोर से काम किया।

1997 तक में अमरीश पुरी थिएटर संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड पाया। उसके बाद 1996 तक में फिल्म फेयर सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड फिल्म मेरे जुंग में 1999 महाराष्ट्र स्टेट गौरव पुरस्कार अवार्ड पाया। 1999 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग अवार्ड स्टार स्क्रीन अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म घातक में 1998 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का स्टार स्क्रीन अवार्ड पाया फिल्म विरासत में 1999 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म मुस्कुराहट में 1999 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड फिल्म गर्दिश में 1999 के बाद है जब फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड पाया फिल्म करण अर्जुन में 1999 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म कोयला में उसके बाद 2002 में फिल्म फेयर बेस्ट विलियन अवार्ड फिल्म गद्दार एक प्रेम कथा। दुख के बात यह है दोस्तों कि अमरीश पुरी का मृत्यु 12 जनवरी 2005 को बॉम्बई महाराष्ट्र इंडिया में 72 साल के आयु में हुई। पत्नी इर्मिलर देविकार और बेटी रजीव और नम्रता को पीछे छोड़कर चले गए। अमरीश पुरी दुनिया में नहीं है लेकिन अमरीश पुरी का नाम जब फिल्मी दुनिया का नाम लिया जाएगा तो अमरीश पुरी का नाम भी बड़े गर्व से लिया जाएगा।

0: सुनो सुनो ए भाई और बहनो,
1: हाय हाय सुनो सुनो भाई बहनो,
0: रे सामलो ओ राघो बा ओ गोंडी बा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरिए राम सत श्रीकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा प्यार की पैगाम।

बड़ा बड़ा खबर आज है सूरीनाम देश के और अन्य देश के और देशों के समाचार हम आप लोग को आज रिश्तक से सुनाएंगे।

मालूम है हमारी जनता। अब देखो भैया, सूरीनाम में नवा रखे रिंग तो तुलो जाने एक बड़ी सोई गए है और उस ब्लाइफ मार मेंज हीरेंदार तखान बनूम और आप लोग जानो भैया एगो एगो अरे भैया पास्टर है मैया तुलो जानो ये हुई मैया है काबुल है वो पास्टर है तो एक के सभन मांगे है रखेरिंग रखेरिंग फिनिश यानी कि एनपीएस के अने रुसलान के और एनडीपी के रखेरिंग गर्गरी रुसलान और जीमोन एक के बनुम करी से मैया के इसराइल के अम्बाजादर तो एकर बारे में वही के क्वालिसी पड़ते है और फ्रैक्सी लेदर सेल्फ एनपीएस के वो है जेरल पावी रेजो और ब्रोंटो सुबह हार जो पेयल के बोले सबन बहुत फरबास है कि रखेरिंग जो है बोले हैगा ऑन डांस बोले हैगा एंकल यारन पार यार खलीद इला पालास्टाइन के एरकेन करे से जैसे को देश और बोले तो इस अब का करे है जाए के इसराइल में बिशप स्टीफ मेयर के बनुम करी से हुआ रेसी देरेंद अम्बासडर फॉर सूरीनाम से फॉर द स्टेट इसराइल तो मलाई पावीरो बोले है भैया पावीरे जो बोले है गा बस लेटन हैंडलिंग इसराइल के तीखन ओवर द पालस्टाइन फुलकोमन इन स्ट्रेसन में नॉर्मन एंड वार्डन फ्रांस सूरीनाम एक कर मारे में मेल्विन बौफा बैतलांसे साक और इंटरनेशनल हैंडल के बोले है दैट सूरीनाम बस्टांड बिलैटरल रिलेशन विद इसराइल फॉल्स हेम हीव द लैंड सेल्फ प्रोजेक्टन geïnitieerd en die nog lopend zijn voor ze Israël willen hier projecten krijgen willen hem lukken contacten hebben te willen kiezen naar krab te willen gaan landbouw willen landbouw initiatieven projecten gezondheidszorg willen campus van universiteit voor vloeien van uitbestaande relatie doen hij Israël kerbaar in bouwfa willen hij volgens de minister in het standpunt van Suriname uit 2011 onveranderd willen hem lukken hebben NPR-fractieleider Pauwie Rijo stel dat je Suriname een vreedzame samenleving is waar alle etnische en religieuze groepen al eeuwen met elkaar in harmonie leven. Het vervreemdt hem daarom dat de regering jij je Israël mee en jij je ambassade dure heeft meegekregen. Bolle in maart van dit jaar heeft het parlement van het land een wet lezen dat doodstraf doet gelden uitsluiten voor mensen door etnische groepen, religieuze geloofvoertuigen. De Palestijnen, dat is volkomen in strijd met de normen en waarden van ons land Suriname. Bolle volgens NPS heeft Suriname pas 95 meer. Ego bolle na de apartheid was afgeschaft diplomatieke relaties uit Amerika, Zuid-Afrika aangeklopt. Toen ik er maar in bolle 80.000 mensen zijn omgebracht in Israël. Deze stad van Surinaamse regering roept daarom vraagtekens bij hem. Bolle Israël ze bolle ze contacten naar Chahi. Hamluk ambassade hoe naar Chahi ga. Omloon toen ja nee ga Israël. Palestijnen ke uiteraard die muslimaan ke hoa dagi se. Or toen loon jano hoi somo harjo. O bhi muslimaan hai. Or ekwa malai bhi muslimaan hai. Ta us hem natuurlijk voor de moslims heeft opgenomen. Ki Palestijnen ke dagi se uiteraard her. Or bole hem loke. Hiya ke ambassade jaiga hoa Israël me. Or baufa bole hai. Israël ke. Bole ke tra projekta ben nid Suriname me chale hai. Bole hem loke khad nu saaklik hai ga. NDP-parlement EB Joon verdedigde het besluit van de regering en stelde dat intussen 13 CARICOM-landen diplomatieke banden hebben met Israël. Aan de andere kant houden CARICOM-landen, inclusief Suriname, zich aan de VN-resolutie van de staakt te vuren en het recht van een Palestina naar bestaan. 11 van de landen hebben de VN-resolutie met betrekking tot Gaza en Palestina ook ondersteund, mensen. To EB Jones, we willen het Chahinga. Ambassadeur hoe dreken
तो एक बारे में भैया हम जाएला सूरीनाम में बाप रे बाप सिपाहियन हुआ का करे है दादा रे दादा बड़ी आफत के बाद तीन गो अंदर ऑफिसर एगो देपे भैया अख्तन डरत एगो ए हाफिरन डरत और दे टू फेरत ई सब भैया दरेक्स के बारे में फरदोफन मिदल भैया एंड दे नेमर अन क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन आन खो अंदर ऑफिसर स्कोतुरा भाई द ताल आलेन ब्रिगेडियर रहा फन पुलिसी इससे फोर खले ने हम सिपाही अब उसे अंदर सुक करे नारकोटिका के दर De afstemming met de openbare ministers en de verdachte politieambtenaren hangende onderzoek door de politie. Kijk daar in hem chillai chillai bolila. Kie Suriname ket heer sipahi ke bhaiya. Biswas na hai. Dekhyo mahanga mahanga auto chalawe bhaiya. Puchhiye kitra salaris hai. To us salaris se admi khali ghar chalai sake. To tu kahan pehle baate itra dher paisa. Aur jai ke baki hua pe bhaiya. Glat hai. Glat sipahi isap onderzoek na kare belasting dienst. और वो सिपाही लोग के अब देख पकड़ी से तीन गो जो दृक्ष इधर से उधर कारबार करत रहा और तुलन जाने कराका में जब सुनियो भैया ते कराका में बोले दृक्ष जरे हैगा उची युवा बड़ा ऑन ऑन बन बन एक विश्वास करे लायक ना भैया हाँ अब जाइए भैया सूरीनाम से फरेनिंग फन इकोनॉमिस सा इकोनॉमिस्ट इन सूरीनाम का नाम है फेस उसे बोलेगा बखरेब द बसलेसिंग फॉर टेलीकम्युनिकेशन और टाइटन सूरीनाम की बोले हैगा वर्ल्ड वाइड बोले बकेंट हैगा कि इंटरनेट इंटरनेट दिस दोन स्टारलिंग के geen dienst in Suriname te laten aanbieden. Volgens beschikbare informatie is Suriname de enige land in Zuid-Amerika waar deze niet wordt toegelaten. Bhaiya, of festieven Debbie Persaat bole hega IBC me bole hega moeilijk na samaj pawe u ki kahe ke Starlink volgens hen voordelen kan bieden voor de overheid en afgelegen gebieden. Telecom providers zouden daardoor niet overal dure infrastructuren hoeven aan te leggen. To waarin een beetje oude likjes hebben ja vers ke bare me. लेकिन न्यूज जाना है तब देखो भैया हम जाए साइड कोरिया में भैया हुआ के वो पुराना मिनिस्टर 25 बरिस के जहल पाई से साइड कोरिया के बातचीत है 25 बरिस के भैया फॉर रोल इन नो टू स्टान के बारे में वो रोल ओके रहा तो एक 25 यार के बोले जोनी परसिस करी से काम तो हुआ के पुराना मिनिस्टर यूसी के साइड कोरिया के ओका नाम बा Park Chung-yi बोले रेखबांग साउथ ने सियोल में 25 बरिस के जहल पाई से रेखतरों के बहुलक बोले फल दूंद अने भवेश पाई से 2024 में के को बड़का रोल खेल रहा है अफकोंदक फान स्थान फान बलेख दोर प्रेसिडेंट यूंग सुक्यूल बोले हैगा अने प्रोबेद met de noodmaatregelen in het parlement buitenspel te zetten. De oppositie met meerderheid in het parlement zou nauwe banden onderhouden met Noord-Korea en alles aandoen om het beleid van de regering te frustreren. Volgens Yoon waren dat voldoende redenen om een militaire noodstand uit te roepen. Deze duurde slechts enkele uren. Ondanks een blokkade door de leger bereikte parlementsleden toch de vergaderzaal waar ze resolutie aannamen om de staat van beleid terug te draaien mensen bolle sleutelrol bij de toestaan de isep regering ke baantje te bhaiya jahan pe tu jane ego baithe ek wa aise kare hai to ye baat hai hamare janta South Korea ke bare mein to hamare pyare mausi lon bhaiya और ये यानी कि मैं के बारे में तो अभी आप लोग को हम बता चुका है कि एकर बारे में दीबतेर सब करे है पार्लियामेंट में कि एक के सब दुई मिला ना मांगे है और दरस आदमी मांगे हैं कि पालस्तीन के अने इसराइल के अंबासादर बने के
और यह मैयक के बारे में भैया बड़ी गर्मी है हाँ कोडर रोड इन स्टेट्स मेर यूरोपी से लंदन फनवीक एक्सट्रीम है तो गर्मी बहुत है नीदरलैंड बोले फॉर आउस नो स्प्राके इस फन कोडर और आये यहाँ पे नीदरलैंड में कोराये हैं और आये हैं वर्ड इन स्टेट्स यूरोपी से लंदन कोडर रोड अफगानिस्तान वीक एक्सट्रीम है तो इटालिया में भैया बोले हैं बोले इन मेडस 15 स्टेट 15 शहर में सेवन कोड रोड करी से रोमन में मिलान से इन वोडस अपखरूबन बोले तेजस वर्मस्त दाग दिले बिनन तब लाइफन भीतर घर में रहिए और बोले जियो कूलिंग खोजियो Frankrijk bole hega gaat gebukt onder de hittegolf 54 departementen is code rood aangekondigd. Niet eerder waren dat er zoveel of veel plekken die 40 graden hoe bij Frankrijk mee. Zouden Franse scholen schooljon hega zouden go bole hitte se ban hoe je he. Fransen gaan zwemmen ter verkoeling. Sinds het weekend zijn zo'n 20 mensen verdronken. Ook mensen na de nieuwe paure bij de paard. और बोले फ्रांस ऑथोरिटी तो वास्क्यू करे है कि जइयो पड़े पौड़े तना बुड़ियो जा ऋषि को बड़का है फॉर द आइड्रोकिंग फ्रांस के रेक्टर वेर तैदक uitgeschakeld omdat het koel water warm was geworden के रेक्टर जेने है बोलो के बंद करी से बोले पनिया गरमाई जा है और इन बेल्जियम इस हित क्राइसिस में से बोले दिखतर बे इस एक्सट्रीम हित बेल्जियम के रखे बोले मंगलवार के वो किस सेंट्रम खोली सेगा कैसे अनपक करेगा रात के बोले के कूलर रहे 25 रात अब दैट इट अ सोंडलक वार्म मींस मेट्रोलॉजी के दिन मेलकी के बोले फनवीक द हिट इज दार कोड ओरेंज गिवन और नीदरलैंड में अफगलोपन वुड्सडा कोड ओरेंज रहा द वास्क्यूइंग ड्यूट इन ईदर गेवाल tot in donderdag, maar de kans is groot dat dit wordt verlengd, mensen. Het raakt garmie hè, Europa mee, euro aanploen bij. पानी पियो में खिलवाड़ ना करिए दोस्तों हम भी यहाँ पर पानी ठंडा पानी लेकर बैठा हुआ है कि हम भी तरी से अफकूल हुई हमारी जनता प्यारे प्यारे जनता तो आप लोग जानो हैं रुसलान भैया उक्रेन के नाक में भैया नाक में और कदक काबुल है नाक में इतना प्रॉब्लम करी से जब देखो तो एके उड़ावे ओके उड़ावे है बम से दागे ड्रोन से दागे है अब यहाँ उल्टा चीज हो गया भैया उक्रेन अब के तरह ड्रोन उड़ावे है और रुसलान के अनफाल करे भैया राफी नार्द रही दागे तो ई दागे तो ऊ दागे है तो यहाँ पे बताए गए है द्रियन ट्वेंटी यूनी के बात है और बोले हैगा फर्स्ट रुसलान में उस रुसलान में इज द फेर को फॉर ब्रांस of aan particulieren aan banden gelegd. Op die manier willen de lokale autoriteiten voorkomen dat er gehamsterd wordt vanwege Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen zijn brandstoftekorten. John Rusland etrajabar teel dunia bhar mein export karat raha. Een van de grootste exportland raha teel ke. Ab ohi ke des mein teel na hai bhaiya. Teel bole hai bahut kamti hai. Aur bole saban hamster kare omdat Russi से रफिनार्दरही गो हैगा उक्रेन अपन ड्रोन से दाग के ओके चित्रा दी से और रूसी से रफिनार्दरहीन वर्दन अल मंदर अंदर फिर खुरुमन उक्रेन से लेकर से और फॉल्कस अंद्री मेलिक द परमानेंट वर्तेगनवोर्डर उक्रेन के बेड फरीनक्ड नाची इस 40% फॉर द टोटल अंताल रफिनार्दरहीन इन मिडल बर्सकाद तो बोले हियर द रूसलैंड के रफिनार्दर capaciteit jon hega flink afgenomen doordat Suriname en daardoor sommige complexen meer dan eens worden aangevallen to itra jabber bhaiya ab to Rusland apan tel aprehi admik na dei pawe he daarnaas worden ook aanvoerrouters van brandstof verstook jahan jahan stelwa samal le ja hai ohu ke Oekraïne dage hai
Rusland, bolle Skiereiland. De Krim is de verkoop van brandstof daardoor volledig stilgesteld. Ik ook Krim mee, wapen Rusland, lillerha, o tilkere oehoe in de banhoeige he. Or ik erbaren mee, in de regio Vladimir, ten oosten Moskou mee, krijgen de hulpdiensten vervoerders en landbouwvoertuigen verlopen voorrang bij de voorkoop van brandstof, meldde governor of Telegram. John en Miketi kare, ook is van Teel de Win. Ik ga ik weer naar de Jij de Zoam. Ja, burgers hebben de oproep gekregen om zo min mogelijk autoritten te maken. Bolle auto kan titelen je. Regering, bolle Poetin ge. Bolle ik ga Teel hem lukken na he. Oostelijke Russische regio's is middels sprake van een brandstoftekort. Waaronder in de Kazachstan grenzende regio is de verkoop van banden gelegd en is het gebruik van jerrycans verboden. Jerrycans met biedt ook het tamage tellen jijke. 10.000 kilometer afstand komen in beeld. Volgens Kremlin woordvoerder John Higa Russische regering ke oliemaatschappijen kebole om ervoor te zorgen die constante aanvoer van brandstof blijft. Bolle Higa ondertussen Oekraïne door aanvalkere Russische tilpe orgaskele installatie pe waaronder raffinaderijen, bolle hega fabrieken, jetra hega exportterminals gewoon door. Oekraïne president Zelensky maakt afgelopen weekend melding van een aanval op de olieraffinaderij in de Russische regio Tumen. Om zo'n 2000 kilometer afstand van Oekraïne. Volgens president is bij die aanval gebruik gemaakt van een nieuwe type lange afstand drone. Met deze drones komen ook doelen op ruim 10.000 kilometer afstand binnen bereik. Stel ik zeg nou ook een Oekraïne banaan zeggen. Drone ook okay, op een eigen fabriek. Maar ja, op de ultatje joa raffinaderij daar. Sapke als hij dag. Of Oekraïne plaatsen krijgen. Oekraïne wil dat militaire druk doen hangen. Bolle gepaard gaat met diplomatieke druk. Die moet Moskou ertoe aanzetten om een einde te maken. Oorlog bolle ik had krijgen. Dat Moskou doen in Rusland. Dat oorlog wat ook jij ben krijgen. Hem los ze. Herhaalde melding maandag bij de VN. Gebeurt dat niet. Dan overweegt Kiev om zijn voorstel voor een wapenstilstand langs het gehele front. Al ruim een jaar op tafel ligt. Op bolle Rusland bolle namange he double i hem loke manier hega ki hem druk karela ki oorlog wa banker Oekraïne anders gaan we door. De impact van de militaire druk op Oekraïne lijkt ook de Amerikaanse president Donald Trump niet te zijn ontgaan. Vorige week zei dat Rusland een deel van Oekraïne zou moeten sluiten. Voorheen was die boodschap meestal aan Kiev gericht. To ye baat hai hamare janta कि अब सब चीजों उल्टा हुए लगल है Oekraïne juist aanval kreeg Rusland op en Rusland mee teelol naar hege bhaiya bole landbouwers ke voorrang he en bole Russische brandstof tekorten als gevolg van Oekraïnse aanvallen breiden zich uit mensen to hamare janta aur aage ko hum apna program ko lekar और चलते हैं बढ़ाते हैं वो तो और देखो भैया मार्टिन लूथर किंग वेक में पारा क्रीक में हुआ के ब्रुकी बन है भैया वेक लंग अफकसलोटन ब्रुकी हुआ के पारा क्रीक के और बन है भैया एगो बड़का ब्रुकी और बोले हैगा बेतोन ब्रुक ओवर द पारा क्रीक और जो मार्टिन लूथर किंग वेक में है अंडर हाउस हुआ हुए है और बोले ब्रुकी बन है बोले स्वार ट्रांसपोर्ट गेल्डन अपार्ट फरकेसमाटरीक्लन और बोले उस सबके ब्रुकी ना बोले हैगा gebruik maken बोटर्स हाईवे के ऊके पूरा स्वास्थ्य के चाहे जाय के तेगो लंबा रूट आदमी लोग के मारे के परिगा हमारे जनता तो अभी आप लोग को और आगे के बातचीत हम बताएंगे हमारे जनता कि और करप्शन के बारे में भैया एंटी करप्शन कमिशन दो द्रेंगन अप्रूव आन फी वी verplichtingen तो बोली जोनी ये क्या होता है तो ये होता है
की anti-corruptie wet जो नेगो हेगा 13 अप्रैल 2026 में dringend oproep करी हेगा कि जो पब्लिक फंक्शनरीसन हेगा बोले हेगा दी op grond van de anti-corruptie wet verplicht zijn een verklaring van inkomsten van vermogen van IEV in te dienen बोले हे जेत्रा लांटीके आदमी हे फंक्शनरीस है बोले verplicht हेगा anti-corruptie wet से बोले एगो verklaring afleg करके कि कहां पे तू पैसों पहले है VIV के मतलब verklaring van inkomsten en vermogen बोले हेगा de ACC wijst erop dat de door PG vastgestelde hersteltermijn afloopt tot 16 augustus पहले तो लोग चाहिए सबके melden कर दे वे के और ACC is het groot belang van de verplichting hun wettelijke verplichtingen alsnog nakomen en deze gevolgen kunnen onder meer bestaan een strafrechtelijke voldoening de ikermanemi verplicht is van के augustus पहले सबके verklaar करके कि कहां कहां पे और तू इस सब चीजों पहले बाटे anti-corruptie wet के बारे में तो ये तो अच्छा बात है भैया मैं सब कुछ वहां बिकाऊ है भाई जे तो के पैसा है ते ई वेतवा भी तोर हो जाए ई तो हमारा सुरिनाम के विश्वास ना रहेगी हमारी जनता अब एक औरत भैया निकेरियानन के बात है निकेरी में दुई बरानी में झगड़ा भइल है भाई झगड़ा भइले सनिचर के रात के और नसान रहा औरतिया बस अपन घर में अपने आगे लगा दी ना अनमिया भैया औरतिया लगा दी से और ये बातचीत हुए है शनिवार के रात में निकेरी के बात है भैया एगो नीखन फिर तक यार के और बोले द खसिन फोन द फॉलीडक इन फ्लमन एन फॉलीडक इन फ्लमन वास ऑपगनोमन और एक बार निकेरी के सिपाही गए है और कई फन एगो सोल स्ट्रात है तो वहां पे ये चीज भइले भैया आगे लगल है और बतावे दुई परानी के झगड़ा में घर में आगे लगे दुई परनिया जे मोई हो जाई तब बैठ के मुड़ी पे हाथ धर के और यो की का बात भइले हम का कर डल्ली बाटी और एगो रमिया के जरगे पीठी में के सिपाही अपन फुरतोइक में ले गए है मुगरा में इस संतरे में और बताई गई है या खतईकन इस्लाह तो फरक्लार देते ही कनु वो पुलिसी दर एम एन द ब्रांच ऑफ हेवन आंखस्कोकन और बोले एगो औरत के हिया भैया का किया बानल है और एक औरत की फोटो है जो अगिया लगाई से भाई अपन घर में अपने आगे लगाई के और तमाशा देखियो दारू पी के दोनों प्राणी तो ये बात बड़का रूफ ऊपर फाल भइल है हमारे जनता सनिचर के संजा के भइले बैरखन सूप वेख में बैरखन सूप वेख में एगो जबरदस्त रूफ भइल है जहां पे देर तक दैसन एसएडी सब लीगे को ब्राउन फीस पे भाए फरदख्तन दार में मांगते तो द पुलिस बोले है बरूफिंग भाई ने सर 3 बजे दिन वे के बोले हैगा रेड लंग समेशन ऑटो हाथ स्कूटर सास ऑफ से स्कूट लिखन op een gegeven moment werd zijn voertuig ingehaald door een bromfiets met daarop twee personen die ik wat niet dhire op een auto leek jaat raha en ik was kou de tas tangen raha jo maa otra paisa raha en chitte me ik een bromfiets inhaal kari se en bromfiets wa ik inhaal karke ik er tas wa leek een peel bhagal bhaiya door de plotseling al achtki schrok de automobilist waardoor de verdachten en inslaagden de tas met het geldbedrag buiten te maken Na de beroving gingen de bromfietser en zijn medepassagiers er met hoge snelheid vandoor. Beide verdachten droegen hier integrale valhelmen, waardoor hun identiteit niet kon worden vastgemaakt. Als je bij een keer hoort, maar toen wordt op een baat, bij ja, chillet auto, maar ze is op geen lijst te kahen auto, wel een keer door rijden. Houd je ze bij maat, hè? Hamari Suriname, ke, hamari.

सूरीनाम का न्यूज और कुछ और देशों का समाचार हम आप लोग के बराबर देखो सिपाही भैया सेट एक्स्ट्रा पर्सनल इन बे अफसलोतन ब्रुक पारा क्रीक में एक्स्ट्रा जो ब्रुक किया रहा हुआ एक्स्ट्रा सिपाही धरी से गा बोले तेने से स्पूत ओफर बोले हो तो इनके इंस्पेक्टर लोन हुआ दो ब्रुक के गए ले हैं और बोले पुलिस पोस्ट पर अफकर एलकार वान उड़क बैठ स्थान उजन ब्रुक किया बंद करी से और सिपाही लोन हुआ पे भैया सूरीनाम में ड्रग ड्रग के पकड़े है तो का बोले हैगा बहुत कम विश्वास है कि उची जीवन जरे है कि ना हमारी जनता पेंशन स्टेक 23 यूनी भाई पेंशन के बारे में यहां बतावे है लिख मिलियन नीदरलैंड्स फॉर हु Marielle Tweebeek, de oude president van DNB, live ontmaskerde. Bole, ja, pedig, uitzending bij Laha en OPP. Bole, eindigde in een schandaal waar heel Nederland over praat. Klaas Notke, baren mee, bole, 14 jaar lang president van de Nederlandse bank meer. Chowda Barisra, of bole, kandidaat ra, voorzitter ra, centrale banken. Of gast ra, Tweebeek, mego, oma. Op het onderwerp ligt standaard inflatie, hypotheken en de toekomst van de Nederlandse financiën. Niemand had verwacht dat het gesprek zou ontarden in een ongekende confrontatie. Oh, ik heb bij mijn appel altijd herhaling bedikt bij jou. Ja, ik programma ook bij mij. Toen aap lo ko hem een giet zunane jatte he. Toen abhi hem aap lo ko... पास फिर वापस आ जाएंगे एक ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग है

और दोस्तों, जब जब तुमको देखा है रे छलिया, ये गीत आप लोग को हमने सुनाई दिया है। तो हम चलते हैं चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। अब देखो भैया, बेनर लंग से एक आदमी काम उम करके आयल की का करके आयल है और ओकर कोई पलवार जाने की शहर में मर गए रहा। तो बोले अब हम जाई डायरेक्ट का बोले मट्टिया में। अब मट्टी अट्टी में उजाई के अपन का बोले सब कारबार करके अब बोले अब हम फ्राई हो गए। अब हम जाई तरी एगो कैसीनो हो जाई भैया। तो एगो भैया गैल है मजे में एगो कैसीनो में, और ये कैसीनो में गैल है तो हुआ खेलत खेलत खेलत खेलत एगो बदराख जीतल है, एगो खल बदराख जीतल है। और जब जीतल है तो बड़ा खुशियाली में रमिया रहा भाई, खूब खुशियाली में रहा। न तुल तू जिले बाटे को 50 बरिस के आदमी बा। तो ये रमिया बड़ा मोह से गैल है तो बोले अब हम जाई तरी कुछ खाओ ली हम। तो गैल है एक दरी कुछ खा तो उतरा भैया। तो हुआ भेटान है एगो औरत के, और वो औरतिया हुए पे भैया हौसल करत रहा। जाने कौन हौसल हुआ तो हमें हौसल हौसल कर भैया रमिया के फंसाई से। तो रमिया के बोले अच्छा ठीक है सब कुछ मोई हो गया। रमिया दारू आ रही बीपी से भाए। तो अब ये के ले के गए है अपन दूसरा कमुआ करे तुरंत समझ गए ना। पलटन तिवारी वैक में एगो पेंशन है और गैल है पेंशनवा में। अदमिया टैक्सी शोफेर है, टैक्सी शोफेरवा 50 बरिस के अदमिया के और वो औरतिया के ले गए एगो

पेंशन में पलटन त्योहारी बैक में तब दोनों में भीतर रहा थे ये नमिया इतना गढ़ू काम करी से भाई की सूत गे वही पेंशन में सूद गए वही पेंशन में ही भैया सूद गए और लगाई भी रहा बस ये औरतिया कहाँ करी से जितना पैसा ही जीते फीते रहा एकर पजामा टांगल रहा भाई जेस पजामा रहा और एगो ताश रहा सब वही में ओकर का बोले है गाइडेंसी तेज कार्त रहा और खेल बद्राख रहा एगो बैगताश में और डॉक्टर्स कार्त रहा मोबाइल टेलीफोन रहा सोना केती रा सब लेके छोड़ी पेल भागल भाई पेल भागल है त आदमी ये जगल है तरीके के पजामुए ना है भाई पजामा मके जितना चीज सब इसे चुरा ली गई है औरतिया तो इस गनमी गल है नानिश करी से तस्कोतु गल है पेंशनवा में पलटन त्योहारी वेख में तो के बता इसकी दुई मिला ऐसे आयला ऐसे ऐसे समय पे तो पेंशन वन वाला सब के कहते ही नंबर हुआ लिखा है कि कौन ओ तो आवे कौन ओ तो जा है तो कहते ही के मुताबिक तो सिपाही जाई के और टैक्सी शोफेरवा के पकड़ी से वहाँ टैक्सी शोफेरवा और छोड़िया सम वैरक करत रहा और जाई के पकड़ी से गा का बोलेगा छोड़िया के और टैक्सी शोफेरवा के कैंती के नहीं से पाई से भैया और बतावे एडमिनिस्ट्रेशन फंड पेंशन ब्लीक द कैंती के फंड टैक्सी वार मेरे फरदख्त है ट्रेन फलित ओवर इन को मैं टैक्सी दी है ट्वीटल एर्दर ना रे पेंशन हट गब्राख द स्पोर लेडर द पुलिस De politie uiteindelijk naar de taxichauffeur tijdens onderzoek wist de politie een deel van de buik terug te vinden mensen. Auro Auratiake, Auro Ikepaige, Maki Sonoake Ketia Etia, Abena Paise, Ikerbare Meli Fornokis Bahi, 52-jarige taxichauffeur, Auro 25-jarige commerciële sekswerker zijn aangehouden op verdenking van beroving in een pensioen in de resort Livorno. De twee zouden een man hebben besloten bestolen. Van onder meer een groot geldbedrag en een mobiele telefoon en ziranen. Toe la tour pe gaila bhaiya. Kabule gok gaila gok kare. Na bij de kruising van la tourweg en Martin Luther's Kingweg mee. Waar hij volgens eigen zeggen aanzienlijk geldbedrag won mensen. भैया लतूर फतूर तो हम लोग न जाइला वही बेनालान के जुगा रहा हुई और वो गए भैया तो कर संगे ई दशा हुआ पे भैल है यानी कि लतूर पे अब देखो भैया मुंगो के दो सेंतन मुंगो टापू के दो सेंटर भैया हक कॉमिनी तेर दन बस लोग तक करे डायरेक्ट बारात में जाएंगे और बोले जब लिख हम लोग के पैसा ना आई भीतर स्कूल के ये फ्राउ में इस तलों बोले हम लोग काम पे ना जाबे और बोले देखा शाम लोग को अंदर वे इस बोन बोले वर्ष क्यों करे हैगा बोले एक्सामन वेरक्साम ही देन एक हफार कॉम एन एसन दा द रखेरिंग एन मिनिस्ट्री अंडरवेज वेटस्कपन एन कुलतीड ओपरस्टैंड वर्गुडिंग uiterlijk deze week betalen बोली हफ्ता हम लोग का पैसा ना दिए तब बोले हम लोग ना जाबे और समय पे लड़कन के एग्जाम के प्रयुदय है और एग्जाम बोले ना हुई पर बहुत बड़का हानि है और बोले हैगा बंधन बोले आप स्प्रेक करे हैगा एक्सिमिना तोरन के दो सेंटर ने मंगो टापू के कि यूनि में तो इसे फॉर लीडिंग सोडन सेन uitbetaal और बोले सही स्टेल echter dat deze afspraak niet is volledig is nagekomen. Oud ietsje joa, jab die regering waar buiten NDP ke bhaiya, tab je vrouw meestal een stakking kare he, de bootwaal stakking kare he, de busouder stakking kare he, sab koi apan paisa na paave he, te sab ke karek pare mense, de bonden voeren aan toe, akito au feina, u kabre koopkracht versterking ke paisa na paave he, dat is toch erg mense, mense moeten achter hun eigen geld gaan, die ze gewerkt hebben of waarvoor voor ze recht hebben. De bonden voeren aan dat tot nu toe slechts één deel van de gecommuniteerden in het betalingsproces is meegenomen. Obole Ikerbarem Onderwijs Bonden, Bole Volske BVL, also Doe HOS en VWP eisen dat uiterlijk 26 juni se pahile tjahin sepke paisa achterstallige betaling, paisa tjahin paanjaike en Obole Hega docenten van Mongo Tapuke baan चीत है जो मोंगो में काम करे मोंगो टापू में भैया तो ये बात
बात है, किस तकिंग वा के चीज हुआ। और बोले फिर आवेले इतना गरे में भैया कि सहारा के जो स्टॉफ है सर नाम बुड़ल है और यूरोपा भर में गर्मी है। सोचो भैया फो बोले है फर वाक करे है ऊपर वीकन वारम एंड ध्रुव को बोले सहारा के शांति पुरुर के यहाँ आवे है मैक्सिमम टेम्परेचर जैसे 32-34 सेल्सियस द कॉम्बिनेशन फन हुके टेम्परेचर एंड हुके लुफ्टफोक्टेड साल है आंशिक वार्म अनफुलन मेंसे। तो ये बात है गर्मी पाकिस्तान उधर भैया अलार्म करी से अपरे के अलार्म करी से पाकिस्तान कौन ची खातीन बोले फरमुद बोले मुखलग बोले फिर द अख्तर इन फोल्खंद यार में बोले जबर बरखा पड़सीगा ओफर स्ट्रूमिंग हुई देसुआ में बोले रंप बहेसिंग ऑथोरिटेटन अतवार के अलार्म करी से करबाने में कि का बोले पाकिस्तान में उतना बड़का ऊपर स्ट्रूमिंग हुई बोले बहुत बड़का ऋषि को है बोले केक बोले मैंने नाम कबीदन हुंसा एंड सर सर सर स्कार्डू ब बेरख्त अख्तख खिलित बाल्टिस्तान इन प्रोविंसी और बोले वार्डन आज मिस क्वेस्ट बार बस्काउट तो पाकिस्तान के लोग जो वहां पे है सबके रखेलिंग अलर्ट करी से और बोले हैगा 2022 में इतना बड़का ओवरस्ट्रूमिंग भइल है जहाँ पे 1700 आदमी मरल हाँ एंड मेर दन देर तक मिलियन ऑन हिंदन हाँ। और बोले टेम्परेचर बतावे है इतना जबर चढ़ी 8.5 ग्राद सेल्सियस हो जाएगा पाकिस्तान में और पाकिस्तान बोले हेस्फेस ऑनफेयर 13,000 ग्लेशियर से होस्ट अंतर बैठन द पोल खबीदन और बोले ऑनफेयर 7.1 मिलियन मेंशन वोनन इन नाबे ऑनफेयर मेंशे और यहाँ पर बहुत बहुत लंबा चौड़ा निकल है। तो जितने लोग पाकिस्तान के यहाँ है आप जरूर अपने परिवार से वहाँ कॉन्टैक्ट करना। द राम 2022 में बोले हैगा 11 मिलियर्ड डॉलर के हुआ बोले तू सेकिंग रहा अन हेल्प ओम दो नॉर कॉन्फ्रेंसी इन जिनीव इन 2023 वाज मेड यू 2005 एंड स्लेख ऑनगेफिर 4.5 मिलियर्ड डॉलर के बातचीत रहा हुआ हुई भैया। ये है पाकिस्तान का यहाँ पर हुआ के बारे में आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों तालिबान तुलन जानो है तालिबान एगो बड़का डेली खाद से लेके जा है ब्रुसेल बेल्जियम में भैया एगो ओवरलैक है ईयू से बोले हैगा मेल्डन मेर्डन मीडिया डिस्टन यूरोपीय कमिशन बोले है तालिबान के बोले हैगा ऑफ आमतलक निफो और गस्प्रेक साल फोरन बोले कान है बसुक नोक नीत बफेसखन बेल्जियम मांगते सो मार्क बकेन करी से कि 5 इंडाक्स वीसा हट अफगेवन फॉर एन डेलीगेशन बोले 5 रुचियों सबके वीसम खाली मिलल है एगो डेलीगेशन लेके बोले आवे के और बोले हैगा अन ब्रुसेल में बोले कमिशन इज अ लंगर इन खसप्रक अफगानिस्तान से रहीम से बोले मुखलक तरह के फन असिल सुकर जो असिल सुकर सेगा बोले उस सबके तरह जाए के बोले डेलीगेशन फन दाखले के बस्ती फन एयू रेज दैट बिगिन दिस ईयर ओक ऑफ नॉर अफगानिस्तान बोले हैगा यूरोपीय से लंदन बोले यूरोपर से पार्लियामेंट से जेर क्रिटिस ऑफ अन बसुक फन वर्तेगनवोर्डगन फन व्रीडर रखिंग फन यूरोपीले अन यूरोपा पार्लियामेंटारिया और बोले हैगा D66 नूमत हैं बसुक अन क्लब इन एक शेक एन एन नीदरला फॉर अंडरवार्डन फरांतवोर्डलके इकोनॉमिज़ारेशन और बोले सब अन्ना मांगे हैं तालिबान के। दोस्तों मैं खुद सकूम वेलनार बेल्जियम ब्रुसेल में तो हमारी जनता ये सब बात एक बयार्द औरत भैया सुरीनाम में ओके सब हंसे इवन से इवन तक या रखे और ओके जे फरसौरख करत रहा तू इन देर तक या रख फरसौर कर सब के इस सब घर में रांध के कोलो निस्तन वेख में और रूफ ओवर फाल भैले दोनों के छोड़ी पिस्तौल दिखाई के और सेफन से इवन तक यार के बयार्द और ओके फरसौर के सब लूट के चल गए भैया। यहाँ बताए दे क्रिमिनल
juwelen gingen er uiteindelijk vandoor met de portemonnee en twee paar oorbellen. Na de roof verlieten zij woning en verdwenen onbekende richting. Toen zelf bejaarde Kisapuachorna, Toribaya, en dat is een Suriname mensen waar dit soort dingen is wel gebeurd. Hoofdwijs olieinkomsten zijn geen garantie voor welvaart. Ihega hamelijke hoofdwijk jorraha. O hardem demonstreer kertraha. Kertus hoofdwijk bole hega. Aur u op een pro met ze me niet kerge he dosto. Aapke bataye he. Ab ya bole actuele maatschappelijke en politieke situatie bole he. Bole telwa jon hamelijke nikeriga eker matem na ki deswa. Hamelijke probleem met ze nikar dei. Bole olieinkomsten geen automatische garantie voor welvaart. Bollehega, een belangrijk onderdeel van het gesprek ging over de verwachte ontwikkeling van Surinaamse olieindustrie. De sector wordt door velen gezien als een mogelijke gamechanger voor de Surinaamse economie, maar hoofdweg waarschuwt voor te veel en euforie. Dat is een moeilijk woord gebruiker. Nikar. John Hamare Janta bhi na samaj paaye. Waarvan een makkelijke taal ook makkelijk kunnen zijn. Oh, is ze bij poetje. Een moeilijke taal. Dan moeten ze in de woordenboek gaan zoeken mensen. Maar dat is weer iets anders. Van de Xerox Week erbaren mee bolen. Ondanks olie en gas zullen we zonder lokaal contin beleid straatarm blijven. Bolen hamlo straatarm rabe. De ko Guyana moet er teel niet kreeg. Maar toch gewoon op een garib taai. Je bent tak he. Hamare janta. Or is op Suriname. Ke en milon agore. Ki kap telwa niet kreeg. Natuurlijk. U sap soche. He ke chijua mooi hoi. Ab de ko bhaiya. Sant Lauren. Aap loon jane. Albinam to. Fair boat. Habada hove he. Or hua ke nieuwe. फिर वो 5 सितंबर में शुरू करी मोई से चले के और बोले हैगा जोन हबड़ा हुए है साउथ लॉरेंस ने अने बोले हैगा अल्बिना से फलोप कंपन मैंने एरस्टक बपेर की और एको हैडो का फिर बहुत हैगा लाका ब्रिल 18 यूनि बेटन गब्रेक हो गए है आज को फॉलो फन एंड इफेक्ट ऑन द हाइड्रोलिक्स पंप तैलक तगलाइकटेन हैव द सुरिनामसे हाफन अथॉरिटीटेन फास्ट gesteld dat de drijvende aanlegsteker aan de zijde van Albina zodanig is verslechterd dat deze niet langer veilig kan worden gebruikt. Hierdoor zijn de reguliere afvaarden voorlopig opgeschort mensen. Op pas september met Nauka Botia Chaliga. Ik erbari mee hoop is gevestigd op de tweede veerboot Malani die momenteel onderhoud en technische voorbereiding ondergaat. Voorafgaan aan de ingebruikname zal eerst een testfase van ongeveer een maand plaatsvinden. De officiële gebruiksname staat gepland begin september mee. Hamari, Piari, Piari, Mita, Mita, Janta. Kelie, je baant hem aapko batante hain. Saat Mila ke arrestasi pakdi se drugs ke baare mein. Saat Mila ke pakdi se bhaiya narkotika brigade. Bole hega Saat go arrestanse team opgeroepen voor verhoor. Verband met mogelijke onregelmatigheden. 82 kilo cocaïne. Twee voertuigen. Betrokken agenten worden verdacht van deelname aan criminele organisatie. Aure Saat Mila ke pakdi se jama 10 go sipahi be hai. Advocaat Vera bevestigt desgevraagd aan de redactie van de Waterkan. Bolle he, het zevental zal voorhoor is aangehouden. Sipahi pakrisse sipahieke. Dingo sipahi pakrane verzeker gesteld. Eveneens verdenken van overtreding van vertovende middelen. Deelname te sipahi sipahieke pakrisse bhaiya. To hamare Suriname je baant hier. Bala Argentinië bhaiya. Aur een van de hier pe bataye gaye he. Messi ke bare mein. Weka top scorer hega aller tijden met 17e treffer. Aur Messi bhaiya abbe tak hega waarvan Ronaldo is ook gezaakt. Lionel Messi heeft een geschiedenis geschreven mensen. Argentijnster speler maakte in de groepwedstrijd tegen Oostenrijk zijn 17e 18e VK doelpunt. Is daarmee alleen recordhouder als topscorer aller tijden op het mondiale eindtoernooi ke bare mein. To Messi is nog steeds de sterkste man om te scoren mensen. To ye baat hai ego mila ke sniper bhaiya
कोनो सनाई पा है सिपाही ओके खोजत रहा ओके पकड़ी से यहाँ पे दिखावे है ससन दर तक यारख सिनांगो बे बकेत आसनाई पा सोमार के संजा के पकड़ी से सामन में तुए अफकातन अनखमेल बेरे युग पुलिसी सुरिनाम शशाल मीडिया फिगुर वेट आल एंकले दागन दो पुलिसी गसोग इन सेदन सागन एगो मिनderjarige लड़की के बारे में ना द आयलिंगे werd hij verhoord en voorgeleid in overleg met de Surinaamse OM Dosto. To aapko ye geet hum yahan sunate hain.

तो इसी गीत इस गीत से हम आपको अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। एक घंटा हो चुका दोस्तों, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भरी राम। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

और यहाँ से कुछ मिली जुली पुरानी और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों, और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे, और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या श्रीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो, और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए, कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी, और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्तों।

0: कहां।
1: कोई बता दे ये दिल है यहाँ और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्राज के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली, मैं चली, और कहाँ चली, आप तो अपने जानते कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है, कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आपके दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है, तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेंगे। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों, कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आपके साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम की ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नई खतीन 5x5 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहाँ, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

मेरे हम सफ़र हो मेरी हम सफ़र, लता मंगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बई नेहा इन फिर सस्ता का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई नेगेटिव 64 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं। और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता के और हम बढ़ते हैं। जो भी महबूब मेरे के गाना है पत्थर के सनम नेगेटिव 64 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: Film पत्थरिकासनम पत्थरिकेसनम नई खेती सीफनेस एसिस गाना को हमने निकाला है जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथ ही लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है।

जिसे पद पे चला उस पद पे मुझे मुझे लता जी फिल्म के नाम है यादगांठ से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार, उस दिन ये आंखें क्या होगा। सुनने वालों, आपने खुद ही सुना है, हम चलते हैं, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में शमाई है। और ये फिल्म, ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे, मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और होल्डर बिरमन के साथ में और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

होता सुन लो, आप लोगों ने तो खुद सुना है हमारे दोस्तों। और कहते हैं कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा के देखा है, हमारी बात सुनो दोस्तों, कि तेरे ख्याल से खुद को छुपा कर देखा है, दिल को नजर को रुला कर देखा है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं तेरी कसम, तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम, मैंने खुद कुछ पल तुझे भुला कर देखा है। और कहते हैं इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून, इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून, तुम रखो कदम जहां खुदा करे मैं वहीं जमीन बन जाऊं। तो हम जाते हैं दोस्तों, और एक प्यार भरी गीत तुम्हारी नजरों में हमने देखा है, कल की आवाज नहीं हिंदी ट्विन्स का ये फिल्म है, और रोहित बच्चिया और प्रतिभा सिन्हा का ये गीत है, आओ मिलकर सुना जाए।

0: झलक रही है।
1: तुम्हारी नजरों में हमने देखा और प्यार में तो एक से एक चीज झलकती है दोस्तों। कभी दांत झलक देते हैं तो कभी आंख में से आंसू गिर जाते हैं। प्यार में बहुत चीज झलक देते हैं कि कहते हैं हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, हम आपकी हर चीज से प्यार कर लेंगे, आपकी हर बार पर ऐतबार कर लेंगे, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मेरी हो, हम जिंदगी भर आपका इंतजार कर लेंगे। दोस्तों प्यार में ये सब तो होता ही रहता है ना, कि कहते हैं नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम की मैं इश्क के जहर का आधी हो जाऊं। तो हम जाते हैं, वो लड़की बहुत याद आती है, फिल्म का नाम है कयामत, अलका जी और कुमार शानू सोनू निगम, जिसमें काम किया है अजन देवगन।

और ये लड़की बहुत याद आता है, और ना सिर्फ लड़की याद आता है दोस्तों, लड़की को लड़का भी बहुत याद आता है, और लड़की को जब लड़का याद आता है तो क्या कहते हैं, लड़का कहते हैं कि तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, तेरे प्यार पाने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, और उस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। दैट वाज जोक में से प्यार करने वालों के लिए, लेकिन असली बात ये है, हमने सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हमें सीने से लगाकर हमारी सारी कसक दूर कर दो, हम सिर्फ तुम्हारे हो जाए, हमें इतना मजबूर कर दो। तो ये प्यार भरी पैगाम, प्यार भरी मोहब्बत भरी गीत हम आपके लिए चलाते हैं, और नेखंत इंद्रिय से इवंत की ओर हम जाते हैं। फिल्म के नाम है ब्लैकमेल किशोर जी, और क्या कहते हैं कि हमारे दिल के पास आप हो, पल पल दिल के पास।

पल पल दिल के पास और तुम रहती हो, और दिल के पास तो रहना चाहिए हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे मोहब्बत भरी। और लोगों की कहते हैं बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, बहुत खूबसूरत हो तुम फूल की तरह, खुद को दुनिया की नजर से बचाया करो, खुद को दुनिया के नजर से बचाया करो। सिर्फ आंखों में ख्याल ही काफी नहीं है, ख्याल में नींबू मिर्ची भी लगाया करो। और प्यार लोग जो प्यार करते हैं उसके लिए भी हम यहाँ पर कुछ लेके आया है। और कहते हैं आई सनम काश मैं भी पानी की एक घूंट होता, आई सनम काश मैं भी पानी का एक घूंट होता, तेरी लबों से लगता, तेरी रग रग में समा जाता, और तेरी चुनरिया उड़ जाते तो हमें कैसा लगता, आप खुद ही सुनिए।

और तेरी चुनरिया क्या हुआ भैया, उड़ गया है कि मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा है दोस्तों, मैंने मोहब्बत को तो नहीं देखा, पर लगता है ये तेरी जैसी होगी। मैंने चीखी है बहुत मिठाइयां, पर मुझे क्या पता था कि तेरी होंठों के लिपस्टिक उनसे भी मीठी होगी। तो जे कोई लिपस्टिक लगाए भैया ओके तो पता होगा कि चिजवा कैसे है। और कहते हैं किस्मत या मेरा इम्तिहान ले रही है, किस्मत ये मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया है दोस्तों, पर क्यों बेवफा को वो इल्जाम दे रही है। और जब कोई बेवफा होता है दोस्तों तो ये गीत आपको सुनना चाहिए। तो यहां पर हम चलते हैं निघति निघ्न निघन तक का ये गीत।

0: और चाहा है तुझको और चाहेंगे हरदम। उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल फिल्म के नाम है मन नेहन तीन होंदत नेहन नेहन तक कहा दोस्तों। और कहते हैं किस्मत जा मेरा इम्तिहान ले रही है, तड़प कर ये मुझे दर्द से रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफा को वही इल्जाम दे रही है। हमारे दोस्तों और प्यार भरी गीतों का और यहाँ पर हम चलाते हैं कि प्यार का अमहता एहसास दिलाने लगे हो तुम, अब तो मुझसे मुझे को चुराने लगे हो तुम, तेरी चाहतों का गया है जरूर इस कदर, हर पल हर जगह नजर आने लगा हो सिर्फ और तुम, कि अजनबी मुझे इतना बता प्यार तो होना ही था।
1: सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
2: बस हार गई, अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

अजनबी मुझसे मुझको इतना बता, और अजमी अजनबी आपको क्या बताएंगे। अजनबी जो है वो आंख में देख को प्यार हो जाता। दोस्तों आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगी, और इस फिल्म का नाम है दिस लव सॉन्ग, और ये है फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था, और अजय देवगन काजल ने इसमें काम किया है, उदित नारायण का गाया हुआ ये गीत है हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों की। कहते हैं तेरे खामोश होठों पर मोहब्बत गुनगुनाती है, तुम्हारी खामोश होठों पर मोहब्बत गुनगुनाती है, तो मेरी है और मैं तेरा हूं, बस यही आवाज आती है। उस लड़की पे दिल आ गया है दोस्तों, कुमार शानू और नाइटिंगेल लता मंगेशकर, दिया मिर्जी, अनुराधा पौडवाल।

उस लड़की पे दिल आ गया है दोस्तों, और कुमार शानू ने दिलगी लता जी और इस गीत को सुनाया है दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है, और अगला गीत से पहले दोस्तों हम जाते हैं रे कलाम की ओर। हमारे प्यारे दोस्तों, मोहब्बत भरी रात है और मोहब्बत भरी रात में प्यार भरी गीत बहुत अच्छा लगता है। तो हम जाते हैं, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, देखा तुझे तो हो गया दीवाना, आओ मिलकर सुना जाए, देखा तुझे तो हो गया दीवाना।

देखा तुझे तो हो गया दीवाना। और दोस्तों हम अपना प्रोग्राम को और आपको बता देती है दोस्तों, हम रेडियो फाहून के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यू टोंस्ट्रात न्यूमरो 25 और दरहाक शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं दोस्तों। अगर आप रेडियो फाहून के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोख लिखाई थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एथर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहून के प्रोग्राम सुन सकते हैं www.fm.nl।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बस हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों। और ये है लता जी, इसका गाना इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म, जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेक ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था।
2: क्या
1: मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुराने गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उस देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, अगर जो आप मुकेश के सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में। क्या होता है इशारों इशारों में, तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 55 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 5/5 तक का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाना में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानू राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुरानी गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: गाना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानू राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा का उषा किरण फिल्म का नाम है। पतिता का ये फिल्म है, दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरे को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सीफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहते कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

और तेरे चेहरे में, तेरे चेहरे में क्या है दोस्तों, और तेरे चेहरे में वो जादू है, और वो जादू है दोस्तों कि तेरे चेहरे दिखते दिखते और जैसे कोई डोड़ ततई घिजाए जा है, वैसे हम ऑटोमैटिक स्टोरी अगर हम घींच कर चला आते हैं तो वो चेहरा में क्या जादू है दोस्तों कि बिना किसी मुसीबत से और जाकर और खींचा जा जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं आपकी आ जाने से क्या होता है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम दोस्तों, और आपकी आ जाने से क्या हो जाता है, मोहम्मद अजीज साधना सरगम का गाया हुआ ये सॉन्ग है, फिल्म के नाम है खुद गर्ज, आओ सुना जाए। इसमें गोविंदा काम किए हैं हमारे दोस्तों।

0: फॉर मोर एंटरटेनमेंट।
1: और आपकी आ जानी सी क्या क्या हो जाता है, फिल्म के नाम है खुद गर्ज का, ये जोंग है हमारे यारो। और उसके बाद तो हम प्यार भरी गीतों का प्रोग्राम लेकर और आगे को चलते हैं कि यहाँ पर बताएंगे जाने क्यों लोग, क्या आपको मालूम है कि लोग क्यों मोहब्बत करते हैं? अगर जब मालूम होगा तो आप लोग हमें बता सकते हैं तार करके। और हमारा सीडियो की नंबर है 07 3 20 07 7। अगर ये मोहब्बत क्यों लोग करते हैं और क्या आपको भी मोहब्बत हो गया है, अगर ये हो गया हो और नहीं होना है तो बताना। फिल्म के नाम है महबूब की मेहनी नाइटिंगेल, लता मंगेशकर का ये गाया हुआ सॉन्ग है।

और जाने जाने क्यों लोग मोहब्बतें और किया करते हैं। और आपको अगर ये मालूम होगा कि किस लिए लोग मोहब्बत करते हैं तो हमें आप लोग बतला सकते हैं। उसके बाद हम जानते हैं ये है यानी कि लता जी इस गीत को गाए, फिल्म के नाम है महबूब का मेहंदी। महबूब का मेहंदी नाइटी गील लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है। उसके बाद हम एक बार फिर चलते हैं फिल्म धर्मात्मा की ओर, आओ सुना जाए।

क्या तुमने भी किसी से प्यार किया है? और अगर ये प्यार किया होगा तो हमें आप लोगों ने जरूर बताना कि कौन सा प्यार आपने किया है हमारे यारों, और अगर जो किया है तो हमें जरूर बताना। उसके बाद हम चलते हैं एक और सॉन्ग की ओर कि अगर ये आपको दीवानगनी होता है, दीवानगनी होता है तो दीवानगनी कब होता है? जब बहुत बहुत मोहब्बत हो जाता है। फिल्म के नाम है दीवाना, दीवाना फिल्म का नाम है, नीखन दिन तुई नीखन तक का ये फिल्म है, और शाहरुख खान, दिव्या भारती इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुना जाए।

और ऐसा दीवांगनी और दीवानी किसका होता है, ऐसा दीवांगनी। और दोस्तों शाहरुख खान इस फिल्म में देविया भारती सिंह काम किया है, और अगर परदेसी के बाद जो हो जाए तो परदेसी से दिल लगाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं परदेशियों से अगर ये अखिया लड़ाना है तो ओमा कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन बुरी बात ये है कि अगर जब परदेसी को जाना पड़ेगा, जब अगर परदेसी को जाना पड़ेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम तो आ जाएगा ना यार राजा, कि अब तो सोचना है कि वो परदेसी कब आएगा, फिर से लौट कर वो कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ तक हम आपको कुछ परदेसी की बात बताते हैं कि परदेसी के गीत हम आपको सुनाते हैं।

और परदेसियों से अखियां मिलाने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, लेकिन दिल थाम कर रखना अगर जब परदेसियों को जाना है तो हर किसी को ये सब प्यार कहाँ होता है दोस्तों, सिर्फ नसीब वालों को होता है। श्रीदेवी फिरोज खान इस फिल्म में काम किया है, आओ मिल के सुना जाए कि ये क्या है।

और हर किसी को, हर किसी को कहाँ प्यार मिलता है इस जिंदगी में दोस्तों, सिर्फ नसीब वाला को, नसीब वालों को यानी कि सच्चा प्यार मिलता है हमारे यारों। और उसके बाद हम चलते हैं एक और गीत हो जाए, वो कौन सा गीत है, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, दिल लगाकर चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, मनहर उदास का ये गाया हुआ ये सॉन्ग।

और फिल्म कुर्बानी का, फिल्म कुर्बानी का निकाला हुआ ये सॉन्ग है, जिसमें विनोद खन्ना सीने तमन्ने काम किए है, मन हर उदास का ये सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाए हैं, बहुत मोहब्बत भरी प्यार भरी सॉन्ग है। इसके बाद हम और चलते हैं फिरोज खान हेमा मालिनी की ओर, आओ सुना जाए।

क्या खूब लगती हो और बड़ी बड़ी चमकल लगती हो। ये एक लव स्टोरी सॉन्ग है, फिल्म के नाम है खलनायक पलकी में होके सवार चली रे अलका याग्निक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने काम किया है। आओ सुना जाए इस गीत को।

फन होम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन अयुमान पर्सनैलिटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ा गया भगवान नीलिम्ब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया। 7 सितंबर 1921 को चैफिन का देहांत हो गया और पहली वसीयत के अनुसार जायदाद तीसरे बेटे को मिल गई। जून 1925 में चैफिन की आत्मा ने दूसरे बेटे को स्वप्न में बताया कि बाद वाली वसीयत ओवरकोट में रखी बाइबल के भीतर रखी है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जायदाद चारों भाइयों में बांट दी गई। सुनने वालों, देखो अभी आपने सुना कि एक परिवार के स्वप्न, तो कि उनके पिताजी ने कैसे वसीयत बना के रख दी एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को स्वप्न आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अब नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाई आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाई आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है, बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, स्वप्न विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछें भी हो सकती हैं। सुनने वालों, समूची मूछ, शुभ, धन, धान्य, दूध, दही, सवारी, ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ, विजय, बायां भाग कहा सुनी, झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है। सुनने वालों,

तालू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दायां भाग रोग से परेशानी, तालू का बायां भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले। कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले। कंठ का ऊपरी भाग स्वर्ण माल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में। स्वप्न कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है, हरा रंग धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग, दुर्भाग्य, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातुओं में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम, कि हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आए तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि कपिल, आस्तिक का स्मरण कर लें। सोते समय व्यक्ति यह शावर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वास्थ्य प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दें तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता, सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गियाना के क्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाब कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्या को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

फल प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एक का स्वपन विलंब से फल देता है, दो तारीख का स्वपन विपरीत फल देता है, तीन तारीख का स्वपन विपरीत तथा विलंब से फल देता है, चार पाँच तारीख का स्वपन दो मास से दो वर्ष में फल देता है, छः सात आठ नौ दस तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है, ग्यारह बारह तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है, तेरह चौदह का स्वपन फल मिथ्या देता है, पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है, कृष्ण पक्ष की एक तारीख का स्वपन फल मिथ्या, दो तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, तीन चार तारीख का स्वपन फल मिथ्या, पाँच छः तारीख का स्वपन फल दो माह से तीन वर्ष में, सात तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, आठ नौ का स्वपन फल विपरीत देता है, दस ग्यारह बारह तेरह तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, चौदह तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

सुनने वालों, हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो, तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

खेतवा के पीछे रहती थी नानी, रोज रोज गगरिया में भर लाती थी पानी। एक रोज मुझे नानी से मुलाकात हुई, मैंने नानी से मांगा एक गिलास पानी, नानी मुझे छुटकार दिया। हमारे घरे कारज परोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज परोसिन भाई नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, हमारे घरे शादी परोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज।

से मीनी को तो होइगे तीन खेलो सब आज हमारे घर कारज परोसिन भाई नाराज न होइए हमारे घर शादी परोसिन भाई नाराज न होइए नाराज न होइए जी नाराज न होइए नाराज न होइए जी नाराज न होइए हमारे घर शादी।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा कि हम सब कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर हमारे साथ आज फिर सहयोग दे रहे हैं शांता जी, और शांता जी से आग्रह करूँगा कि कुछ कहे फिर आगे बढ़ेंगे। और बबली जी भी आज स्टूडियो में उपस्थित है, तो आगे का कार्यक्रम हम सब धीरे धीरे उस ओर बढ़ेंगे।

करम कर जिक्र ना कर, शुक्र कर फिक्र ना कर। इसी वाणी के साथ शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। प्यारे सुनने वालों, आज के ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में जैसे हमारे साथी संजय जी ने कहा, हमारे साथ भी उपस्थित हुई है बबली जी। बबली जी,

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है।

0: शांता जी, क्यों ना हम सब हर सप्ताह के तरह और जो गीत चलाते हैं कि जो सुनने वालों अभी और कार्यक्रम को सुनने के लिए तैयार हुए हैं और
1: आगे बढ़ने से पहले आज तो बताओ कि आज के कार्यक्रम कैसा है।
0: आज का कार्यक्रम कैसा है?
1: हाँ,
0: तो ये तो अभी यहाँ प्रोग्राम बनाकर रख दिया गया है। क्यों ना बबली जी उसके बारे में बताते कि आज का विषय
1: क्या है।
2: आज का विषय है निरोगी काया के लिए घरेलू उपाय।
1: अच्छा,
0: निरोगी काया के लिए घरेलू उपाय। तो दोस्तों, आज के बड़ा मजेदार और विषय रखा गया है। अभी उस ओर हम सब छलांग लगाने वाले हैं, पर उस ओर बढ़ने से पहले क्यों ना हम वही गीत जो हम सब हर सप्ताह सुनते आए है कि जो उदास मन वाला है उसके बारे में हम सब सुनते हैं और फिर कार्यक्रम

तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े। तो शांता जी, जैसे कि आज का और हम सब अभी सुन चुके हैं कि आज का विषय है कि निरोगी काया के लिए घरेलू उपाय, तो इसका इसमें कुछ आप और कहना चाहेंगे कि इसका शायद निरोगी काया के मतलब लोग ना समझ पाए, पर ज़्यादा तादाद में सभी जान गए कि इसका मतलब क्या है, पर इसे थोड़ा से और हो सके तो आप निचोड़िए।

0: निरोगी मतलब खसोंद, नीदरलैंड्स में कहते एकदम खसोंद। निरोगी काया, काया देह के कहते बदन को, ये शरीर को काया कहते, तो खसोंद लेखाम।
1: बबली जी भी इस पे कुछ और दृष्टि डालना चाहते हैं।

0: शांता जी ने बिल्कुल ठीक बोला है, निरोगी जिसमें कोई रोग ना हो, निरोगी काया। और घरेलू उपाय कि घर में ऐसे उपाय जो हम घर में कर सकते हैं।
1: तो हम अभी उस पे उस ओर बढ़ने वाले हैं जरूर, पर घरेलू ये निरोगी काया इस पे जैसे कि आप लोग दोनों ध्यान दिए हैं कि काया के मतलब है जो पांच तत्वों का बना हुआ ये शरीर हमारा,
2: ये शरीर जी,
1: और उनके लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं उन्हें तंदुरुस्त रखने के लिए।
0: हाँ जी,
1: सिर्फ हम सब जो हमारे पास जो विषय के बारे में खोज के रखा गया है कि उस पे ही ध्यान देना है, और आगे हम लोग के लिए, हम लोग के ये काया के लिए इसमें कोई प्रकार के परिवर्तन होने वाला है या कौन प्रकार का संदेश है आज
2: जो यहाँ से आज हम बताएंगे, तो आप इससे जरूर से सुने और हो सके तो भी इसे आप भी प्रयोग करें। अगर आप प्रयोग करेंगे तो इसमें आप सुधार देखेंगे, बदलाव आएंगे, और फिर आप भी जैसे अपना जीवन भी गुजार रहे हैं डॉक्टर के अनुसार और अपने चेतन के अनुसार, तो उसमें भी आप थोड़ा से इसमें देखो क्या आपके लिए लाभदायक है इसमें।
1: शांता जी बहुत सुंदर रूप से जो अपना और संदेश हम सबको सुना रहे हैं कि ऐसे आप कैसे इस ये तेमा से कैसे आप अपने को और यानी कि इसमें से कौन प्रकार के लाभ आप उठा सकते हैं, जरूर इस पे हम सब घरेलू, सीधा लिखा गया कि घरेलू उपाय। ऐसे पहले सरनाम में हम सब रहते थे शांता जी, तो जितना आजकल हम सब डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, पहले तो ऐसे नहीं होता था ना।
2: ना पहले तो ऐसे सूरीनाम में जैसे ना हम खेत में रहते थे, अगर कटलिस लग जाए या कट जाए ऐसे कुछ भी चीज़ ऐसे, तो आप जानते हैं मोको उसका खोरोच के और कर को जो है ना मोको का पेड़ जो है,
1: हाँ जी,
2: उसका खोरोच के और जहाँ पे कटा हुआ है ना जो घाव है उस पर रख कर और बांध देते थे,
1: और तो, फिर जब घास काट रहे थे तो फिर घास आगे काटो।
2: हाँ, और वो जल्दी से अच्छा हो जाता था
1: ऐसा।
2: हाँ
1: तो दोस्तों आज अभी हम सब ये घरेलू बातें कितने और भी सुनेंगे, पर बबली जी भारत में कैसे होता था, क्या वहाँ पर जैसे कि जुखाम बुखार लग गया तो सीधे डॉक्टर के पास चले जाते थे, पेट में थोड़ा सा दर्द है तो सीधे डॉक्टर के पास, या घरेलू और उपायों को प्रयोग किया जाता था?
0: पहले तो गांव वगैरह में नीम हकीम होते थे, वैद्य वो इलाज करते थे, डॉक्टर कहाँ थे पहले भारत में, और बाद में शहरों में डॉक्टर ज़्यादातर आने लगे, तो फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। अगर जुखाम है तो हमारी मम्मी बस विक्स लगा देते थे, हो गया, और कुछ कट गया तो हल्दी लगा देते थे।
2: देखो वो भी हम सिरनामे मोको खबर कर रहे हैं, देखो भारत में हल्दी।
1: हाँ, तो इस प्रकार से दोस्तों अभी और जानकारी हम सबको मिलने वाले हैं। पर शांता जी ये तो मैं देख रहा हूँ आज जैसे कि पिटारा साज भर के लाए हैं आप सुंदर सुंदर गीतों, तो ये अपने निरोगी काया के लिए आप तो हम सबको भी एकदम नौजवान करने वाले हैं।
2: यही तो हमारा लक्ष्य है,
1: ये हमारा लक्ष्य है, ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य यही है कि कुछ ना कुछ हमारे जीवन में जो जोत चल रहा है तो उसमें और प्रकाश आवे। क्यों ना हम सब पहले एक झलक देख लेते हैं तो फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा होवे या आप ही बोलो शांता जी?
2: नहीं, आप जो शुरुआत कर दी तो उसका भी अंत करो।
1: दोस्तों हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ते हैं, तो फिर हम सब अभी काफी जानकारी है निरोगी काया के लिए और घरेलू उपाय हम सब अभी आपसे और सब यानी कि ये संदेश को बांटने वाले हैं। आप बस जरूर कार्यक्रम के सुनते रहना और देखेंगे कि शांता जी कौन कौन सा सुंदर सुंदर गीत को लेकर आए हैं, उसे भी हम सब

0: तो दोस्तों, हम सब कार्यक्रम में जोर तोर से इस समय जो आज का विषय है, तो हम सब उसके बारे में चिंतन भी हो रहा है कि कौन कौन बातें होगा और ये सुंदर काया को जो हम सबको प्राप्त हुआ, ये सुंदर शरीर को हम सबको प्राप्त हुआ है, तो घरेलू सामान हम सब यानी कि जो घर पे आप प्रयोग कर सकते हैं तो क्या क्या है। हमारे साथ हमारे भाई भी जुड़े हुए हैं टेलीफोन पे और ये भी कह रहे हैं कि भाई ये ना भूलियो कि पहले सरनाम में शांता जी बोले कि खिल्ला गड़ जाता था।
1: हाँ?
0: खिल्ला गड़ जाते थे और कहीं पे और यानी कि जोंची इन्फेक्सी हो जाता था तो बोले बलाका तेई
1: ब्लाका ते। हाँ,
0: ब्लाका तेई से भान देते थे और उसे और जा करके कोई क्लेम के इंजेक्सी आदि नहीं लेना पड़ता था।
1: वाकई में अभी बत्ती जार करता था।
0: बत्ती जार, ये सब अब शुरू हो गया है सुनने वालों कि कौन कौन सा हम सब घरेलू सामान किया और करते थे। पर बबली जी, आप हम सबको कुछ और संदेश देने वाले हैं जिसे हम सब के लिए जो जानकारी लेकर आए हैं, तो पहला वाला आपकी ओर से क्या है?

0: पहले वाला मेरी ओर से है आंवला।
1: आंवला तो ये क्या चीज़ होता है बबली?
0: आंवला एक प्रकार का फल है, उसका अचार भी बन सकता है, मुरब्बा भी बनाते हैं। मुरब्बा मीन्स उसको मीठा बना के रख देते हैं, वो एक दो साल तक चलता है, उसे मुरब्बा कहते हैं। और जो आंवला होता है उसको उबाल के अचार बनाते हैं, वो उसी टाइम खा सकते हैं।
1: आंवला इसे किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये मिलता है हॉलैंड में कि नहीं?
0: पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल जितने भी इंडियन शॉप है सब में मिलता है आंवला। हरे रंग का होता है, छोटा सा,
2: जैसे ओलाइव।
0: ओलाइव तो मीठा होता
2: नहीं,
0: है
2: नहीं, जैसे ओलाइव।
0: हाँ जी, ये थोड़ा खट्टा।
2: हाँ,
0: थोड़ा
2: खट है इसमें, बहुत खटास है।
0: हाँ हाँ हाँ।
2: पर दिखता है जैसे ओलाइव।
0: हाँ, ऐसे गोल गोल
2: गोल गोल।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो इसे कैसे, जैसे कि आपने कहा अचार और कुछ और बना,
0: मुरब्बा
1: मुरब्बा मुरब्बा
2: मुरब्बा अगर जैसे बबली ने बताई, जैसे स्टोफू केरसी ना।
1: ओ, स्टोफू केरसी जैसे हम लोग करते थे सुरीनाम में।
2: सुरीनाम जैसे स्टोफू केरसी मोपे ऐसे स्टोफू करके, तो भारत में कहते हैं मुरब्बा।
0: सही बात शांता जी।
1: तो उसे मुरब्बा कहते। तो दोस्तों ये भी जान लो कि मुरब्बा क्या चीज है, और वैसे नाम तो बड़ा है पर वही स्टोफू है जैसे हम सब जानते थे सुरीनाम में, कि स्टोफू मोपेई, स्टोफू केरसी, और क्या स्टोफू किया जाता था शांता जी?
2: इमली।
1: इमली,
2: बिरांबी।
1: बिरांबी, या सही बात कह रहे हैं। पर
2: ऐसे सब कुछ है ना, पोमराग भी स्टोफू किया जाता था।
1: वो तो शांता, वो तो कंडाल में किया जाता था।
2: उसका श्याम बनता था, और अमरुद के भी,
1: अमरुद का भी। तो दोस्तों तो, जैसे कि आपने सुना कि आंवला, पर बबली जी ये बताइए, हर बार और या रोज प्रयोग करना चाहिए, और उसका फल क्या है?
0: आंवले को किसी भी रूप में थोड़ा सा आंवला रोज खा सकते हैं, और जीवन भर उससे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर नहीं होगा और हार्ट फेल नहीं होगा।
1: तो इसमें ये कीमत है कि आंवला का, और ब्लड प्रेशर कहते हैं शांता जी,
2: ब्लूड्रिक
1: तो वो नहीं होता है, और
2: हार्ट फेल
1: यानी कि जो कहा जाता है हार्ट अटैक।
0: हाँ जी,
1: तो वो नहीं होता है। तो दोस्तों ये बात है कि हम सब के लिए घरेलू सामान कैसे प्रयोग करना है, और उसके बारे में कुछ ना कुछ और जानकारी और हम सब लेकर आए। शांता जी कुछ कहने वाले हैं।
2: हाँ, अब मेरे ख्याल से बबली, अगर आप इससे प्रयोग करेंगे ना, जैसे हमारे सुनने वाले सुनते हैं, तो एक ज़्यादा मात्रा में नहीं, औषधि के तरह।
0: हाँ, थोड़ा सा।
2: हाँ,
0: एक दिन में आधा खाओ या एक खाओ, ज़्यादा खाओगे तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: क्योंकि ये खट्टा है ना, अधिक खट्टा, जैसे लेमच
0: है। हाँ, खट्टा भी है और थोड़ा कड़वा भी कह सकते हैं, दोनों है।
2: हाँ,
0: खट्टा कड़वा पानी इसमें।
2: हाँ, तो एक औषधि के और तौर पे इसके इस्तेमाल करना चाहिए,
0: थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए,
2: थोड़ा से।
0: हाँ जी,
2: क्योंकि इस खट्टे के वजह से रक्त भी, जैसे हम आजकल जब यहाँ पे ब्लड फॉर डोनर खबर करते हैं,
0: सही बात।
2: हाँ, तो ये खट्टा के वजह से ये खून को भी पतला रखेगा।
0: हाँ,
2: अगर हम सही हो तो।
0: वो मैं नहीं जानती।
1: क्योंकि ये बात हो जाता है बबली जी, वही कहना हम सबको, जो हम सब ये रेडियो स्टेशन द्वारा जो 188 देशों तक सुना जा सकता है, और हम वही संदेश दे जिसमें हम अपने आप के और जो हमारे पास लिख कर दिया गया है उसी को बांटे ना शांता जी।
2: हाँ हाँ, वही तो हम कह रहे हैं।
1: और ये बात हो जाता है कि आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आ गया है एक व्हाट्सएप बरिख, तो अगर आप लोग के कोई इतराज ना हो तो हम उसे भी सुना देते हैं।
0: सुनाइए।
1: तो शांता जी, यहाँ बरेख्त आया कि चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीते हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है, अगर आप खुद के लिए कम जीते हैं और दूसरों के लिए ज्यादा, तो इसमें क्या आंवला या कुछ और उसमें आपका सहयोग देगा?
2: तो
1: इस पे ध्यान देना, क्योंकि संदेश हमारे लिए भी भेजे जाते हैं, और कुछ कुछ संदेश जो हम सब जरूर सुनाने की कोशिश करेंगे।
2: हाँ संजय जी, जैसे आपने कहा चिंता, तो चिंता में अगर कोई व्यक्ति रहेगा ना तो खुद जलेगा, है ना?
1: जी सही बात, सही बात शांता जी।
2: और जो निश्चित में रहोगे तो
1: चिंता, बोले चिंता को छोड़ दो।
2: हाँ, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना चाहिए।
1: चिंतन करे पर चिंता को छोड़ो।
2: हाँ,
1: मैं देख रहा हूँ बबली जी भी कुछ इशारा कर रहे हैं, तो इशारों में भी सुन लेना चाहिए।
2: इशारों में।
1: हाँ, तो चलो बबली जी आपका क्या सुनाने वाले हैं?
0: ना, मैं ये कहने वाली हूँ, कई चिंता करते हैं कि हमारा पड़ोसी क्यों सुखी है, वो इसी चिंता में घुलता जाता है और खुद का रोग पाल लेता है।
1: चिंता करता है कि हमारा पड़ोसी क्यों सुखी है और खुद के और अपने बुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये अच्छी अच्छी कहावतें हैं और अच्छे अच्छे संदेश जो हम सब आज निरोगी काया, जो हमारा शरीर है उसे हम कैसे निरोगी का रख सकते हैं और उसका कि कैसे हम उनमें घरेलू चीज़ों से उन्हें कैसे निरोगी रख सकते हैं। शांता जी, क्यों ना हम एक दूसरे गीत की ओर बढ़े या कुछ और संदेश है?
2: हाँ, एक और कर ले सुनना है,
1: क्योंकि संदेश ज़्यादा है ना।
2: हाँ,
1: तो बबली जी क्यों ना दूसरा संदेश हम सबको सुना देते, तो फिर हम सब एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: हाँ जी, दूसरा है मेथी।
1: मेथी,
0: हाँ जी।
1: तो मेथी कैसे प्रयोग करते, पहले ये तो बताइए कि मेथी को नीदरलैंड्स में क्या कहते हैं? शांता का पता नहीं, मुझे पता नहीं, तो वो कैसा दिखता है मेथी?
0: मेथी पीले रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको कड़ी में भी डालते हैं।
1: दोस्तों, मेथी पर उसे कैसे प्रयोग करना चाहिए और उसका लाभ क्या है?
0: हाँ जी, मेथी दाने को पीस कर रख लें और एक चम्मच एक गिलास पानी में उबाल कर रोज़ पिएं।

0: रहेगा,
1: पेट भी ठीक रहेगा।
0: हाँ जी।
1: तो दोस्तों ये सुन लेना, क्योंकि मेथी जो शांता जी ने खोज करके और तैयार कर चुके हैं, तो मेथी, शांता जी आप खुद ही बोल दीजिए, मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा, फेनेग्रीक कहा जाता है। ऐसा है कि आप शायद आप जानते होंगे कि मेथी क्या है, तो उसके लाभदायक चीजें जो अभी बबली जी ने हम सबको सुनाए हैं, जरूर उस पर ध्यान देना। उसे भी प्रयोग करके आप अपने घरेलू सामान से अपना शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं।

कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो हम सब इस समय लेकर के यहाँ आज निरोगी काया के कैसे हम सब कर सकते हैं, तो हम उसी के बारे में कुछ बातचीत कर रहे हैं। और बबली जी, अगले कार्यक्रम के लिए अगले संदेश क्या है?

0: अगला संदेश है नेत्र स्नान।
1: नेत्र स्नान तो वो क्या चीज होते हैं?
2: नेत्र स्नान
0: जैसे आंखों को धोना, आंखों की देखभाल करना।
1: आंखों को धोना और आंखों को देखभाल, पर वो कैसे करेंगे? कैसे?
0: मुंह में पानी का कुल्ला भरकर नेत्र धोएं।
2: अब वो कैसे?
0: जैसे मुंह में पानी भर लो और हाथों से आंखें धोएं।
1: तो इस प्रकार से आप अपने आंखों को रोज उसे धोने से और आंख में कुछ परिवर्तन होता भी बबली जी?
0: ऐसा दिन में 3 बार करना चाहिए। जब भी पानी के पास जाए मुंह में पानी का कुल्ला भर ले और नेत्रों पर पानी के छींटे मारें और धोएं।
1: नेत्रों यानी कि आंखें पे?
0: हाँ जी। मुंह का पानी 1 मिनट बाद निकाल कर दोबारा कुल्ला भर ले।
1: ऐसा?
0: हाँ जी। मुंह का पानी गर्म ना हो इसलिए बार बार कुल्ला नया भरता रहे कि बार बार

0: उसे भरते रहें कि वो गर्म ना हो मुंह में, तो
1: मुंह में पानी भर कर फिर नेत्र पे छिटका मारना पानी के।
0: हाँ जी
1: ऐसा।
0: भोजन करने के बाद गीले हाथ तौलिए से नहीं पहुँचे बल्कि अपने दोनों हाथों को रगड़ कर चेहरे व कानों तक मलें।
1: ऐसा।
0: हाँ जी।
2: ये संदेश है भोजन करने के बाद।
0: हाँ जी। गीले हाथ को हांदुक से ना पहुँचे, तौलिए से ना पहुँचे और दोनों हाथों को रगड़ कर आँखों पर लगाएं।
2: ऐसा। और ऐसा करने से आँखें के लिए ठीक होता है।
0: हाँ जी। इससे आरोग्य शक्ति बढ़ती है और नेत्र ज्योति ठीक रहती है।
2: नेत्र ज्योति भी ठीक रहते। तो दोस्तों ये बात है कि हम सब जो आज का निरोगी काया के लिए और घरेलू उपाय जो लेकर आए हैं तो अभी आपके लिए काफ़ी संदेश है। पर शांता जी इसमें कुछ आप संदेश रखने वाले हैं?
1: नहीं, ये तो मैं आज पहली बार सुनी हूँ, इससे हम जरूर प्रयोग करेंगे घर पे जाके कि मुंह में पानी भर कर कुल्ला बना कर और फिर से पानी से छिट्टा मारे आँख पर।
0: लेकिन शांता जी योग में तो जरूर ऐसे हाथ रगड़ कर आँखों पर लगाते हैं तो?
1: हाँ हाँ, जब मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा कराते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
2: तो इस प्रकार से करने से हमारे आँखों के लिए बढ़िया होते हैं, यानी कि हम ऐसा भी है कि इसमें ये भी संदेश है शांता जी कि हमारे आँखी और बढ़िया हो सकता है या सिर्फ आँखी के उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ये करना चाहिए?
1: आप तो इसके बारे में तो मुझे बहुत जानकारी नहीं है। अब जैसे हमने आज पहली बार ये सुना है तो इससे हम प्रयोग करेंगे। अगर हाँ प्रयोग कर देखेंगे 3 या 4 महीने बाद तो इसके बाद हम कुछ बता सकते।
2: यानी कि अपने आप पे और uitproberen en dan kunnen we daarover meer zeggen। दोस्तों यहाँ हमारे कार्यक्रम में भारत देश से जो भी सुना जा रहा है और भारत देश से भी किसी ने फिर एक संदेश भेजे है शांता जी, पर यह संदेश तो मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ है, सुना सकते हूँ या नहीं?
1: अब मैं पहले से नहीं सुनी हूँ तो मुझे नहीं पता है कि गड़बड़ क्या है और अच्छा क्या है तो।
2: क्योंकि ये संदेश हमारे भैया जी भारत उत्तम नगर से भेजे हैं और संदेश ये है कि पत्नी ने अपने पति को कुछ इशारा करते हैं।
1: और क्या इशारा करते हैं?
2: पत्नी ने पति को इशारा कहते कि चलो, ये है कि जब नवरात्रि आता है ना, साल का दूसरा नवरात्रि आता है तो दशहरा होता है, कि चलो दशहरा देखने के चलते हैं। तो पति कहते हैं कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो रावण दहन देखने चलूँ। तो पत्नी कहते हैं आप भी चलकर देख लो, दूसरों के बुरी नज़र से वाले को और क्या हाल होता है। तो ये संदेश तो नवरात्रि के में ज़्यादा सूट होता, पर अच्छा चलो ये भी सुना दिया गया है। भारत देश से जो हमारे भाई और राजीव शर्मा जी जो ये कार्यक्रम को सुन रहे हैं भेजे हैं, पर ये इस पे थोड़ा से दृष्टांत डाला जाए। शांता जी आपको ख्याल होगा कि दशहरा पे हम सब जब छोटे थे सूरीनाम में ना,
1: हाँ जी,
2: तो रामलीला जाते थे देखने को।
1: हाँ।
2: और इसी विषय पे जब हम छोटे थे तो हमें ये कुछ ख्याल आ गया, हमें ये ख्याल आया कि मैं पहला बार अपने पिता के कंधे से बैठ करके, ये तो बड़ा पुराना बात है, 50 साल से ज़्यादा बात है, पर गए थे पहला बार रामलीला मैदान, तो दूरी से दिखाई दिया बड़ा सा और पुतला रावण का।
1: हाँ जी।
2: तो देख करके वो तो हम घबरा गए थे।
1: अच्छा।
2: मुझे अभी भी याद है कि किस प्रकार से मैं डड़क गया था और वहाँ से फिर दोबारा लौटने का इच्छा कर रहे थे, पर गया तो बड़ा रोते रोते गए वहाँ, और वो पहला बार जब देखे ना रावण को तो कितना भयानक लगता था। बबली जी इस पे आपके क्या बात है, आप कभी उसे डरे थे कि नहीं दशहरा से?
0: नहीं, क्योंकि रामायण में हमेशा सुनते आए कि रावण ऐसा था तो।
2: पर जब छोटे थे तब नहीं डरे थे वो पहला बार रावण को देखकर, वो जो पुतला बनाया था?
0: नहीं नहीं, रावण को रावण को जानबूझकर ही इतना डरावना बनाते हैं कि वो देखने में डर जाए सब।
2: जानबूझ के उन्हें डरावना बनाया जाता है।
1: संजय जी पूछ रहे थे कि आप रावण को देखे, तो रावण को कहां हम देखेंगे।
2: नहीं नहीं, उनका पुतला का बात हो रहा था दोस्तों। हम भटक रहे हैं
1: जी। अच्छा हाँ,
2: हम भटक रहे थोड़ा। जो संदेश आता है तो उन्हें कोशिश किया जाता है आपको सुनाने का। और ये बात है शांता जी, इस पे थोड़ा सा और कहना चाहूंगा कि पहले जो हम बच्चे थे ना, ऐसा होते थे कि हम सबको डर होते थे, खाना नहीं खाते थे, तो दादी ये कहते थे कि खा ले वरना बबुया आ जाएगा, और इन बातों को दरवाजा पे ठोकते थे तो हम डर जाते थे, डर के मारा खा लेते थे। पर आजकल के बच्चे में ये चीज तो रही नहीं गया।
1: वो क्यों?
2: क्योंकि आजकल बच्चे को तो कहेंगे कि बबुया आएंगे तो वो उन्हें मानते नहीं। तो दोस्तों हम चलते हैं बबली जी के ओर। और बबली जी, संदेश क्या है आज के जो निरोगी काया के लिए?
0: हाँ जी, अगला संदेश है शौच।
1: शौच,
0: शौच मीन्स टॉयलेट, वी से।
2: हाँ,
0: ऐसी आदत डाल ले कि नित्य शौच जाते समय दांतों को आपस में भींच कर रखें, इससे दांत मजबूत रहेंगे तथा लकवा नहीं होगा।
1: जाने के बीच मतलब
0: ऐसे दबा कर दांतों को।
1: हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
2: ऐसा रखना चाहिए।
0: हाँ, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो।
2: दोस्तों जैसे कि हम सब सुन रहे हैं कि काफी संदेश है, और जो घरेलू और उपाय जो हम अपने आप के लिए उसे प्रयोग करें, और अपना शरीर जो पांच तत्वों का बना हुआ शरीर, उन्हें सुंदर रूप और सुंदर काया के सुंदर रूप रखे रहे। अगला संदेश क्या है बबली जी? क्योंकि हमारे पास एक सुंदर गीत और आ गया है जिसे सुनाने का इच्छा है।
0: आगे का संदेश है छाछ।
1: छाछ,
0: छाछ मीन्स मट्ठा, लस्सी भी कहते हैं उसको। हाँ, पतला दही जिसमें से मक्खन निकाला गया हो उसे छाछ कहते हैं।
2: तो वो दूध से बंद है?
0: हाँ जी, लस्सी मट्ठा छाछ ये एक ही चीज़ है, और कहने का ढंग अलग अलग है।
1: अच्छा,
0: हाँ जी,
1: जिसमें से माखन निकाल लिया हो।
0: हाँ जी,
1: तो
0: हाँ,
1: जो बचा हुआ दूध उसको छाछ कहते हैं।
0: हाँ, मट्ठा भी कह सकते हैं, छाछ भी कह सकते हैं, और लस्सी भी कहते हैं।
1: लस्सी भी कह सके। तो संजय जी इसको यहाँ पे कैसे कहते हैं, माखर योगर्ट?
2: अब आपने तो मुझे
1: कंफ्यूज कर दिया
2: क्योंकि यहाँ तो कितने प्रकार के हैं दूध का, यानी
1: योगर्ट
2: जो प्रोडक्ट होते हैं ना
1: जी। अगर हम ख्याल करें, याद करें, तो हम सूरीनामों में भी दूध जो हम उसको फेंटते थे ना, तो उसमें से जो माखन निकला था ना।
2: हाँ,
1: बोतर घी जो हम उसके बाद में कढ़ाई में धर के, तो जो पानी बच जाता था।
0: हाँ जी शांता जी, उसी को मट्ठा या लस्सी कहते हैं, और ये छाछ भी कहते हैं।
1: हाँ,
2: तो इसमें तो थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन आ गया, क्योंकि शांता जी वो बनाते थे साड़ी निकाल करके ना,
1: तो उसको घी बनाते थे।
2: वो तो घी था।
1: हाँ, पर जो बच जाता था उसको दही कहते हैं।
2: दही कहते हैं।
1: हाँ, माठा और दही।
2: तो दोस्तों उसे भी
1: माठा जो उनके जमावल जाए ना।
0: हाँ,
1: उसको
0: वो गाढ़ा होता है तो।
1: हाँ,
0: और जो छाछ या लस्सी वो थोड़ी पतली होती है।
1: हाँ,
2: और इसे भी आप जरूर, यानी कि मिल्क प्रोडक्ट जरूर प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने शरीर को और जो
1: ये छाछ कुछ और है।
0: हाँ जी, छाछ का निरंतर सेवन बहुत अच्छा है। सुबह और दोपहर के भोजन में जरूर छाछ ले, और भोजन में पानी के स्थान पर छाछ का उपयोग अच्छा माना गया है।
2: शांता जी ये बात तो नहीं हो गया, पर दूध से निकलता है।
0: हाँ हाँ हाँ, अरे लस्सी भी तो वही है। पंजाब में लस्सी कह देते हैं, और जगह छाछ कह देते हैं। जितने भारत में स्थान है सब अलग अलग बोलते हैं, तो कहीं छाछ, कहीं लस्सी, कहीं माठा,
2: ऐसा।
0: हाँ जी,
2: तो दोस्तों हम सब सुने कि छाछ जो हम आज ये शब्द सुने हैं, और उसे भी प्रयोग करना चाहिए, और ये खाने के समय।
0: हाँ जी, और गांव में जब हम जाते थे अपनी नानी के घर, तो वहाँ पर मामा वगैरह पानी नहीं पीते थे, वो भोजन में लस्सी या छाछ ही पीते थे।
2: अच्छा, चीनी डालकर की ना?
0: ना ना ना, नमक डालकर, काला नमक
2: डालकर।
0: हाँ जी,
2: तो क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत के ओर पर शांता जी कुछ कहने वाले कह दो तो हम
1: इससे जैसे मेरे को ये सब जानकारी नहीं थी तो लगे हाथ ये ज्योति का प्रकाश जैसे चल रहा है ऐसे ऐसे यहाँ पे हमको मिलते हैं सुनने के लिए साथ में हमारे सुनने वालों को, तो यहाँ पर मैं भी जैसे सुनी तो हम भी ये सब प्रयोग करेंगे, देखेंगे
2: जरूर जरूर। शांता जी क्यों ना हम एक सुंदर सा गीत आपके पिटारा से निकाले हुए और उसे सुना देते हैं अपनी सभी सुनने वालों को, क्योंकि सुनने वालों आज जो सुंदर सुंदर गीतों को शांता जी लेकर आए हैं बिल्कुल हम सबको एकदम जवान करने वाले हैं, तो देखते हैं कि कौन सा गीत है।

0: दोस्तों ये जरूर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर आपके साथ और यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब ये कार्यक्रम को आपके घर, आप जहाँ भी है, दुनिया के कोई भी देश में हो, आप अपने कार में भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो हम सब अपना संदेश लेकर आपके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। बबली जी, कार्यक्रम जो आज का है विषय कि हम अपने निरोगी काया के लिए घरेलू के कैसे सामानों को प्रयोग कर सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं, तो आपके और कौन सा संदेश है जो आप हम सबको सुनाने वाले हैं?
1: हाँ जी, और संदेश है सरसों का तेल।
2: सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल।
1: हाँ जी शांता जी,
0: सरसों का तेल, ये फिल्म जो शाहरुख खान का बना था ना, क्या फिल्म था, सरसों का खेत में
1: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
0: हाँ, तो वो सरसों का तेल उसी से बनते हैं।
1: हाँ जी, पहले सरसों उसको साग बना के खाते हैं, फिर उसके बाद उसका जब उसके दाने पक जाते हैं पीले, तो उससे तेल निकलता है।
0: तो वो तेल प्रयोग करने से यानी कि वो अच्छा होता है?
1: हाँ जी, सर्दियों में हल्का गर्म सरसों का तेल और गर्मियों में ठंडा सरसों का तेल 3 बूंद दोनों कान में कभी कभी डालते रहे, इससे कान स्वस्थ रहेंगे।
0: कानों को स्वस्थ रखने के लिए और सरसों का तेल प्रयोग किया जाए। शांता जी, सूरीनामों में हम लोग कौन सा तेल डालते थे? नारियल का तेल ना?
2: नारियल का तेल, घर के निकारल नारियल,
0: निकारे हुए नारियल का तेल छोड़ा जाता था कानों में
2: सर पे लगाया जाता था और देह में मालिश भी किया जाता था।
0: कभी कभी तो हम लोग अपने लगा करके नारियल के तेल जाते थे स्कूल पे, तो वहाँ गर्मी में तो तेल चुईने लगता था,
2: पिघल जाते थे।
1: हमारी मम्मी तो हमारे सिर पे सरसों का तेल ही लगाते थे
0: वहाँ भारत में।
1: हाँ जी, और उससे खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनता है।
0: स्वादिष्ट?
1: हाँ जी, और अचार डालना हो उसमें भी सरसों का तेल ही डालते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, अचार में।
0: तो ये तो कुछ कह रहा कि कभी बनाकर खिला दो तो हमें पता चलेगा कि सरसों का तेल का स्वाद कैसा है, ऐसा है कि नहीं शांता जी?
2: हाँ बिल्कुल।
1: हाँ, अगर आप चाहें तो जरूर सरसों के तेल में भोजन बन जाएगा।
2: भारत में हमने देखी वहाँ सभी खास तौर पे सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल, हाँ, ज़्यादा तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे।
1: सही कहा। हाँ, शांता जी।
0: हाँ सही, वो हमने भी देखे हैं कि यानी कि सोनब ब्लूम ऑयल के कुछ और कहते हैं वहाँ ना,
1: सनफ्लावर
0: किसी और तरीका से कह रहे थे,
2: रिफाइन।
0: हाँ, और ये सरसों वाला को रिफाइन नहीं कहते?
1: नहीं, इसको सरसों का तेल ही कहते हैं।
0: अच्छा, तो इसे अपने कानों में डाल सकते हैं कभी काल के, ताकि हाँ, कानों में
2: दर्द ना रहे।
1: कच्ची धानी का तेल भी कहते हैं मेरे को लगता है, शायद सरसों के तेल को भारत में
0: कच्ची धानी का तेल
1: हम
0: ऐसे भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप भी सुन रहे हैं कि हम सब यहाँ काफी संदेश तो है जरूर, और कौन सा संदेश है बबली जी?
2: नहीं, हम बता दें फिर से कि सर्दियों में हल्का गर्म,
1: हाँ जी,
2: सरसों तेल और
1: गर्मियों में ठंडा सरसों का तेल। मौसम के हिसाब से, तो
2: जब मौसम गर्म हो तो ठंडा तेल डालना,
1: हाँ जी,
2: और जब गर्म हो, नहीं ठंडा हो, तो थोड़ा से हल्का गरम कानों में डालना कभी कभी ना।
1: हाँ जी,
2: कभी कभी।
1: हाँ जी,
0: तो ये कानों का ठीक होता है।
1: हाँ जी,
2: तो कान के साथ साथ मेरे ख्याल से शरीर भी उसमें सभी कुछ
1: मालिश भी कर सकते हैं। हमारे पापा सरसों के तेल की नहाने से पहले पूरे शरीर में सरसों की मालिश करते थे, फिर नहाने जाते थे।